हम लगातार योग से जुड़ जाते हैं, लगातार नित सवेरे योग करते हैं, और जिस दिन वह नहीं हो पाता है तो हमें पूरे दिन एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, मानो आज हमने खाना नहीं खाया है, आज हम सोए नहीं हैं, या आज हम अपने प्रिय मित्र से मिले नहीं हैं। योग हमारे लिए एक बहुमूल्य चीज है जिसे हम बिना मूल्य दिए ही ले सकते हैं, बिना कोई तकलीफ लिए ही हम कर सकते हैं। बस जरूरी है उसमें समय, लगन और विश्वास की। आइए आज के यानी कि हमारे योग शिविर के अगले दिन के लिए, जो कि आज हम करने जा रहे हैं, ध्यान योग। प्रवाह सीरीज में आज का दिन जो है वो हम आपको बताएंगे ध्यान योग के बारे में। कई बार हम लोगों ने ये सोचा है कि जब हम नित्य क्रिया करने के बाद में थकावट सी महसूस होने लगती है, तब क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम अपने कमरे में जाएं या किसी एकांत वातावरण में जाएं और चुपचाप से बैठ जाएं, अपनी मन मस्तिष्क और सारी वृत्तियों को शांत करके एकाग्र होकर बैठ जाएं। आपको पता है इस स्थिति को क्या कहा जाता है? योग के माध्यम से, योग के अभ्यास से, योग की श्रृंखला में, योग की कक्षा में हम इसे ध्यान योग कहते हैं। ध्यान योग बहुत ही सरल और एक सुलभ सा साधन है अपने आप को एकत्रित करने का। एकत्रित करने का महत्व मैं बताती हूँ। दिन भर क्या होता है, सबसे पहले जब हम किसी काम पे जाते हैं, हम अगर महिलाएं घर में भी रहते हैं तो हमारा मन जो है वह घोड़े से भी तीव्र गति की तरह कभी इधर कभी उधर दौड़ता रहता है। महिलाओं की चिंता, बच्चों की चिंता, आगे भविष्य में क्या होना है, इन सब की चिंता। लेकिन जो विद्यार्थी हैं, उन्हें अपने आने वाले भविष्य की चिंता, परीक्षा की चिंता, अपने लक्ष्य को पाने की चिंता, ये सारी चिंताओं से घिरा हुआ हमारा मन मस्तिष्क इस तरीके से झंझोड़ता रहता है अपने आप को। काश हमें इन सब से 10 मिनट का ब्रेक मिले और हम आराम से बैठ जाएं। कोई सुख सुविधा हमें नहीं चाहिए, हम उस समय ये सोच रहे होते हैं कि हमें सिर्फ एकांत चाहिए। तो आज हम सभी मिलकर के उस एकांत को ढूंढेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे और क्या लाभ है ध्यान योग का। आइए हम आज के प्राणायाम की ओर अब चलते हैं। सर्वप्रथम आप एक स्वच्छ वातावरण में बैठे, स्वच्छ स्थान पे बैठे, यानी कि आप एक योगा मैट बिछा लें, और यदि योगा मैट आपके पास नहीं है तो आपके पास कोई भी ऐसी चद्दर है जो साफ सुथरी हो, आप उसे बिछाएं और उस पर पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। सर्वप्रथम हम अपने आप को एकांत कर लें। एकांत करने का मतलब है हमें बाहरी दुनिया की कोई भी आवाज सुनाई न दे, और यदि यह संभव हो सके तो हम सवेरे उठ करके ध्यान योग करें, जिस समय हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो स्थिर रहती हैं। हमारे परिवार के कई लोग जो कि आराम कर रहे होते हैं, और उस समय हम उठ करके योग की योग शाला यानी कि हमारी योग शाला में आकर के आप इसे नित प्रतिदिन कर सकते हैं। ध्यान योग के बारे में हम अभी पहले जान लें किस तरीके से करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पद्मासन की स्थिति में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, मुद्राएं यानी कि पहली मुद्रा अंगूठे के नीचे, तीन उंगलियां सामने की ओर और मुख पर प्रसन्नता लिए हुए सीधे, हमें एकाग्र चित होकर के अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए ओम का उच्चारण करना है। ओ ये प्रकृति की वह आवाज है जो कि हमें सीखनी नहीं पड़ती है। ओम का अर्थ सर्वव्यापी यानी कि सर्व सम्मान, यह ओम हमें अंतर आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए ध्यान के लिए स्थान की व्यवस्था जो है हम सबसे पहले वो जान लें। ध्यान के लिए एक ऐसा नीरव और शांत स्थान ढूंढे जहां आप अलग से बैठकर निर्बंधित रूप से ध्यान कर सकें। अपने लिए एक ऐसा पवित्र स्थान बनाएं जो मात्र आपके ध्यान के अभ्यास के लिए ही हो। अगर आपको मैट पे नहीं बैठना है तो आप कुर्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बिना हत्थे वाली होती है, आप उस पर भी बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि कुछ लोग जमीन पर बैठकर नहीं कर पाते हैं तो

के लिए बिना हत्थे वाली जो कुर्सी होती है आप उस पे भी बैठ करके ध्यान योग लगा सकते हैं। उस कुर्सी पर सिल्क का आसन या फिर चादर या फिर हल्का कंबल जो कि बहुत पतला वाला होता है आप उसको बिछा लें और उस पर आप पद्मासन की स्थिति या पलथी मार कर बैठें। यह आपकी चेतना के प्रभाव को नीचे की ओर खींचने वाले धरती के सूक्ष्म प्रभावों को अवरुद्ध करता है। उचित स्थान के लिए प्रभावपूर्ण ध्यान करने के लिए आसन का कुछ ऐसा विशेष निर्देश जिसे हम जरूर से अपनाएंगे ध्यान योग के लिए। तो सबसे पहला है मेरुदंड सीधा होना चाहिए, यानी कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ध्यान के लिए सर्वप्रथम उचित आसन यानी कि मेरुदंड सीधा होना चाहिए। उसी से एक बात याद आ गई है कि जब भक्त अपने भगवान और प्राण शक्ति को मेरुदंड में चक्रों से होते हुए ऊर्ध्व चेतना की ओर भेजने के लिए प्रयासरत होता है तो उसे अनुचित आसन कारण मेरुदंड की नाड़ियों में होने वाली सिकुड़न व संकुचन से बचना चाहिए। स्वयं को ईश्वर के आशीर्वादों के लिए उन्मुक्त रखना चाहिए। वे लोग जिनके पैरों में दर्द होता है उनके लिए ध्यान बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। हालांकि परमहंस योगानंद जी ने अपने ध्यान के लिए निम्न प्रकार से आसन लगाए हैं, जैसा कि एक बिना हत्थे की कुर्सी पर इस प्रकार बैठें कि आपके पांव जमीन पर सपाट रहें और मेरुदंड सीधा हो, पेट अंदर की ओर, छाती बाहर की ओर, कंधे पीछे और हुड्डी जमीन से समानांतर हो। यदि आसन सही है, स्थिर शरीर फिर भी तनाव रहित रहेगा और एक भी मांसपेशी को बिना हिलाए हुए ही आप निश्चल अवस्था में संभव कर सकते हैं। अब अपने नेत्र बंद करें और अपनी दृष्टि को धीरे से बिना तनाव ऊपर की ओर भूमध्य से स्थित करें। एकाग्रता के केंद्र बिंदु और ईश्वरीय बोध को दिव्य चक्षु पर, यानी कि हम दोनों आंखों के मध्य जो कि हमारा ध्यान योग केंद्र मेन वहीं लगता है, वहीं पर ही आपको एकाग्र चित होकर के ध्यान लगाना है और हमें अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए समय अनुसार, यानी कि आप प्रारंभिक अवस्था में 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट कर सकते हैं। तत्पश्चात आप ध्यान की अवधि आधा घंटा, 1 घंटा भी कर सकते हैं। तो ध्यान योग करने के लिए जो महत्वपूर्ण हमने निर्देश बताए उन्हीं निर्देशानुसार हम ध्यान योग की ओर करके अपने आप को एक सफल और एक स्वस्थ इंसान बना सकते हैं। जब नया अभ्यासी कठोर जमीन पर ध्यान के लिए बैठता है तो मांसपेशियों और रक्त नलिकाओं के दबने के कारण पैर सो जाते हैं। हमने अमूमन देखा हुआ है कि कई बार जब हम जमीन पे बैठ जाते हैं, पलथी मार के बैठ जाते हैं, तो हमारे पैरों की नसों में झुंझुनाहट सी होने लगती है और यह समस्या अब आम सी हो गई है, यानी कि छोटे से बच्चे को या बड़े बुजुर्गों को यह परेशानी होती है। परंतु यदि वह जमीन पर या सपाट पलंग पर गद्दा या उस पर कंबल बिछाकर बैठता है तो उसके पैरों में झुंझुनाहट और दर्द नहीं होता है। इसीलिए यह कहा गया है कि यदि आप कुर्सी पर कंबल या सिल्क का कपड़ा बिछाकर या फिर आप योगा मैट पर बैठ करके योग करते हैं या आसन करते हैं तो पैरों में जो झुंझुनाहट और झुंझुनी की समस्या है यह कम होती है। उस पर बैठ कर ध्यान करने में सुविधा का अनुभव कुछ ज्यादा होता है। योग साधक, विशेष रूप से योग युवा के लोग जो कि आजकल बहुत सारी चीजें हम लोग करने लगे हैं, योग के माध्यम से हम कई वीडियोस बनाते हैं, कई रील्स बनाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि योग से जुड़ने के लिए हमें अपने वर्तमान में जुड़ करके ही काम करना चाहिए। यदि किसी को पद्मासन में बैठने से सुविधा नहीं होती है तो इस भांति बैठकर ध्यान भी कर सकते हैं। तनावपूर्ण अवस्था में ध्यान करने से व्यक्ति का मन शरीर की असुविधा पर केंद्रित रहता है। साधारणतः ध्यान का अभ्यास बैठकर के ही करना चाहिए। स्पष्टता खड़े होकर ध्यान करने से जब तक कोई ऐसा करने में प्रवीण ना हो या नहीं हो सकता है। मन के अंतर्मुखी होने पर व्यक्ति गिर सकता है और ना ही एक साधक को लेट कर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह नींद की अवस्था में जा सकता है।
उचित आसन जो शरीर और मन को स्थिर रख सके आवश्यक है, या मन को भौतिकता से हटाकर परम तत्व पर लगाने में साधक की सहायता करता है। इसी प्रकार दोस्तों, हम ओम की स्थिति करके अपने आगे वाले पड़ाव की ओर चलते हैं, यानी कि ध्यान को समाप्त करने की ओर चलते हैं। तो सीधे बैठ जाएं और एक बार ओम का उच्चारण करने के बाद में यथासंभव हम आज के ध्यान योग को यहीं समाप्त करते हैं। ओ दोनों हाथों की हथेलियों में घर्षण करके आंखों पे और चेहरे पे लगाते हुए ध्यान को पूर्णता समाप्त करेंगे। तो आइए हम सभी चलते हैं कुछ देर के लिए ध्यान मुद्रा में बैठने। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हमने आपको कई ऐसे आसनों के बारे में बताया है, जैसा कि उसके लाभ और उसका तरीका, तो उसी श्रृंखला में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उष्टासन। उष्टासन में सबसे पहले करने का तरीका हम बताएंगे और उसके बाद उसके लाभ। हर एक प्राणायाम का लाभ और अपने आप में उसकी उपयोगिता देखी गई है। उसी तरह उष्टासन भी अपने आप में एक बहुत ही लोकप्रिय और सभी को पसंद आने वाला यह आसन है। तो आइए हम सबसे पहले उष्टासन करते हैं। सर्वप्रथम किसी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे और बैठने का तरीका वज्रासन होगा। जैसे पहले घुटनों के बल बैठें और एड़ियों पर शरीर को टिकाएं। उसके बाद धीरे धीरे घुटनों को उठाएं। अब शरीर को ऊपर उठाकर घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों के बीच लगभग 1 फुट का अंतर रखें। हाथों को कमर पर रखें, हथेलियां नीचे की ओर रखें और कमर को हल्का सा पीछे झुकाएं। धीरे धीरे झुके और श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर अपने सर को झुकाएं। उसके बाद एड़ियों को पकड़ें और जब तक आराम से झुक सकें तब तक आप झुकें और दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ लें। छाती को ऊपर उठाएं, सिर को पीछे की ओर झुकाएं ताकि गर्दन को भी स्ट्रेच मिले। सामान्य श्वास लेते हुए इस स्थिति में 15 से 30 सेकंड रहें। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें और फिर पुनरावृत्ति की तरह प्रारंभिक अवस्था में लौट आएं। वापस आते समय धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और पहले कमर सीधी करें, फिर हाथ कमर पर लाएं और वापस वज्रासन में आ जाएं। तो दोस्तों, ये था उष्टासन करने का तरीका। आइए अब हम उष्टासन के लाभ आपको बताने जा रहे हैं। रीढ़ की हड्डी को लचीलापन तो ये देता ही है, साथ ही साथ यह आसन स्पाइन को भी मजबूत और लचीला बनाता है। कमर और पीठ दर्द में राहत देता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ज्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं। छाती और फेफड़ों का विस्तार ठीक ढंग से करता है, इससे सांस लेने की क्षमता बढ़ती है और फेफड़े मजबूत होते हैं। यह आसन रक्त संचार में सुधार करता है, तनाव, चिंता और थकान को भी यह कम करता है। मन को शांत करने के साथ साथ शरीर में ऊर्जा भी भर देता है। शरीर की आकृति को सुधारता तो है ही, साथ ही साथ पीठ सीधी रहती है और झुके कंधे ठीक होते हैं। पेट के मांसपेशियों को टोन करता है। यह आसन पेट की चर्बी घटाने में भी संपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होता है। हाइड्रेशन यानी पाचन में सुधार करता है। पेट के अंगों पर खिंचाव करने से पाचन तंत्र बेहतर होता है और रीढ़ की हड्डी और गले के हिस्से को मजबूत करता है। कुछ ऐसे आसन जो कि हमारे संपूर्ण शरीर के लिए लाभप्रद होते हैं,
जिसमें उष्टासन और पद्मासन में बैठ करके यदि हम करते हैं तो काफी कुछ हमें इसका लाभ मिलता है। आइए अब मैं इसके प्रिकॉशन यानी कि सावधानियां बता देती हूँ। कमर या गर्दन में दर्द हो तो इस आसन को बिल्कुल ना करें। ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या स्पाइन इंजरी वाले लोग भी इसे बिल्कुल ना करें। यह आसन खाली पेट करना चाहिए और भोजन के 3 घंटे के बाद इस आसन को करना चाहिए। शुरुआती लोग इसे दीवार के सहारे या किसी भी प्रशिक्षण की देखरेख में ही करें। आसन करने के बाद कुछ समय बालासन और जिसे हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं उसमें आराम से बैठ जाएं और उष्टासन को पूर्ण करने के बाद ही आराम से धीरे धीरे श्वास को लेते हुए ही हम इस आसन को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरीके से इस बार भी उष्टासन के लाभ, सावधानियां और तरीका हमने आपको बताया। इस तरीके से यदि आप इस आसन को करते हैं तो संपूर्ण रूप से आपको जानकारी भी मिलेगी और साथ ही साथ लाभ भी मिलेगा। अगली श्रेणी में हम आएंगे एक नए आसन की सावधानियां, उपचार, लाभ और तरीका लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।

सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास हमें इस महीने में, यानी कि वसंत ऋतु में, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें सोच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि
हमारे पूरी शरीर को डिटॉक्स करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें। ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा लें तो आसानी से पच जाता है, इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद कुप मिला करके पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है, या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह है सूर्य नमस्कार और कपालभाति।

सुप्रभात साथियों, स्वागत है आपका पहली किरण में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है प्रेम, आध्यात्म और सूफिज्म। प्रेम जो सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। आध्यात्म जो हमारे भीतर से प्रकाशित रहता है या हमारी भीतर की शक्ति को प्रकाशित करता है। और सूफिज्म जो प्रेम और ईश्वर को एक ही सूत्र में पिरो देता है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं एक सुंदर से गीत के माध्यम से।

केवल तू रह जाए। अध्यात्म यही सिखाता है कि जब हम अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम में डूबते हैं तो वहीं से हमें परमात्मा का अनुभव होता है। तो आइए परमात्मा की ओर चलते हैं और उनका ध्यान करते हैं।

दोस्तों आज की कहानी है हजरत राबिया बसरी की। कहते हैं एक दिन लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। वो एक हाथ में मशाल और दूसरे में पानी की बाल्टी लिए दौड़ रही थी। किसी ने पूछा, ये क्या कर रही हो? राबिया बसरी बोली, मैं इस मशाल से जन्नत को जलाना चाहती हूँ और इस पानी से जहन्नुम की आग बुझाना चाहती हूँ, ताकि लोग अल्लाह की इबादत सिर्फ डर या लालच से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम से करें। ये है सूफी मार्ग, जहाँ प्रेम ही इबादत है।

श्रोताओं, अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब मन प्रेम से भरता है तो द्वेष, नफरत और अलगाव की जगह ही नहीं बचती। सूफी संत कहते हैं, जब तू अपने भीतर के प्रेम को पहचान लेता है तब तुझे किसी और खोज की जरूरत नहीं रहती। प्रेम ही है जो इंसान से इंसान जोड़ता है और इंसान से भगवान तक पहुंचाता है। तो आइए फिर चलते हैं एक बार भगवान की खोज की ओर, मतलब अपने मन के भीतर के प्रकाश की ओर।

हजरत निजामुद्दीन औलिया। इनके बारे में मशहूर है कि उनसे मिलने वाला हर इंसान यही कहता था, जब औलिया हमें देखते हैं तो लगता है जैसे ईश्वर की नज़र से देख रहे हों। उनके पास आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि वो कुछ और नहीं, प्रेम बांटते थे। उनका मानना था अगर दिल में प्रेम है तो वही सबसे बड़ा दरबार है।

दोस्तों, अगर आप दिन की शुरुआत प्रेम और कृतज्ञता से करते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य और ऊर्जा दोनों सकारात्मक रहते हैं। सुबह उठकर 3 लोगों को दिल से दुआ देना या शुभकामना देना, ये एक छोटा सा सूफी अभ्यास है जो आपको भीतर से हल्का और शांत बना देगा और साथ ही साथ आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। एक बार करके देखें, जीवन को सकारात्मक ऊर्जा की ओर अग्रसर करें।

श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भक्त्या माम अभि जानाति यवान्याश्चमि तत्वतः, केवल प्रेम और भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। और गीता का सार भी यही है, प्रेम ही अध्यात्म का सबसे सरल मार्ग है। तो आइए प्रेम की राह पर आगे चलें, अपने भीतर के प्रेम को निखारें, ईश्वर से जुड़ाव करें और हर इंसान में ईश्वर का वो अंश देखें जो हम सब में बसा हुआ है।

गौतम बुद्ध ने कहा, मैत्री भाव ही सबसे बड़ी साधन है। जब तुम सभी प्राणियों को अपना मानते हो तो वहीं से निर्वाण का मार्ग खुलता है। और बुद्ध का आध्यात्म कहता है, करुणा और अहिंसा के पथ पर चलो। श्रोताओं, अब मैं जैन धर्म पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी। महावीर स्वामी ने कहा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का आधार प्रेम है। जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वो सबसे बड़ा पाप होता है, और जब हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते तो हम सबसे बड़ा आध्यात्म जीते हैं। तो आइए आध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं और ध्यान करते हैं अपने गुरुओं की वाणी का।

अल्लाह रहमान और रहीम है। सूफी संतों ने कहा, इबादत का सबसे ऊंचा रूप है इंसान से प्रेम। राबिया बसरी, बुल्ले शाह और निजामुद्दीन औलिया, इन सभी का संदेश एक ही है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता दिल से होकर जाता है, और वो दिल किसी आम दिल से नहीं, हर इंसान के दिल से। मतलब जब हम नेकी करते हैं तो खुदा अपने से हमें जोड़ के रखता है।

ईसाई धर्म की बात करें तो यीशु मसीह ने कहा, गॉड इज लव, ईश्वर प्रेम है। उन्होंने प्रेम, क्षमा और सेवा को आध्यात्म का सबसे बड़ा मार्ग बताया।

दोस्तों, अब चलने से पहले मैं एक आपको स्वास्थ्य सुझाव देना चाहूंगी। हर सुबह 5 मिनट शांति से बैठकर अपने शत्रु तक के लिए दुआ कीजिए। ये अभ्यास हर धर्म की शिक्षा है। दूसरों के लिए प्रेम और करुणा, ये न सिर्फ दिल को हल्का करता है, मानसिक स्थिति को भी बेहतर करता है, बल्कि आप में हर तरह का संतुलन स्थापित करता है। एक बार करके देखें, जीवन को सरल बनाएं और ईश्वर से जुड़ाव महसूस करें। दोस्तों, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा एक ही है, प्रेम और आध्यात्म। सूफी संतों ने कहा, जब दिल में मोहब्बत हो तो वही खुदा है। गुरु नानक ने कहा, हर एक में वही ज्योति है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भक्ति से ही मुझे पाया जा सकता है। बुद्ध ने कहा, करुणा ही मुक्ति का मार्ग है। आइए आज हम सब ये संकल्प लें कि हम धर्म की दीवारें नहीं, प्रेम के पुल बनाएंगे, क्योंकि प्रेम ही है जो इंसान से इंसान को और इंसान से ईश्वर को जोड़ता है। मुलाकात होगी अगली सुबह पहली किरण के साथ। तब तक याद रखिए, जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है। राधे राधे, खुदा हाफिज, जय जिनेन्द्र।

धार धार धाधा क्रगत विक्रत दिन दिन दिन दिगत दि गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ त्रिकट धिकट डिम डिम डिम डमरु वचन त्रिकट हर हर महादेव शिव शंकर त्रिकट धा तिकट डोम शिव शंकर त्रिकट धा तिकट डोम शिव शंकर त्रिकट धा तिकट डोम

धार धार धाधा प्रगत विक्रत भिन्न भिन्न भिन्न दिगत गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ त्रिकट धिकट डिमटम डिम डमरु वचन त्रिकट हर हर महादेव शिव शंकर त्रिविधा त्रिकट डोम शिव शंकर त्रिविधा त्रिकट डोम शिव शंकर त्रिविधा त्रिकट डोम

धार धार धाधा ग्रगत विग्रत धिन धिन धिन दिगत दि गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ त्रिकट धिकट डिम डिम डिम डमरु वचन त्रिकट हर हर महादेव शिव शंकर त्रिकट धिकट डोम शिव शंकर त्रिकट धिकट डोम शिव शंकर त्रिकट

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

89.6 FM और आपने ट्यून कर लिया है आपका अपना फेवरेट वाला FM रेडियो ज्ञानस्थली। मैं हूं आपकी अपनी आर्जुनती और आप सुन रहे हैं अपने गोंडा शहर की धड़कन पर। वक्त हो चला है आपके अपने बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही बेहतरीन और आपके फेवरेट वाले मॉर्निंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा का। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग गोंडा, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप उठ चुके होंगे और मेरी ही तरह फुल ऑफ एनर्जी भी होंगे, एनर्जेटिक होंगे, भर चुके होंगे अपने पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा के साथ ऑफ कोर्स। और इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज हो चुका है। इस खूबसूरत सी सुबह में बादल सूरज दोनों मिल चुके हैं, तो क्यों ना इस हमारी जो मुकम्मल सी मुलाकात है इसकी शुरुआत कर दी जाए। और बेशक आज की इस मुलाकात को हसीन और बेहतरीन बनाने के लिए जो मेरा थॉट ऑफ द डे है, यानी कि वो बात जो हर सुबह आपको बताई जाती है जिससे आपका दिन और भी खास हो जाता है, वो कुछ इस तरह से है। भैया कि माफ करना सीखिए। क्यों? चलिए ये भी बता देते हैं कि क्यों करना है माफ। माफ करने से होता क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है। तो किसी को माफ कर देना उसके लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी होता है। किसी को माफ कर देने से आप उसको नहीं खुद को शांति देते हैं। अगर आप माफ़ी का रास्ता चूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने दिल से नफ़रत, गुस्सा और कड़वाहट मिटाकर खुद को उस आग से बचा लेते हैं जिस आग में अभी तक आप जल रहे थे। जी कई बार हमको लगता है ना दोस्तों कि हर वक्त हर जगह जब हम किसी को माफ़ करते हैं या हमसे कोई माफ़ी मांगता है और हम कहते हैं चलो ठीक है, इट्स ओके, इसके बाद भी कई बार हम माफ़ नहीं कर पाते हैं। और जब कर देते हैं तो लगता है कि यार उसके ऊपर एहसान कर दिया हमने उसे माफ़ करके, बट एक्चुअल में ऐसा कभी होता ही नहीं है। अगर आप किसी को माफ़ करने की हिम्मत रखते हो इसका मतलब ये है कि आपने खुद को उस कड़वाहट से, उस आग से, उस चीज़ से जो आपको हमेशा परेशान करने वाली थी, वो नफ़रत से खुद को आज़ाद कर दिया, ना कि उस इंसान को। वो इंसान तो आज भी अपने रिग्रेट और अपने गिल्ट की उसने क्या किया है उस पछता के अंदर जलता रहता है। जो शांति असल में जाकर मिलती है वो मिलती है आपको। इसीलिए माफ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए। और कभी कभी खुद को माफ करना भी उतना ही जरूरी होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि माफ कर देने का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी इंसान की गलतियों को पर्दा के अंदर छुपा दिया है। माफ करने का मतलब बस इतना है कि आपने अपने दिल से नफरत की आग, गुस्सा, ये सारी चीजें निकाल कर खुद को एक शांति का तोहफा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि माफ करना कितना ज्यादा जरूरी है, दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए। जब तक आप किसी को माफ नहीं करते उनकी न जाने कितनी बातें हमेशा आपको परेशान करती रहती हैं, आपका दिमाग ख़राब करती रहती हैं, आप हमेशा उस बारे में सोचते रहते हो, आपका पीस डिस्टर्ब होता है। लेकिन जैसे ही आप उन चीज़ों को लेट गो करके उन्हें फॉरगिव कर देते हो, छोड़ देते हो, माफ़ कर देते हो, भूल जाते हो, वहीं से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव ज़रूर आता है। आज का थोड़ा सा डे आपको कैसे लगा बताइएगा ज़रूर चैट बॉक्स में। और आइए एंजॉय करते हैं एक बेहद ही रोमांटिक गाना, क्योंकि हमारी मुलाकात बहुत खूबसूरत है। इसीलिए मैं आपको वाजिद की आवाज़ में सुनाने जा रही हूँ वाजिद का सॉन्ग ये वाला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते इस गाने के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

हां जी, तो भैया एक बार जरा वापस से स्वागत कर लेते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग का स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी अपनी मॉर्निंग रेडियो चौकी उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। एंड आपने ट्यून किया 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और अगर आप लोग की आंखें अब खुल चुकी हैं पूरी तरह से और आपने खुद को फ्रेश अप कर लिया है या आप रेडी हो चुके हैं ऑफिस जाने के लिए, अपने काम पे निकलने के लिए, दुकानों पे जाने के लिए, या अभी भी हाथ में आपके चाय का कप पकड़े हुए आप चुस्कियां लेकर हमारा शो सुन रहे हैं, तो इस दौरान जरा थोड़ा सा ठहरिए और कुछ वक्त, कुछ लम्हा हमारे लिए निकालिए। क्योंकि क्योंकि क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार सवाल है। सवाल ये है कि आज आपने कपड़े क्या पहने, मतलब किस रंग के कपड़े पहने हैं, लाल, काले, सफेद? अब क्योंकि भैया हम तो पहन के आए हैं येलो, ब्लैक एंड व्हाइट। अब आप बताइए कि आपने कौन सा कलर पहना हुआ या आप कौन सा कलर पहनकर आज घर से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ आपके पसंदीदा रंग और आपके पहने गए कपड़ों यानी कि उसके रंग के बारे में कुछ बहुत ही मजेदार सा, बहुत ही गजब का और बहुत ही यूनिक वाला आइडिया भी दूंगी, बताऊंगी भी, और ये भी बताऊंगी कि अगर आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर जा रहे हो जहां आपको चाहिए कि भाई यहाँ तो मुझे सक्सेसफुल होकर ही आना है, तो उस दौरान आपको कौन से कपड़े पहनने चाहिए। भैया मत कहना कि आरजे उन्नति आप ये कब से करने लगे, ना ना नहीं, ये मेरा पार्ट टाइम जॉब नहीं है, बस कुछ है ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कलर्स भी बोलते हैं। नहीं, अब्बा जब्बा डब्बा नहीं बोलते हैं, वो अपने तरीके से बोलते हैं। जब भी आपकी आंखें, आपकी नज़रें उन स्पेसिफिक कलर को देखती हैं तो आपका दिमाग कोई एक इशारा ज़रूर करता है। लेकिन लेकिन लेकिन हाँ, इससे पहले कि मैं अपना पिटारा खोल के आपको बताऊं कि कौन सा रंग क्या बोलता है, आप हमको अपना चैट बॉक्स में बताइए कि आपने कौन सा रंग पहना हुआ है। मिलते हैं, इस गाने को एंजॉय करते रहिए, इस गाने के इस पार मिलते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि आपके पसंदीदा रंग के अंदर कौन सी छिपी हुई बातें हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर आरजे उन्नति।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

भैया आप जो प्यार करता है वो पागल बने या ना बने, लेकिन जो रंग आपने पहना है वो आपको पागल जरूर बना सकता है। कैसे कैसे कैसे ये हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं आपके अपने मॉर्निंग का स्पेशल वाला प्रोग्राम गुड मॉर्निंग हुड्डा विद योर वेंसडे की मॉर्निंग आज नीति। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन पर। और मेरा एक बहुत ही सीधा सा शांत सा सवाल था कि आज आपने कौन सा रंग पहना है, यानी कि कौन सा कलर आपने पहना हुआ है, या किस कलर को पहन के आप अपने घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं। तो किसी ने तो कहा है कि हमने तो करिया रंग पहना है, यानी कि काला कलर पहना हुआ है, और हम किसी ने हमको कहा है कि आज मैं काली और लाल फूलों वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूबसूरत विचार है आप सभी के। लेकिन आपको पता है कि जो आपका ब्लैक कलर है ये एक किसी चीज़ को डोनेट कर रहा है, यानी कि कुछ बता रहा है, किसी एक पर्टिकल पॉइंट को डोमिनेट कर रहा है। जी हाँ, जो भी रंग आपने इस वक्त पहने हुए हैं उनका अपना एक साइकोलॉजी होती है, यानी कि आपके रंग बात करते हैं आपसे, नहीं उस इंसान से जो आपको देखने वाला है। तो एक बहुत स्पेसिफिक जगह पर कुछ रंगों का महत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सोमवार को आप ये पहने, मंगलवार को आप ये पहने, ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी खास इवेंट में जा रहे हो तो आपको अपना सही रंग चुनने के लिए उसकी साइकोलॉजी पता होनी ही चाहिए। आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में कलर्स जो हैं वो बहुत ही सोच समझ के यूज हो रहे हैं, जिसमें मेनली हॉस्पिटल्स में आपको ग्रीन कलर देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो आंखों के लिए अच्छा है। रेस्टोरेंट्स के अंदर आपको ऑरेंज, रेड और येलो कलर ज़्यादातर देखने को मिलता है, और जिन रेस्टोरेंट्स के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे रंग होते हैं, वहाँ जाकर आपको भूख लगती है और आपका दिमाग उनकी तरफ जाता है। जिसमें से मैकडोनल्ड, KFC आप देख सकते हैं, बहुत बड़े एग्जाम्पल सेट करते हैं। क्यों इतने ज़्यादा? क्यों? क्योंकि भैया ये कहीं ना कहीं भूख को डोनेट करता है। वहीं पर ब्लैक कलर जो कि एक ताकत का है, इसीलिए अक्सर वकील बाबू इसको पहन के घुमा करते हैं। और सफ़ेद क्योंकि ये शांति का प्रतीक माना जाता है, और इसीलिए इसको वो लोग पहनते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं। पर क्या सिर्फ इतना ही रंगों का काम होता है, इतना ही बताते हैं ये? नहीं, आपके हर रंग के अंदर अपनी एक छिपी बात होती है। हर रंग अपने बारे में कुछ ना कुछ जरूर बता रहा है। तो शुरुआत करते हैं आपके अपने पसंदीदा और इंडिया में सबसे ज्यादा चलने वाला रंग, जिसको हम कहते हैं द रेड कलर, यानी कि आपका लाल रंग। अगर किसी ने लाल पहना हुआ है तो ये उनके लिए स्पेशली। भाई जो लाल होता है ना, वो ऊर्जा यानी कि एनर्जी, जोश, खतरा, भूख सबको डोनेट करता है, सबको डोमिनेट करता है। रेस्टोरेंट्स इसका इस्तेमाल करती हैं आपकी भूख बढ़ाने को, ट्रैफिक वाले अंकल इस्तेमाल करते हैं आपको खतरा दिखाने के लिए। इवन जहाँ पे खतरे का साइन होता है वहाँ भी रेड रेड कर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये खतरे का ही एक कलर हो चुका है, इसके अलावा ये जोश और आपके ऊर्जा यानी कि आपकी एनर्जी के लिए भी है। तो अगर आपको कहीं भी बहुत एनर्जेटिक फील करना है तो वहाँ पर आप रेड कलर पहन सकते हो। और आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताने वाले हो कि ऐसे कौन सी कंपनीज हैं या ऐसे कौन सा बाउंड्री में रहते हुए लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में कोई एक स्पेसिफिक तरह की ब्रांड ज़रूर होंगे या फिर स्पेसिफिक तरह के लोग ज़रूर होंगे जो रेड को अपना पावर कलर मानते हैं, और इसीलिए आपको अक्सर बाजार में लाल रंग देखने को इधर उधर मिल जाता है। टमाटर वाला लाल मत बोलिएगा कि सब्जी वाले के पास टमाटर रखा रहता है, वो भी लाल लाल ही था। इसके अलावा बात करते हैं पीला, जो ऑफ कोर्स आज मैं भी पहनकर आई हूँ, और इस रंग को कहते हैं खुशी का, पॉजिटिविटी का, एनर्जी का। एनर्जी तो भैया सुबह सुबह बहुत ज़रूरत होती है, और इसीलिए देखिए पीला पहनने के बाद मैं इतना चिल्ला रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कलर सिर्फ मुझ पर असर डाल रहा है। जो देखता है उसको लगता है कि इंसान बहुत ही फ्रेश है, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ है, पॉजिटिव सोच रखता है। इसीलिए जब आपसे किसी की पहली मुलाकात होती है, अगर वो आपको तोहफे में फूल देना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो फ्लावर आपके पास आता है वो यही आता है, येलो कलर। सनफ्लावर को इतना ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है, आपकी आँखें देखकर खुश हो जाती हैं, क्योंकि ये पॉजिटिविटी का एक साइन होता है। और जहाँ पर ये मौजूद होता है, यानी कि जहाँ पर येलो कलर मौजूद होता है, वो चाहे अपने टिंट में हो या अपने शेड में हो, आपको एक फ्रेशनेस का तरीका ज़रूर फील होता है, एक फ्रेशनेस का अंदाज़ फील होता है। फिर आप चाहे
कहीं भी चले जाए, इवन अगर आप बेकरी के अंदर भी जाते हैं जहां पर मेनली कलर ब्राउन रेड होता है, वहां भी अगर किसी ने लेमन पाई रखी हुई है तो आपकी नजर बाकी सबको छोड़ के येलो वाले पे ही जाएगी, क्योंकि येलो बहुत ब्राइट होता है और अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करता है। एक पॉजिटिविटी का साइन होता है, यानी कि आप बहुत सकारात्मक हैं, आप बहुत खुश हैं और बहुत फ्रेश हैं। तो ये ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे अच्छा होता है। इसीलिए तो पीके फिल्म में आमिर खान भैया ने पीला हेलमेट लगा रखा था, ताकि सबसे पहले जो ध्यान जाए ऊपर से गॉड जी का, वो मेरे ऊपर ही जाए। बाकी सब तो काला पीला लगा ही रहे हैं, लेकिन मैं पीला लगाऊंगा, दूर से चमकने वाला रंग। इसीलिए ट्रैफिक में इस लाइट का भी इंतजार किया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे रंग की। हो सकता है इनमें से कोई तो आज पहनने वाला है। सावन का महीना चल रहा है और सावन में ऑफ कोर्स ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। सब लोग ग्रीन ग्रीन पहन के घूम रहे हैं, इवन ट्रेंड चल रही है ग्रीन चूड़ियों का, लेकिन ग्रीन में ऐसी क्या खास बात है कि आपको ये हॉस्पिटल्स में भी नज़र आता है, इवन फाइनेंस कंपनी में भी ये नज़र आ रहा है। क्यों लोग ग्रीन का इतना यूज़ करते हैं? तो ग्रीन को यूज़ करने का सबसे पीछे बड़ा कारण ये है कि एक प्रकृति, स्वास्थ्य और विकास का संकेत है, यानी कि ग्रोथ का एक साइन है। इसीलिए जब हॉस्पिटल्स में यूज होता है तो आंखों को आराम देने के लिए प्लस हेल्थ से जोड़कर इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर नेचर जब भी ग्रीन होती है आपको सुकून मिलता है, और जहां सुकून है वहां हेल्थ है। इसके अलावा बात करते हैं जो कंपनीज इसका इस्तेमाल कर रही हैं, मेनली फाइनेंस की कंपनीज इसका इस्तेमाल करती हैं, बिकॉज वो रिप्रेजेंट करती हैं ग्रोथ को, यानी कि विकास को। यह आपकी आंखों को सुकून देता है और तनाव को कम करता है। और आपको भी पता होगा हॉस्पिटल्स के जितने भी आईसीयू होते हैं, जितने भी ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, उनके अंदर ग्रीन कलर को इस्तेमाल करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि डॉक्टर्स की आंखों को आराम दें, क्योंकि बाकी कलर आंखों में चुभते हैं और लगातार एक जगह पर देखने से हेलुसिनेशन भी हो सकता है। वही ग्रीन कलर आंखों को आराम देता है, आंखों को थकाता नहीं है, और डॉक्टर्स घंटों तक वहां पर खड़े होकर माइनर से माइनर सर्जरी कर पाते हैं। इसीलिए ग्रीन इतना पावरफुल है, इसीलिए ग्रीन को इतना डोमिनेंट कलर माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं आप सबके पसंदीदा और आज के ट्रेंडी कलर की, जो हर दूसरे इंसान की पसंद हो चुकी है। हालांकि आपकी मम्मी पापा की बिल्कुल पसंद नहीं होगी, मुझे डेफिनेटली पता है। अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है तो आपने कभी ना कभी डायलॉग जरूर मारा होगा, ओह माय फेवरेट कलर इज ब्लैक, मुझे काला बहुत पसंद है। और मम्मी कहती है, क्या तुम ये भैरव बाबा बन के चल देते हो रोज सुबह सुबह? क्योंकि मेरे घर में तो मुझे बहुत ताने मिलते हैं, जब भी मैं ऑल ब्लैक पहन के निकलूंगी मेरी मम्मी कहेंगे, लो आ गई काली माता, इनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास कोई कलर ही नहीं है, कितने भी कपड़े दिला दो घूम घाम के ये करिया पे ही चली जाएंगी। अगर आपके घर में भी ऐसे ताने हैं ना, तो आइए बात करते हैं कि काला रंग किसको डोमिनेट कर रहा होता है। काला रंग डोमिनेट करता है ताकत को, आपके रहस्य को, यानी कि अगर आपको कहीं मिस्ट्री क्रिएट करना है जस्ट लाइक अ सीईओ ऑफ योर कंपनी। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े कंपनी के लोग होते हैं वो अक्सर ब्लैक कलर पहन के घूमते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनके लिए स्पेसिफिक ये कलर बना दिया गया है, ना वो इसे रिप्रेजेंट करते हैं पावर को, ताकत को, इससे रिप्रेजेंट करते हैं मिस्ट्री को। जहाँ रहस्य होता है वहाँ लोगों का ध्यान ज़रूर होता है। ये बहुत गंभीरता और गहराई को भी दिखाता है। इसीलिए अक्सर जहाँ पर बात आती है डोमिनेंस की, बात आती है पावर की, वहाँ आपको ब्लैक कलर ज़रूर नज़र आएगा। फिर चाहे वो कोई सीईओ हो या हो कोई वकील, आपको पावर रिप्रेजेंट करने के लिए ऑलवेज ब्लैक ही नज़र आने वाला है। समझ गए ना? काला कलर सिर्फ एक कलर नहीं होता, ये शो करता है कि आप कितने पावरफुल हैं। इसके अलावा आप मेरी मम्मी का फेवरेट, इवन आपकी मम्मी का भी फेवरेट सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग शांति, पवित्रता और स्वच्छता का एहसास कराता है। ये सादगी और खुलेपन का दिखावा करता है, यानी कि दर्शाता है, दिखाता है। अगर आप कहीं सफ़ेद रंग पहन के जाते हैं तो लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि आप कितने खुले विचारों के हैं, कितने खुले इंसान हैं, आपसे कोई भी बात कर सकता है। जहां ब्लैक रोक कर रखता है कि आपसे कोई यूं ही बात ना करे, वहीं वाइट कलर लोगों को मौका देता है कि आओ मुझसे बात कर सकते हो। इसीलिए हर कलर की ना अपनी साइकोलॉजी होती है, अपने बात करने का एक तरीका होता है, एक अंदाज होता है। बस आपको सही रंग पता होना चाहिए कि आप जा रहे हो तो क्या पहन के जा रहे हो।
अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं आज, तो नेवी ब्लू, व्हाइट या ग्रे कलर पहने। इसमें आपकी ईमानदारी, भरोसा झलकता है। बट अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो तो डार्क ब्लू या ब्लैक पहने, क्योंकि ये पावर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप कहीं क्रिएटिविटी काम में लगे हुए हैं तो पीला और हरा आपके लिए इस वक्त सबसे परफेक्ट कलर माना जा रहा है। तो आपने कौन सा कलर पहना है और कौन सा कलर अब आप सोच रहे हैं घर से पहन के निकलने के लिए, बताइएगा जरूर चैट बॉक्स में। और आपके लिए हम पेश करते हैं इस खूबसूरत सा गाना केके की आवाज में, क्योंकि हम भी आपको यूं ही सोचते हैं जैसे केके ने कहा है, तुझे सोचता हूं मैं तो सामोश हूं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे उन्नति और मौजूद हूँ आप सभी के साथ है। आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और अब मैं चैट बॉक्स की तरफ चलना पसंद करूंगी क्योंकि चैट बॉक्स में काफी सारे मैसेजेस आ गए हैं, तो वक्त है आपके मैसेजेस को देखने का।

0: चैट बॉक्स में आज जो पहला मैसेज आया है वो आया है गीता श्रीवास्तव जी का, लिखा है गुड मॉर्निंग आरजे, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसी हैं आप, आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग ओडा में। अनोखी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, लिखा है गुड मॉर्निंग टू यू। एंड अक्षरा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद मिश्रा जी जुड़े हैं गोंडा से और उन्होंने बताया था कि उन्होंने काला कलर पहना हुआ है आज, थैंक यू बताने के लिए। सुजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप। सुप्रभात लिखा है हमारी सविता दुबे जी ने, सुप्रभात आपको भी, आपका भी वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। एंड सुशील यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं जो लिख रहे हैं लबों पर कम ना होने दो उजाले मुस्कुराहट की, उदासी में यही दौलत तुम्हारे काम आएगी। क्या बात है, क्या बात है। एंड सविता जी लिख रही है आज मैं काली लाल पीला फूलों वाली साड़ी पहनूंगी, तो आई होप आपने पहन लिया होगा और आप बहुत खूबसूरत दिख रही होंगी। सुशील जी वापस से लिख रहे हैं लोग इकट्ठा मत कीजिए ये बदल जाते हैं, लोग इकट्ठा मत कीजिए ये बदल जाते हैं, नोट इकट्ठे कीजिए नए पुराने सब चल जाते हैं। क्या बात है भैया, बहुत ही कमाल का थॉट है आपका। एंड सविता जी ने इसके बाद अपने गाने को रेट किया है, थैंक यू सो मच। एंड लिखा है काली माता बनकर जाऊंगी, जाइए जाइए बस गुस्सा मत कीजिएगा, बाकी सब चलेगा। फिलहाल आपके चैट बॉक्स को देखने के बाद और कल की यानी कि आज सुबह सुबह जो न्यूज़ आई है वो सच में थोड़ी सी आपको उदास कर देने वाली है। सिनेमा की दुनिया में एक ऐसी खबर आई है जो उनके फैंस को, जो सच में अभी तक उन्हें देखते आ रहे थे एज अ विलन, उन्होंने सबको बहुत हंसाया है। कहने को वो पर्दे पर हमेशा विलन बन के आते थे, हमेशा डराने आते थे, बट वो उल्टा हंसा कर चले जाते थे। आमिर खान की फिल्म गजनी समेत कई बड़े फिल्मों में उन्होंने काम किया था और आज यानी कि कल, और आज सुबह तो न्यूज़ आई है ऑफकोर्स, कल 4 अगस्त को उनकी डेथ हो गई है। नाम प्रदीप रावत, 74 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में अपनी आखिरी सांस ली थी। वो कैंसर जैसी बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आती है उनकी आत्मा की शांति के लिए हर कोई प्रे कर रहा है। आपको बताते हैं हम कि प्रदीप रावत ना सिर्फ एक एक्टर थे बल्कि एक ऐसे कलाकार थे जो किसी भी किरदार को निभा सकते थे, उसे जीत भी लेते थे। हिंदी सिनेमा में उन्होंने अपनी दिग्गज एक्टिंग को दिखाया है, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बहुत ही उम्दा एक्टिंग को दिखाया है, लेकिन उनकी शुरुआत कभी एक्टिंग से होने वाली ही नहीं थी। वो शुरू करने वाले थे अपनी जिंदगी आर्मी वालों की तरह, उनके पिता आर्मी में थे और वो चाहते थे कि अपने पिता की तरह वो भी आर्मी में जाए, लेकिन हर बार वो जब आर्मी का फॉर्म भरते एग्जाम देते तो उसमें फेल हो जाते थे। आर्मी में बार बार फेल होने की वजह से उन्होंने बैंक की नौकरी कर ली थी। हम आपको बता दें ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रदीप रावत जी ने जबलपुर में ही एक बैंक में काम करना शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने राज बब्बर के थिएटर ग्रुप एकजुट को ज्वाइन किया और यहीं से उनके फिल्मों का रास्ता खुल चुका था। 1985 में सुभाष घई के डायरेक्शन में आई फिल्म मेरी जंग, इस फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की थी जिसमें अनिल कपूर और अमरीश पुरी पहले से थे। हम आपको बता दें ये वो एक्टर हैं जिन्होंने एक नहीं कई भाषाओं में काम किया है और जब भी इन्होंने किसी भी लैंग्वेज में काम किया है वहां पर ऑफकोर्स लोगों के दिलों को जीता है। तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, भोजपुरी, नेपाली, बंगाली, अंग्रेजी, तमिल, हर एक भाषा में इन्होंने काम किया है और इसके अलावा इन्होंने कई टीवी शोज में भी काम किया है। हम आपको बता दें इन्होंने महाभारत में अश्वस्थामा का भी रोल किया है, तो अगर आपने अश्वस्थामा को देखा है महाभारत, पुराने महाभारत में, तो आपको अब अंदाजा लग गया होगा कि हम किस महान एक्टर की बात कर रहे हैं, प्रदीप रावत। अफसोस की बात है कि हमने एक बहुत ही कमाल के, बहुत ही उम्दा, बहुत ही दिग्गज कलाकार को खो दिया। फिलहाल आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार मिलते हैं और आपको बताते हैं, बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग गोंडा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त

यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत है आप सभी का आपके अपने वाले प्रोग्राम मॉर्निंग के स्पेशल प्रोग्राम एक्चुअली आपके अपने गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूँ आपकी अपनी आरती एंड आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। अच्छा, आपको पता है दोस्तों कि आपके अपने भारत में उगने वाला चना सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है और कहाँ से सत्तू सबसे ज़्यादा भारत में आता है, क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं चैट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए हम आपको बताते हैं कि आज हमने सत्तू का जिक्र छेड़ा है, तो छेड़ा क्यों?

भारत में एक ऐसी भी जगह है जहां पर चने का उत्पादन बहुत भारी मात्रा में किया जाता था और वहां से चना निकलकर सत्तू में बनता था। सत्तू से वो पूरे देश में दिया जाता था। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे अब लोगों ने सत्तू को पीना या खाना बंद कर दिया है, इसकी वजह से किसान हो चुका था परेशान। किसान ने कहा कि भैया जब बिक नहीं रहा है तो करना क्यों है। उसने धीरे धीरे खेती करना बंद कर दी। जो युवा हुए यानी कि जो किसान के बच्चे हुए, जब वो बड़े हुए तो वो भी रोजगार के लिए अपना अपना गांव छोड़कर शहरों की तरफ निकल चुके थे। तब वो एंट्री होती है वहां पर एक आईएएस ऑफिसर की, नाम ओजस्वी राज। ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने किसानों को वापस से चना उगाने को कहा और वहां उनकी मदद करने के लिए मात्र 700 औरतें सामने आई, 700 महिलाएं सामने आई और उन्होंने कहा कि ठीक है हम चना उगाएंगे वापस से। वो चना उगाती, उसे काटती, उसको रोस्ट करती, उसे सत्तू में पीसती और देने लगी। पहले जो पैकेजिंग बहुत ही साधारण बनकर आ रही थी वो अचानक से बहुत ही फैंसी पैकेजिंग में कन्वर्ट कर दी गई। इसके अलावा ये सत्तू अब सिर्फ भारत में नहीं, इसके अलावा ये चाइना की यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया जाने लगा। जो सत्तू भारत में भी बिकना बंद हो चुका था उसको इस आईएएस ऑफिसर ने पहुंचा दिया चाइना तक। हम आपको बता दें ये एक ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने सत्तू जो कि आपको 10-20 रुपए में कहीं भी मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपए के अंदर आने वाली चीज़ है, 100 से करोड़ों का कारोबार उन महिलाओं के लिए खड़ा कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें ये भैया एकदम भूला हुआ सुपर फूड था। आपको भी पता है कि पुराने ज़माने में हमारे जितने भी पूर्वज थे, इवन हमारी दादी नानी तक इस्तेमाल किया करती थी सत्तू को अपने खाने में, स्पेशली इन गर्मी, क्योंकि ये ठंडा होता है, आपको बहुत देर तक आपका पेट भरा रखता है, इवन वजन कम करने में भी मदद करता है अगर आप इसको सही मात्रा में सही तरीके से सही ढंग से लेते हैं। गर्मियों में राहत पहुंचाता है, एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक बन के सामने आता है और आप इसको बहुत ही अच्छे तरह से कंज्यूम भी कर सकते हैं फिलहाल। लेकिन ये अब कम होने लगा क्योंकि लोगों ने सत्तू छोड़कर कोल्ड ड्रिंक, सोडा, आइसक्रीम, न जाने किन किन चीज़ों को हाथ लगा लिया। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि चने के अंदर प्रोटीन भी होता है, तो भैया सत्तू आपकी प्रोटीन को भी पूरा करने में मदद करता है। हालांकि ये कार्बोहाइड्रेट का भी एक अच्छा सोर्स होता है, कार्बोहाइड्रेट जो आपको एनर्जी देता है। अगर आपने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है गर्मियों में क्योंकि खाने का मन अक्सर नहीं करता है, तो सत्तू एकमात्र ऐसा सुपर फूड है जो आपको कार्बोहाइड्रेट भी देता है, प्रोटीन भी देता है, आपके शरीर को ठंडा भी रखता है और आपको एनर्जी भी मिलती है, प्लस आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है। ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। लेकिन वही बात है ना, जब हमारे भारत में, हमारे देश में बाहर की चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं तो हम अपनी ही चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे कि आज से पहले हमारे भारत में खाया जाता था मोटा अनाज, लेकिन जब अंग्रेज़ आए तब उन्होंने कहा कि मोटा अनाज तो गरीबों का होता है, और जैसे ही लोगों ने ये बात सुनी मोटा अनाज खाना बंद कर दिया। और जब कोई इंसान यानी जब कोई देश किसी चीज़ को खाना बंद कर देता है या उसको लेना बंद कर देता है तो किसान ना चाहते हुए भी उसकी खेती पर रोक लगा देता है कि जब कोई ख़रीद नहीं रहा है तो उगाने का भी क्या मतलब है, इसकी उत्पादन करने का भी क्या मतलब है। अफसोस की बात है। अब तो भारत में वापस से अपने उन्हीं सुपर फूड्स को, उन्हीं अनाजों को, उन्हीं ग्रेन्स को वापस लाया जा रहा है, फिर चाहे वो ज्वार हो, बाजरा हो, मिलेट्स हो, कोई भी हो, और भारी मात्रा में इसका उत्पादन शुरू हो चुका है। लेकिन बाजार में आज भी ये बहुत महंगे दामों में बिक रहा है। वहीं पर ऐसे में चना भी ऑलमोस्ट बंद होता जा रहा था, लेकिन जब इस आईएएस ऑफिसर की बलिया में एंट्री होती है और वो देखते हैं जो बलिया अपने चने के लिए, अपने सत्तू के लिए पॉपुलर हुआ करता था, अचानक से वहां पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, उसे बहुत खराब लगता है। वो लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप चना उगाना शुरू करोगे तो हम आपको आगे जाकर बहुत बड़ा कारोबार भी दिलाएंगे, ये बिकेगा, जरूर बिकेगा। किसानों ने लाख मना किया कि लोग अब खरीदते ही नहीं हैं, तो एस आई एस ऑफिसर ने यानी कि ओजस्वी राज ने कहा कि ऐसे कैसे नहीं खरीदते हैं, आप उगाओ हम देखते हैं, इसका काम मैं करूंगा। तो वहां से यानी कि बलिया गांव से निकल कर आई 700 महिलाएं और उन्होंने ये जिम्मा अपने कंधों पर लिया।
उन्होंने वापस से चना उगाना शुरू किया, उसकी कटाई की, उसे पेड़ों से निकाल कर लेकर आई, उसको रोस्ट किया, उसके छिलके उतारे, उसको सत्तू में कन्वर्ट किया। और अभी तक जो पैकेजिंग बहुत ही साधारण तरीके से की जा रही थी, जो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, इस आईएएस ऑफिसर ने बात समझ ली थी कि लोगों को चीज़ें खिलाने के लिए पहले उनकी नज़रों को अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा। और वो पैकेजिंग जो बहुत साधारण शायद एक पन्नी में हो जाती थी, उसको बदल कर एक फैंसी डिब्बों के अंदर किया गया। जब पैकेजिंग डिब्बों में आ चुकी थी तो लोगों ने इसको खरीदना भी ज़रूरी समझा, क्योंकि ये आँखों को खींच रहा था, ये ध्यान को खींच रहा था। इसके ऊपर सत्तू से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो लेबल्स भी लगाए गए। सत्तू में क्या है, कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, कितनी कैलोरीज हैं, हर एक वो चीज़ जो यूथ को ट्रैक करती है, जो यूथ को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आजकल का यूथ लेवल बहुत अच्छे से पढ़ता है। उसे पता होना चाहिए कि 100 ग्राम में उसे क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, हर एक चीज़ लेवल लगाया गया। और तब जाकर भारत में सत्तू दोबारा से खरीदा जाने लगा। इसके अलावा इस आईएएस ऑफिसर ने सिर्फ सत्तू को भारत तक नहीं रखा, जब उन्होंने देखा कि चाइना में भी बच्चों को यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही हेल्दी खाना देने का काम चल रहा है, तो उन्होंने सत्तू को सत्तू बॉम्ब्स में कन्वर्ट कराया, यानी कि छोटे छोटे लड्डुओं में कन्वर्ट कराया, और उसे चाइना की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तक भिजवा दिया। जो बलिया अपने चने उगाने के लिए पॉपुलर होकर बिल्कुल चना उगाना बंद कर चुका था, उसने दोबारा से चने उगाकर उसको सत्तू में बनाकर करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी, वो भी सिर्फ एक इंसान के भरोसे पर, और वो भरोसा जीता था ओजस्वी राज ने। तो भाई, आपका एक छोटा सा कदम किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, ये बात मैं आपको कई बार साबित कर चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ आपके अपने मॉर्निंग वाले शो में। तो ये तो थी कहानी आईएएस ऑफिसर ओजस्वी राज की। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और क्या आपने इस गर्मी सत्तू पिया है, चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि ये वाला सेगमेंट होता है आपकी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के लिए, जिनमें आपको जानने को मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो, लेकिन उनकी कहानियां आपको इंस्पायर्ड करती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए आपका अपना शो गुड मॉर्निंग गोना। आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, ये गोना शहर की धड़कन पर, याद तो है ना, आपके साथ जुड़ी है आपकी अपनी आर्ट्स।

0: अरे अरे अरे यार यार सेंटी, तू यहाँ जंगल में बैठा काहे को रो रहा है भाई?
1: अरे यार बंटी,
0: हाँ?
1: एक लड़की को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: अरे तो इसमें रोने की कौन सी बात है?
1: अरे, जिसको भूलने की कोशिश कर रहा हूँ उसका नाम नहीं याद आ रहा।

भैया, अगर आपकी दुकान पर कोई अंग्रेज आ जाए या कोई बाहर से आया हुआ इंसान आपसे सवाल कर ले अंग्रेजी में, और मान लीजिए आपको अंग्रेजी नहीं आती है, तो क्या आप स्कूल बनवा डालेंगे? नहीं ना, बट ऐसा किसी ने तो किया है, तभी तो मैं यहाँ लेकर आई हूँ। जी हाँ, एक संतरे बेचने वाले से किसी ने सवाल कर लिया कि संतरे कितने के हैं, कितना कॉस्ट पड़ेगा इनका, और ये सवाल अंग्रेजी में था। बस वो जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने ठान लिया अब तो बनेगा हमारा स्कूल, स्कूल बनाएंगे अब हम। कौन है ये महान शख्स, बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने वाले शो गुड मॉर्निंग गुना में। आपके अपने मॉर्निंग का स्पेशल प्रोग्राम मौजूद है आपकी आरशी उन्नति, आपकी मॉर्निंग रेडियो चौकी, आप सभी के साथ है ना। आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और इस आज की इंस्पायरिंग सेगमेंट में हम बात करेंगे एक और महान इंसान की, महान पर्सनालिटी की, जिसने कभी खुद पढ़ाई नहीं की लेकिन सैकड़ों बच्चों के एजुकेशन का जिम्मा जरूर उठा लिया। कौन है वो, बताते हैं

जी हाँ, तो भाई एक सवाल किया था एक बाहर से आए एक इंसान ने कि क्या क्या है कीमत इन संतरों की। और वो शख्स जो संतरे बेच रहा था उसे ये लाइन समझ नहीं आई, वो बस उसकी शक्ल देखते रह गया किसने क्या कहा क्या पूछा मुझसे। और जब उसे ये बात समझ नहीं आई तो वो जवाब भी नहीं दे पाया, जवाब नहीं तो ऑफ कोर्स संतरे बिके भी नहीं और वो अंग्रेज वहां से चला गया। लेकिन ये बात उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी क्योंकि बचपन से कभी खुद पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, तो अब वो सोच रहे थे कि क्या जो पढ़ते लिखते नहीं है उनकी जिंदगी कैसी होती होगी। संतरे बेचने वाले 65 ईयर्स के यानी कि 65 वर्ष के हरेकालाल हजब्बा जी को सोमवार में 2020 को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि संतरे बेचते बेचते अवार्ड कैसे मिल सकता है। जी हाँ, तो भाई उन्होंने काम ही कुछ ऐसे किया था, एक विदेशी ने आकर उनसे संतरे की कीमत पूछी, वो नहीं बता पाए और उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, बट उन्होंने वहीं पर तय कर लिया कि कोई बात नहीं, मुझे नहीं आता ना सही, बट मेरे आने वाले बच्चों को जो आगे आने वाली जनरेशन है या जो बच्चे हैं इस वक्त उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा में एक छोटा सा गांव है, उसमें रहने वाले हरेकालाल हजब्बा जी जो बचपन से कभी भी पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल नहीं गए थे, उन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई की नहीं तो उन्हें कोई भाषा आई भी नहीं, वो सिर्फ वही भाषा बोल पाते थे जो शायद वहां बोली जाती थी, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा थी, जो घर पर बोली जा रही थी, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। बट क्योंकि हम जब भारत में काम करने निकलते हैं या बस स्टैंड पर आप खड़े हैं तो आपको हजारों लोग मिलते हैं, हजारों तरह की भाषा बोलते हैं, और जब आपको कोई भाषा नहीं आती तो वो आपसे इंग्लिश में बात करते हैं। यूं तो इंग्लिश में बात करना पता नहीं क्यों कब से लोगों ने एक स्टेटस का सिंबल बना दिया कि आप अच्छी अंग्रेजी बोल देते हैं, मतलब आप बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, आप एक शहरी इंसान है, बहुत एजुकेटेड इंसान है, बट ऐसा नहीं होता। भाषा सिर्फ भाषा होती है, अपनी बात को रखने का जरिया होती है। हाँ, वो अलग बात है कि अंग्रेजी बहुत सारी जगह बोली जाती है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि ये जो आप भाषा बोलते हैं वो खराब होती है या वो आपको लो फील कराए। अब कम्युनिकेशन के जरिए में जब उनसे किसी ने आकर इंग्लिश में सवाल कर लिया और वो जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें भी बस यही शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्हें लगा कि शायद मैंने पढ़ाई नहीं की ना, इसीलिए मैं आज जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, मैं पढ़ाई नहीं कर सका तो क्या हुआ, बाकी लोग जरूर पढ़ेंगे। अब इस बात को सोचकर उन्होंने ये तो ठान लिया था कि स्कूल बनाना है, लेकिन स्कूल बनाना इतना भी आसान होता है क्या? स्कूल बनाने में बहुत पैसे लगते हैं, जगह होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए। अब इसके लिए उन्होंने पंचायत के पास जा जाकर एक बार नहीं, दो बार नहीं, न जाने कितनी दफा मिन्नतें की, पंचायत वालों से बात की, बार बार वो उनसे स्कूल बनाने की जिक्र करते रहे, बार बार वो अपनी जिद को सामने रखते रहे, पंचायत वाले उनकी मजाक में ले रहे थे कि भैया ये तुम क्या स्कूल बनाओगे, तुमने खुद तो कभी पढ़ाई की नहीं, स्कूल बनाना मतलब एजुकेशन को देना, शिक्षा देना, शिक्षा वही दे सकता है जिसके पास खुद शिक्षा हो, वो नहीं दे सकता ना जिसके पास है ही नहीं, और तो और तुम्हारे पास तो दो वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं है, तुम क्या स्कूल बनाओगे। ये मजाक बार बार यूं ही ऐसा ही बनता रहा, घर वालों ने भी बहुत विरोध किया कि नहीं तुम क्या ही स्कूल बनाओगे यार, हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, दो वक्त की रोटी हमें नहीं मिल पाती, तुम पूरा दिन संतरे बेचते हो और सिर्फ 150 रुपये कमा कर लेकर आते हो, 150 रुपये में हमारा घर नहीं चल रहा, तुम स्कूल बनाने की बात करते हो। बट इतना सब कहने के बाद भी, घर वालों का विरोध, बाहर वालों का मजाक, सब कुछ करने के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा और उन्होंने कहा कि स्कूल तो बनेगा ही बनेगा, स्कूल बनेगा, बच्चे पढ़ने जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाया इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं पढ़ेगा, दूसरा ज़रूर पढ़ेगा। उन्होंने अपने गांव में स्कूल ना होने की वजह से पढ़ाई नहीं की थी और इसके लिए वो बड़े परेशान थे कि जिस गाँव में स्कूल नहीं है मतलब वहाँ पर बच्चे क्या कभी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, मैं बनाऊँगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं तो क्या हुआ। तो भैया उन्होंने क्या किया हम आपको बता दें, छुट्टियों के दौरान वहां गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर दक्षिण कन्नड़ के जिला पंचायत कार्यालय में जाते जाते बार बार अधिकारियों से शैक्षणिक सुविधाओं की मांग करते रहते थे।
हजप्पा की मेहनत एक दिन रंग लाती है। जिला प्रशासन उन्हें साल 2008 में दक्षिण कन्नड़ जिला पंचायत के अंतर्गत न्यायपुंडु गांव में 14वां माध्यमिक स्कूल बनवाने की अनुमति दे देता है और फाइनली वो स्कूल बनके तैयार भी हो जाता है। मात्र 28 बच्चों से उस स्कूल की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज उसी स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं और न जाने कितने तो पास आउट भी हो चुके हैं। 2020 में जब ये बात राष्ट्रपति जी के सामने जाती है, रामनाथ कोविंद जी के सामने जाती है, तो वो इस चीज़ से बहुत इंप्रेस्ड होते हैं और वो उन्हें बुलाते हैं अपने राष्ट्रपति भवन पद्मश्री से सम्मानित करने के लिए। अब आपको क्या लग रहा होगा कि भैया हड़प्पा जी या हजब्बा जी जो अभी तक स्कूल बनवा चुके हैं, तब इनके पास बहुत पैसा आ गया होगा, क्योंकि हमें यही लगता है स्कूल बनवाना तो एक बिजनेस है। स्कूल बनवाओ और ऑफ कोर्स आपके पास पैसे ही पैसे हैं, बट ऐसा नहीं था। जब वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो वो अपनी सफेद धोती कुर्ते में थे, पांव में चप्पल भी नहीं थी, चेहरे पर वही सादगी थी जो तब हुआ करती थी जब वो संतरे बेचते थे। कोई घमंड नहीं, कोई गुमान नहीं, कोई गुरूर नहीं, बस एक प्यारी सी स्माइल और थोड़ा सा झिझक, क्योंकि इतने सारे लोग खड़े थे, राष्ट्रपति सामने खड़े थे, बगल में इतने सारे लोग खड़े थे, पूरा देश खड़े होकर आज उनके लिए तालियां बजा रहा था। जो कभी उनको सम्मान नहीं दे रहे थे लोग, आज वो उनके लिए तालियां बजा रहे थे। वो भी कुछ ऐसे लोग भी थे उसमें शामिल जो उन्हें जानते तक नहीं थे, जिन्होंने उन्हें कभी देखा भी नहीं था, उनकी कहानी कभी सुनी भी नहीं थी। और जब उनका नाम अनाउंस होता है, वो डरते कदमों से पहुंचते हैं राष्ट्रपति के पास अपना अवार्ड लेने के लिए। राष्ट्रपति उन्हें सम्मान देते हैं, पद्मश्री से सम्मानित करते हैं और तब जाकर उनकी कहानी सबको पता चलती है कि कैसे एक संतरे बेचने वाला भी आपके लिए अगर ठान ले तो बहुत कुछ कर सकता है। भले ही उसने खुद कभी पढ़ाई ना की हो, लेकिन उसने दूसरों की पढ़ाई का जरिया जरूर खुद को बनाया, उसका जिम्मा उठाया, स्कूल बनवाया, 28 बच्चों से शुरुआत करके सैकड़ों बच्चों को पार लगा दिया। तो भाई ये होती है मेहनत, ये होती है सोच, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपकी सोच मैटर करती है, ना कि आप किस पोजीशन पर हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, कितनी आपने पढ़ाई की है, ये मैटर करता है। अगर आपकी हिम्मत है, आप सोचते उम्दा हैं, करते बेहतर हैं, तो ऑफ कोर्स आपका कर्म हमेशा आपके साथ रहता है। वो अलग बात है कि हमें लगता है कि भाई किसी भी चीज़ की शुरुआत हमसे नहीं हो सकती, हम मेहनत करने से पीछे हट जाते हैं ये सोच कर कि यार अकेला इंसान क्या ही कर लेगा। और अगर देखा जाए तो इतिहास के पन्नों में ये बात साबित है कि अकेले इंसान ने ही बहुत कुछ किया है। आप बताइए कैसी लगी आपको इस हमारी इंस्पायरिंग सेगमेंट की ये वाली कहानी, पसंद आई हो चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं और इस सेगमेंट में फिर से किसी का जिक्र जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले एंजॉय करते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोना अपनी आजमती के साथ, स्टे ट्यून्ड।

अच्छा दोस्तों, आपने राजघरानों के बारे में तो काफी सुना होगा, राजकुमारियों के बारे में काफी सुना होगा, और आपको पता होगा कि जो राजकुमारी होती हैं वो अपने महलों में कैसे ऐशो आराम से रहती हैं, उनके पास दुनिया भर की हर एक चीज होती है। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक राजकुमारी ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने महल को टाटा बाय बाय कह के जंगल में जाकर रहना, वो भी हाथियों के बीच में, पसंद किया, तो आप मेरी बात पर यकीन करेंगे क्या? नहीं ना। मुझे पता है इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कोई तो है जिसने किया है, तभी तो मैं अपने इंस्पायरिंग सेगमेंट में लेकर आई हूँ आज उनकी बातें, उनकी कहानी मेरी जुबानी। फिलहाल उससे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने मॉर्निंग स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे उन्नति, और ऑफकोर्स आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और हमारे इस सेगमेंट में, यानी कि वो कहानियाँ जो असल होती हैं लेकिन

जस्ट इमेजिन, कल्पना कीजिए एक 14 साल की बच्ची जो कि एक राजघराने से ताल्लुक रखती है, जिसके पास आराम के ऐशो आराम की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन वो गुड़िया से खेलने की बजाय जंगल में खूंखार जंगली हाथियों से दोस्ती करने निकल पड़ती है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों को इंस्पायर्ड करती है। जब भारत में महिला महावत होती ही नहीं थी, जब सिर्फ आदमी आदमी महावत होते थे और आदमियों को ही हाथी संभालने का मौका दिया जाता था, उस दौरान एक बच्ची सामने आती है और कहती है कि हम भी यही बनेंगे। लोग राजकुमारी से उम्मीद रखते हैं कि राजकुमारी बड़ी होंगी, राज्य संभालेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा किसी राजकुमार से शादी करेंगी, नौकरी करने का सपना होता है, तो हाँ वो नौकरी भी करती है लेकिन एक उच्च पद पर। पागल हाथियों के बीच में जाकर नहीं रहती, लेकिन उनके पिता को हाथियों से बहुत लगाव था, इसी की वजह से वो हमेशा अपने पिता के साथ जंगल जाया करती थी हाथियों को देखने के लिए, हाथियों के बीच रहने के लिए, जहाँ उनके दूसरे भाई बहन महलों में आराम से गुड़ियों से खेल रहे थे, खिलौनों से खेल रहे थे, ऑर्डर्स दे रहे थे कि क्या खाने में बनना है क्या नहीं बनना है। उस उम्र में वो अपने पिता के साथ जंगलों में जा रही थी। ये कहानी असम के गौरीपुर राजघराने की बेटी पार्वती बरुआ जी की है। साल 1953 में उनका जन्म हुआ था, यानी कि 1953 में उनका जन्म हुआ था, जब महल में बाकी बच्चे रेशमी खिलौनों से खेलते थे, रेशमी कपड़े पहनते थे, मखमल के गद्दों पर सोते थे, उस वक्त वो अपने पिता के साथ जंगल की कठोर जमीन पर जाना पसंद करती थी। और सिर्फ जाना नहीं, उस वक्त पसंद करती थी वो हाथियों से मुलाकात करना। हाथी मुझे भी बहुत पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जंगल चली जाऊँगी, बिकॉज मेरे अंदर वो चैलेंज नहीं है कि मैं हाथियों को संभाल पाऊँ। बट उन्होंने महज 14 साल की एक कच्ची उम्र में, जब दुनिया ठीक से समझ भी नहीं आती है, उस टाइम पर उन्होंने हाथियों का साथ ले लिया था, पकड़ लिया था उन्हें। जंगलों में एक नियम होता है जिसको कहा जाता है मेला शिकार। मेला शिकार में होता क्या है, चलिए मैं आपको बता दूं। मेला शिकार में होता है जहां हाथियों को मारा नहीं जाता, बस हाथियों को पकड़ा जाता है, बिना उन्हें चोट पहुंचाए सिर्फ उन्हें काबू किया जाता है। ये वो हाथी होते हैं जो थोड़े से पागल माने जाते हैं, यानी कि वो जो खुखार होते हैं, जो किसी की भी जान ले सकते हैं, कहीं भी मार सकते हैं, जिन्हें किसी की जान लेने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता, ये उन हाथियों के बीच में, उस मेला शिकार के बीच में जाकर 50,000 से ज़्यादा हाथी पकड़ चुकी हैं। जी हाँ, अब आपको बता दें, जब एक बार जंगल से अराउंड 500 हाथी गायब हो चुके थे, 500 हाथी जंगल में घूम रहे थे, और उस वक्त सरकार को, पुलिस वालों को, उस वक्त जो जंगल के पुलिसकर्मी होते हैं, यानी कि ऑफकोर्स आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें ज़रूरत थी किसी ऐसे इंसान की जो इन 500 हाथियों पर काबू कर सके। तब उन्हें सिर्फ एक नाम याद आता है, और वो नाम किसी पुरुष का नहीं, वो नाम था पार्वती बरुआ जी का। उस वक्त भी लोगों ने उन पर ऑफकोर्स शक किया था कि एक महिला महावत, यह कैसे पॉसिबल है, अभी तक हाथियों को कंट्रोल करते आए हैं तो सिर्फ एक पुरुष, महिला ने तो कभी नहीं किया। बट ऑफकोर्स है ना, जहाँ जिसकी लगन होती है वहाँ वो ऑफकोर्स इतिहास ज़रूर बनाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भैया अपने लगन के लिए काम करो, और ऑफकोर्स उन्होंने अपने काम को किया। 50,000 से ज़्यादा हाथी पकड़े, 500 हाथियों को काबू किया, हाथियों के साथ अपना एक अच्छा खासा दोस्ताना रिश्ता भी बना लिया। आज भी वो महलों को छोड़कर सिर्फ जंगलों में टेंट लगा कर रह रही हैं। और जब ये बात राष्ट्रपति तक पहुंची तो ऑफकोर्स उन्हें भी राष्ट्रपति भवन बुला करके 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नाम भूलिएगा नहीं, पार्वती बरुआ जी। महलों की एक रानी, महलों की एक राजकुमारी, महल छोड़कर हाथियों के बीच में जिंदगी गुजार रही है। सुनकर लगता है ना कोई इमेजिनेशन की बात चल रही हो, कोई ऐसी कहानी चल रही हो जो सिर्फ कहानियों में ही अच्छी लगती है, बट कुछ कहानियां हकीकत होती है, सच होती है। जी हाँ, फिलहाल ये तो थे मेरे इंस्पायरिंग स्टोरी से तीन ऐसे लोगों की कहानी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। आई होप आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा आज का शो आपको कैसा लगा। ज़रूर से अपना फीडबैक अपना चैट बॉक्स में दीजिए। चैट बॉक्स आपको मिलता है एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन आपको मिलेगी प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर रेडियो ज्ञानस 89.6 FM के नाम से।

0: आई होप आपने इंजॉय किया होगा हमारे इन तीन बहुत ही खास पर्सनालिटी के लोगों को, जिसमें हमारे एक आईएएस ऑफिसर थे, दूसरा एक संतरा बेचने वाला इंसान, तीसरी हमारी महलों की रानी, महलों की राजकुमारी पार्वती बरुआ जी। पसंद आई कहानियां? अगर हाँ, चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल चैट बॉक्स में मिलते हैं आपसे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

क्या बात है भाई, उदित जी और अलका की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे ऐ मेरे हम सफर कयामत से कयामत तक। और वक्त है आपके चैट बॉक्स की तरफ चलने का, क्योंकि ऑफ कोर्स घड़ी ने भी इशारा कर दिया है, वक्त होता जा रहा है आपसे विदा लेने का। तो हमने जो लास्ट मैसेज पढ़ा था वो था हमारा सविता जी का, और इसके बाद मैसेज आए हैं मुस्तफा जी का, जो हमें सुनते हैं सऊदी से लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप। एंड धर्मेंद्र मोहन जी जुड़े हैं आवाज विकास से, लिख रहे हैं उन्नति जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को धोखा मत देना, अगर किसी को छोड़ना हुआ तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर नहीं, वरना उससे शख्स को हर आंसू तुम उस वरना उसके उस शख्स का हर आंसू तुम्हें जीने नहीं देंगे। बात तो सही है जनाब, अगर आप किसी को यूं ही बेवजह ऐसे ही तकलीफ देते हो ना, और अगर वो तकलीफ, अगर वो इंसान आपको सच में मोहब्बत करता है तो उसका रिग्रेट आपको जिंदगी भर रहता है। फिलहाल लिखा है कि उन्नति जी, चना उत्पादन अधिक मध्य प्रदेश में होता है, बिल्कुल सही बात कही आपने, 35-40% चना का उत्पादन हमारे भारत का होता है आपके अपने मध्य प्रदेश में। और हमने आपको कहानी सुनाई थी बलिया की, तब मैंने ये सवाल किया था कि मध्य प्रदेश मतलब कहां पर सबसे ज्यादा चना होता है, तो इसका जवाब है मध्य प्रदेश। इरफान शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं, दूसरों की मदद करने से आपको मानसिक रूप से मजबूती मिलती है, क्योंकि इससे आपको न्यूरोकेमिकल रूप में संतुष्टि का एहसास होता है। जब आप किसी की मदद के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपका शरीर खुशी के हार्मोन और एंडोमॉर्फिन उत्पन्न करता है, जो सकारात्मक भावना को बढ़ावा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफकोर्स अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपका डोपामिन रिलीज होता है, जिसको हम अपना हैप्पी हार्मोन के नाम से जानते हैं। एंड इसके बाद विकास तिवारी जी जुड़े हैं उन्नाव से, लिख रहे हैं, हेलो बरेली वाली मैडम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप, हेलो कैसे हैं आप, मैं बढ़िया, आप बताइए। एंड आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है आपके अपने गुड मॉर्निंग ओना में, मॉर्निंग का स्पेशल प्रोग्राम में। सुजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं, उन्नति जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आप आए बाहर आई, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप मेरी नज़र में नंबर वन आज हैं, इस तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड सुजीत जी ने लिखा, स्टोरी तो बहुत अच्छी लगी बट आपके सुनाने का अंदाज ने उसमें चार चांद लगा दिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, वाओ वेरी नाइस सॉन्ग लिखा है, गाना था हमारा कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। एंड विकास जी ने लिखा है, वेरी नाइस गाना, सुपर, थैंक यू सो मच, एंड इमोजीज आए हैं उनकी तरफ से। सोनिया तिवारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हाय एवरीवन, हाय, कैसी हैं, आपका भी स्वागत करते हैं आपके अपने मॉर्निंग का स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम बलरामपुर, आपका भी स्वागत करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड उन्होंने भी बताया है कि गजनी के यादगार अभिनय को और महाभारत के अश्वस्थामा के अभिनय को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। प्रदीप रावत जी, आप युगों तक लोगों के याद में बसे रहेंगे, अमर कलाकार को हार्दिक श्रद्धांजलि। जी हाँ, रेडियो ज्ञान असली की तरफ से भी प्रदीप रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एंड इसके बाद उस्मान खान हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग आज मैम, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड इसके बाद लिखा है, गाना बहुत बेहतरीन है, थैंक यू बरेली वाली मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड देव मड़ी जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, एंड कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। फिलहाल के लिए घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो मैं चाहूंगी इजाजत, आप रखिएगा अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं आपका अपना FM रेडियो 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। अब तक आपके साथ मौजूद थी आपकी होस्टिन दोस्त, आपकी आरजुनती, लेकिन अब आप इंजॉय करेंगी इसके बाद का कार्यक्रम गाँव की गूंज। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: हैं।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM कोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: समता श्वेता जिम्मी, कहाँ हो सब लोग? अरे भाई, हरिओम आया कि नहीं? चलो सब लोग, एक हफ्ते का सामान रख लो। और सुनो, शादी वाले कपड़े जरूर रखना।
4: वहाँ किसी वेडिंग में ले चल रही है किरण दीदी।
5: लगता है डेस्टिनेशन वेडिंग है। जयपुर, केरल या गोवा, कहाँ चलना है भाई?
6: इतने खुश ना हो आप लोग किरण दी, कि बुआ सुल्तानपुर के गांव हलियापुर में रहती हैं, उनके बेटे की शादी है।
3: हाँ सही कहा जिम्मी, बिना तामझाम के लाखों रुपए खर्च किए बिना ढेर सारी रस्मों के साथ चलो शादी दिखाते हैं। तुम सब देखना, इस शादी की बातें करते नहीं थकोगी।
4: अरे किरण दीदी, इतने दिन के लिए हम नहीं चल पाएंगे, छुट्टी भी नहीं मिलेगी और इस समय घर पे मम्मी भी नहीं है।
5: नहीं श्वेता, हम सब चलेंगे। गांव की गूंज की टीम का लक्ष्य है सबको गांव की मिट्टी से जोड़ना है, और इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। शादी चाहे गांव में हो या शहर में, खुशी तो उतनी ही होती है।
6: सही कहा। एक बात बताएं, आजकल की वेडिंग मजा तो आता है पर थक जाते हैं। दो ही दिन में तिलक, एंगेजमेंट, संगीत, शादी, रिसेप्शन सब हो जाता है। वैसे गांव में कैसी शादी होती है?
3: अरे हमारी जिम्मी रानी इतनी समझदार बातें कर रही है तो सुनो, पहले पंडित जी आते हैं, दो चार लड़कियों की फोटो लेकर, उसमें एक फूफा को सरिता पसंद आ जाती है, फिर कुंडली मिलाई जाती है, और अगर कुंडली मिल गई तभी आगे की बात शुरू की जाती है।
7: अब यह तो कतई मत कहना तुम लोग कि कुंडली मिलाना भी कितनी दकियानुसी बातें हैं। हम लोग चाहे जितने भी मॉडर्न हो गए हैं, यह सब बातें मानते जरूर हैं। सच सच बताओ, न्यू ईयर की शुरुआत होने वाली है और तुम लोगों ने क्या यूट्यूब पर नहीं देखा कि 2024 में किस राशि के लिए क्या शुभ है? और तो और न्यूज चैनल पर भी आने लगता है कि दीपावली का कब शुभ मुहूर्त है, साफ सफाई कैसे करनी है, पूजा कैसे करना है।
5: सही कहा, चाहे हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, सोच हमारी अभी भी गांव की मिट्टी की है, पर इस बात को हम मानना ही नहीं चाहते।
4: चलिए सॉरी बिना सोचे समझे बोलने के लिए। और समता दीदी, हम आपके भी कपड़े ले आए हैं, रास्ते में बाकी बातें करेंगे।
6: क्या, लड़की को देखने बहुत सारे लोग गए थे? और मैंने तो ये भी सुना कि लड़की से पूछ रहे थे कि गाना गा लेती हो, क्या क्या बना लेती हो, जैसा पिक्चर में होता है।
3: बिल्कुल भी नहीं, लड़के के बारे में सब पता करके ही उसके घर जाते हैं। और हाँ, यह जरूर है कि लड़की से पूछते हैं कि क्या क्या बना लेती हो, वो इसलिए कि लड़की का जो डर है ना वो खुल जाए और वो अपने ससुराल के लोगों से हिल मिल जाए। पर इसको गलत तरीके से पेश किया जाता है।
7: यही घर है ना आपकी बुआ जी का, लोकेशन भेजने से कितना आराम हो जाता है। बिना भटके पहुंच गए, वो देखो किरण दी का सब दरवाजे पे वेट कर रहे हैं।
8: शादी के शुभ काम शुरू होने वाला है बहनी, ढोल पूजा कराओ, तनी देवी गीत गाए दो जरा।
3: तीनों लोगों

0: सरिता का भैया पीली चिट्ठी लाए वाले हैं, यकरे बात तो सब शुभ काम शुरू हो जाए।
1: ये पीली चिट्ठी क्या होती है?
2: हमें पता है, हम बताते हैं। यह एक तरह का इनविटेशन है जो लड़की के घर पर लिखा जाता है, जिसमें लड़की के घर के लोगों के नाम होते हैं। उन्हें लड़की के घर में कौन कौन लोग बुला रहे हैं उनका नाम भी होता है। शादी की डेट आदि उसे पंडित भी लिखते हैं। इसके बाद ही लड़की के घर में शुभ कार्य शुरू होते हैं।
3: आज ये लड़के वालों के घर आ गया है तो कल इसे खोला जाएगा, फिर गांव वालों को इनविटेशन कार्ड बांटा जाएगा। पीली चिट्ठी करीब 21 दिन पहले आती है, पर आजकल शादी जल्दी जल्दी की जाती है, इतने दिन नहीं लगाए जाते हैं।
4: किरण दी, शगुन के गीत गाकर शादी की शुरुआत कीजिए, कल इस लिफाफे को खोल कर देखेंगे।

0: उठो भाई उठो सब लोग, देखो येलो लिफाफे में क्या है। इसे देखने की मुझे इतनी जल्दी थी कि पूरी रात नींद ही नहीं आई। जल्दी देखिए भाई, जल्दी खोलिए।
1: दीदी चिट्ठी पूजा घर में है, देखो इसमें सुपारी है, धूप घास है, पीला चावल है, पैसा है और मौली से बांधा भी है।
2: बुआ जी बता रही थी कि यहाँ गांव में लड़की की शादी का इनविटेशन देना होता है तो हल्दी दी जाती है और लड़के का हो तो सुपारी, दोनों ही बहुत शुभ होते हैं।
3: एक चीज देखा तुम लोगों ने, लड़की के भाइयों का भी बुआ ने टीका किया और मिठाई और फल भी भिजवाए।
4: सही कहा, उन लोगों का आदर किया गया या उनको बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैं जा रहा हूँ गाँव में सुपारी बांटने, लोगों को निमंत्रण देने। आप लोग तिलक की तैयारी कीजिए, आज शाम को ही तिलक है। जिमी तुम चलोगी निमंत्रण बांटने के लिए?
0: मेरा मन तो गांव घूमने का बहुत है, पर चले गए तो तिलक की तैयारी कैसे देखेंगे। आप जाइए हरिओम भैया, हम रुकेंगे।
1: जिमी तिलक पर डीजे नहीं लगेगा, ढोलक वाला तिलक है। किरण दी बताइए तिलक कैसे होगा?
2: शाम को हम सब सीधे पहले ही साड़ी पहनेंगे, हम सब के लिए नथ भी लाए हैं।
3: ये तो बहुत अच्छी बात है श्वेता समता, गांव में तिलक बहुत इम्पोर्टेंट सेरेमनी होती है। पूरी गांव का खाना आज ही होगा, रिसेप्शन नहीं होता यहाँ।
0: देखो देखो जो दो चौकी सजी है उसमें तिलक का जो सामान आएगा उसे सजाया जाएगा और पूरा गांव देखेगा।
4: अरे तुम सब अभी बातों में ही बिजी हो, देखो मैं धोती कुर्ता पहनकर तैयार भी हो गया।
3: बस 10 मिनट में हम सब मिलते हैं, आज तो खूब गाने गाते हैं।

0: कितने लोगों ने खाना खाया, कम पैसों में भी कोई फंक्शन इतना अच्छा हो सकता है, यह तो हम सोच ही नहीं सकते हैं।
1: शादी और हल्दी कल है, तो फिर आज क्या है, आज क्या करेंगे हम लोग?
2: आज मामा भात है, आज बुआ जी के मायके से सब लोग आएंगे, और यह हम लोग में भी होता है, पर हाँ इसमें शो ऑफ बहुत होता है कि हमारे भाई ने तो ये सब कुछ दिया है।
3: हाँ, यह नहीं देखा जाता कि भाई पर कितना प्रेशर डाल रहे हैं हम लोग। ढोल की आवाज आने लगी, लगता है सब लोग आ गए हैं।
0: कितनी प्यारी बुआ लग रही है, अरे यह कितनी सुंदर चुनरी बुआ जी को भाभी ने उड़ाई है।
2: ये दोनों मामी ने अपने हाथों से बनाई है, इसे बुआ जी जिंदगी भर संभाल कर रखेंगी।
3: अब बुआ जी के घर के हर किसी का टीका करके किसी को कपड़े किसी को पैसे देंगे और हर किसी का सम्मान करेंगे। बुआ बहुत इमोशनल हो रही हैं।
4: हाँ, उनको लग रहा होगा कि हमारा परिवार हमारे साथ है। चलिए हम तो जा रहे दोस्तों के साथ गप्पे मारने, और कल तो वैसे ही शादी में धूम रहेगी।
0: जिमी रुक जाओ, आज ही इतना नाचोगी तो कल बारात में नहीं नाच पाओगी।
2: मैं तो चली मेहंदी लगवाने, यहाँ पेड़ से मेहंदी तोड़कर पीसी जाती है, फिर भी कितनी शानदार मेहंदी लग रही है सबको यहाँ।
3: उठो कुंभकर्णो, हल्दी की रस्म शुरू हो गई है।

0: किराने हम उठ चुके हैं। कितनी सुबह से यह गांव की लेडीज आ गई हैं, हाथों से हल्दी पीसी। शहर में सब तो हर्बल मेहंदी लगा लेते हैं, पर यहाँ सबने गाना गाया, हल्दी पीसी और कितना अपनापन देखने को मिल रहा है।
1: सच कहा समता दी आपने, उन दादी लोगों को देखा कितनी बूढ़ी हैं, पर सुबह से लेकर रात तक बैठी रहती हैं और एक एक करके सारी रस्में बताती रहती हैं।
2: यही तो खुशबू है गांव की, शादी एक घर में है और काम सारे मिलकर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरे गांव में शादी है।
0: शहरों में तो कोई अपने घर से भी नहीं करता शादी, पता ही नहीं चलता कि इस कॉलोनी में शादी है।
3: सब लोग तैयार हो जाओ, 4 बजने को है यार, बारात निकल जाएगी और जनवासे पहुंचने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। बारात चलने से पहले बहुत सारी रस्में होंगी और वो तो आप सब देखेंगे ही।

0: जीजा जी ने दूल्हे को साफा बांधा, भाभी ने काजल लगाया, बहनों ने घोड़ी को चने गुड़ और माँ ने नजर भी उतारी।
1: एक चीज नोटिस की आप सभी लोगों ने, सबको नेक दिया गया बराबर से, चाहे वो सगी बहन है या गांव की है। ये है अपनापन जो हम सभी शहर में कहीं ना कहीं खो रहे हैं।
2: बुआ जी बारात में नहीं चल रही हैं और उनके साथ कुछ और लेडीज भी रुक रही हैं।
3: हाँ, माँ चाची मासी यह सब रुकती हैं घर पर और रात भर रत जगा होगा, सब लोग गाने गाएंगे और फिर बहू के आने का इंतजार करेंगे और तैयारी करेंगे।
4: हम जनवा से पहुँच गए हैं, यहाँ शरबत पियो, मिठाई खाओ और ये सब तो घर के बने होते हैं। बस आधे घंटे में बारात चल देगी और ध्यान रखना रास्ते भर में बारात के आगे पटाखे जरूर जलाए जाएं।
0: बारात में घंटों नहीं नाचा जाता है, बस थोड़ी देर और बारात टाइम से पहुंच जाती।
1: एजुकेशन कम है और सब कुछ नियम से, ना कोई लड़ाई, ना कोई किसी को परेशान कर रहा है और ना ही कोई किसी की शिकायत कर रहा है और ना ही एक दूसरे में यह कमी निकाली जा रही है।
3: यही खूबसूरती है गांव की, हर किसी को पता है कि क्या काम करना है। शहर में तो हर सुविधा का ध्यान रखा जाता है पर फिर भी कितनी सारी कमियां निकाल ही दी जाती हैं।
2: कितनी बातें करते हैं आप लोग, दौड़ चाल खत्म हो गया। और आप लोग ने देखा, जब बारात आ रही थी तब लड़की छिप के दूल्हे को देख रही थी, कितनी रस्में जानी हम लोगों ने।
4: जयमाल होने जा रहा है, पहले वो देख लेते हैं, फिर एक बात बताइएगा कि कुछ दूल्हे के हाथ में बांधा गया था, फिर दूल्हे को उसके बाद घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया गया, ऐसा क्यों?

0: दूल्हे दुल्हन दोनों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उन दोनों को उपटन लगने लगते हैं, जिससे उसकी स्किन में निखार आती है और बाहर निकलने से सनबर्न हो जाता है।
1: हर रस्म का एक साइंटिफिक रीजन होता है, पर हम दकियानूसी बातें कहते रहते हैं।
2: जयमाल के बाद स्टेज पर नहीं बिठाते हैं बहू को, और बेटे को देखो, बहू को वापस ले जा रहे हैं। अब रात भर शादी चलेगी, फिर फेरे होंगे और लगभग हर घर के लोग बेटी का पैर पूजा करेंगे। इसको पांव पूजना भी कहते हैं।
3: कुछ जगह तो अब शादियों में स्टेज भी बनने लगे हैं, पर अभी भी कई जगह ऐसा नहीं होता है। माना जाता है कि नए जोड़े पर कई नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं, तो साथ में तब तक नहीं बैठने देते जब तक शादी नहीं हो जाती।
4: रिस्पेक्ट के कारण भी लड़के लड़की आजकल बड़े बूढ़ों के सामने नहीं बैठते हैं। अच्छा किरण दी, मैं जा रहा हूँ, आप लोग शादी को एंजॉय करिए, ठीक है? मैं बहुत सारी यादों को लेकर वापस जा रहा हूँ। दोस्तों, माना कि एसी में सोने के लिए नहीं मिला, ढेर सारी चीजें खाने को भी नहीं मिली, पर आंगन में चारपाई पर सोने के बाद एक भी मच्छर ने नहीं काटा। और सबसे बात करते करते कब आंखें लग जाती थी पता ही नहीं चलता था। शादी पूरी कचौरी आपने इतना प्यार से खिलाया कि छप्पन भोग के खाने के स्वाद से भी ज्यादा बेहतर उसका स्वाद हमें लगा।
0: अपने गाँव अपनी मिट्टी को मत छोड़िए, आज भी वह अपनापन आपका इंतजार कर रहा है, एक बार वापस आकर तो देखिए।
5: हरिओम भैया, दूल्हे को मंडप में बिठा कर जाइए, आगे की बातें हम सब आके बताएंगे।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। नमस्कार आदाब, स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो जॉक की उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ लेकर के आपके वेंसडे का सबसे खूबसूरत प्रोग्राम, जिसमें हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, यानी कि आपकी स्वास्थ्य की संगिनी। सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आए हम रेडियो ज्ञान असली और स्मार्ट एनजीओ के खूबसूरत पहल। आज हम बात करेंगे आपके इसी स्वास्थ्य की कड़ी में एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM की है गोंडा शहर की धड़कन।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: दोस्तों, सुबह की शुरुआत अगर एक कप कड़क मीठी चाय के साथ ना हो तो लगता है ना कि दिन नहीं शुरू हुआ है, दिन बना ही नहीं है, कुछ खाली खाली सा है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी इसी मिठास के पीछे कभी कभी एक खामोश बीमारी छिपकर बैठी होती है, जिसे हम आम भाषा में डायबिटीज या शुगर कहते हैं। शुगर क्यों होती है, किस लिए होती है, ये विन आपको मैं कुछ आज ऐसे भी किस्से सुनाने वाली हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि वो लोग जो मीठा खाते ही नहीं हैं, जिन्होंने कभी मीठा लिया नहीं है, जो चीनी से दूरी बनाकर रखते हैं, उन्हें भी अगर डायबिटीज हो गई है तो क्या कारण है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने तो कभी मीठा खाया ही नहीं है, हम तो इतना मिठाई कभी खाते ही नहीं है, घर में चीनी भी बहुत कम इस्तेमाल होती है, चाय भी हम फीकी पी रहे हैं, इसके बाद भी हमें डायबिटीज हो गई, तो इसके पीछे का कारण क्या होता है और डायबिटीज होने पर हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या हर किसी को टाइप 2 डायबिटीज ही होता है, और अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो क्या है। क्योंकि भैया भारत जो है वो धीरे धीरे शुगर कैपिटल बनता जा रहा है, यानी कि डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है। आजकल आप देख रहे होंगे हर दूसरे घर में कोई ना कोई इस बीमारी से जरूर जूझ रहा है, कोई ना कोई जरूर आके कहता है कि नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, चाय बना रहे हो तो मेरे लिए चीनी मत डालना, नहीं तो मेरा शुगर हाई हो जाएगा, मेरा शुगर बढ़ जाएगा। ब्लड में शुगर ऐसे क्यों बढ़ जाता है, क्या चाय पीना सबसे बड़ा गुनाह है या फिर मिठाई खाना सबसे बड़ा पाप है, क्या है, क्यों है डायबिटीज, क्यों होती जा रही है और आजकल बच्चों के अंदर भी डायबिटीज देखने को मिल रही है, तो ये कैसे होती है, कहां से शुरू होती है, ये सारी बातें करेंगे, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाली हूं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी एक समस्या है, यानी कि ये कोई बीमारी नहीं है जो आपकी जान ले सकती है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी जरूर है जो धीरे धीरे स्लो पॉइजन का काम जरूर कर, ये झटके से आपकी जान नहीं लेती है बट आपको धीरे धीरे धीरे धीरे परेशान बहुत ज्यादा करती है। आपको कई बार डाइजेशन का इशू होता है, लिवर का इशू होना शुरू हो जाता है, इवन आंखों पर भी इसका असर पड़ता है, आपकी किडनी पे भी असर पड़ता है। तो जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि आज बात करेंगे उसी खतरे की, उसी बीमारी की जो आपको पता भी नहीं है, इवन कई लोगों को पता भी नहीं है कि उनका ब्लड शुगर कब बढ़ जाता है। बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए स्वास्थ्य संगनी, मिलते हैं छोटे से इस ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में जरूर लगाइए। स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी होस्ट इन दोस्त, आपके अपनी रेडियो चौकी उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और मैं आपको बता दूं कि ये रेडियो क्या असली और स्मार्ट एनजीओ की बहुत ही खूबसूरत पहल है, जिसके तहत आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज की। अक्सर हम सोचते हैं ना कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बहुत मीठा खा सकता हूँ, मैं तो कभी मोटा भी नहीं होता हूँ। इतनी सारी अनहेल्दी चीजें हम खा लेते हैं, जंक फूड हम खा लेते हैं, इसके बाद भी हमारा मोटापा नहीं बढ़ता। और ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे फ्लेक्स करते हुए। इवन अगर आप इंस्टाग्राम पर भी किसी को देखते हैं और वो जिनका वेट नहीं बढ़ता, वो आकर के बताते हैं कि आपको पता है, आपको मुझसे ना एक बात में जेलस होना चाहिए। जेलस ही किस बात कि मेरा कभी वजन नहीं बढ़ता, मेरा वजन हमेशा कम रहता है। मैं कुछ भी खा लूं, मैं कितना ही मीठा क्यों ना खा लूं, मैं कितना ही बाहर का क्यों ना खा लूं, पर मेरा कभी वजन नहीं बढ़ता। हाँ, हो सकता है ये आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपके शरीर को कमजोर भी करता जा रहा है। कैसे? एंड इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि भारत में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं और वो उसके साथ जी रहे हैं, और इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि उन्हें कब शुगर हो चुकी है। डायबिटीज रातों रात होने वाली बीमारी नहीं है, ये एक बहुत लंबे समय से आपकी लाइफस्टाइल, आपकी गलत आदतें, आपका गलत खानपान, इस पर डिपेंड करता है। डायबिटीज को आमतौर पर शुगर, मधुमेह के नाम से जाना जाता है। डायबिटीज लंबे समय तक चलने वाली एक मेटाबॉलिक कंडीशन है। ये ब्लड शुगर में ग्लूकोज के बढ़ते हुए लेवल से पहचाना जाता है। ये सिचुएशन तब आती है जब बॉडी पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन करने में नाकाम रहती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन आपका पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय करता है। इंसुलिन शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और कोशिकाओं को इंसुलिन शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है और कोशिकाओं की मदद से ग्लूकोज को एनर्जी में परिवर्तन करता है एंड कोशिकाओं की मदद से ग्लूकोज को एनर्जी में परिवर्तित करता है। जब ये प्रक्रिया ठीक तरह से काम नहीं करती है तो ग्लूकोज खून में जमा होने लग जाता है और बॉडी में कई तरह की परेशानियां पैदा होने लग। चलिए अब बात कर लेते हैं कि डायबिटीज कितने प्रकार की होते हैं। तो सबसे पहले आता है टाइप 1 डायबिटीज। सबसे पहले कॉमन टाइप का ये डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज ऑटोइम्यून डायबिटीज कहलाती है। शरीर का इम्यून सिस्टम जाने अनजाने पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देता है, जिसके कारण बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है और इसी के कारण शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। जब शुगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, वो सेल के अंदर एनर्जी के रूप में नहीं जा पाता है। सेल उस शुगर का इस्तेमाल नहीं कर पाती जो आपके शरीर में घूम रही है। फिर वही शुगर आपके ब्लड स्ट्रीम में यानी आपके खून में दौड़ना शुरू कर देता है और आपका इंसुलिन बढ़ा हुआ नजर आता है। जी हाँ, आप जो भी चीजें खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, ये सब ग्लूकोज के फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है और यही ग्लूकोज आपका सेल यानी कि आपके बॉडी के सेल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन्हें एनर्जी के लिए। जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिलता है तो आपको थकान महसूस होती है, आपका शरीर धीरे धीरे अपना वजन कम करने लग जाता है और आपका यही ग्लूकोज ब्लड में घूमता है और इसी से पता चलता है कि इंसुलिन ना बन पाने के कारण और ब्लड में शुगर यानी कि ग्लूकोज घूमने के कारण ही आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जो भारत में बहुत आम है वो है टाइप 2 डायबिटीज। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते होने वाली एक कंडीशन है। इसमें बॉडी में इंसुलिन तो पैदा होता है पर बॉडी उसे यूज नहीं कर पाती, कोशिकाएं इंसुलिन के सामने सही से रिस्पॉन्ड नहीं करती है। पैनक्रियाज, इससे शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, इसके कारण मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी में कमी और गलत लाइफस्टाइल होता है। जी आपने देखा होगा कई लोग खाना तो टाइम से खाते हैं और बहुत अच्छा भी खाते हैं, पर उनके लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें गलत होती है, जैसे कि एक जगह पर बैठे रहना। सुबह से लेकर शाम तक वो एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। वो 2000 कदम भी दिन का नहीं चल रहे हैं। जब वो 2000 कदम भी नहीं चल रहे तो कैलोरीज उनकी बर्न नहीं होती, जिसके कारण भी टाइप 2 डायबिटीज भारत में बहुत तेजी से देखी जा रही है। टाइप 2 डायबिटीज में मोटापा भी आता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। आपका बढ़ता हुआ पेट हो सकता है डायबिटीज यानी कि टाइप 2 डायबिटीज की निशानी हो। तो अगर आपका पेट बहुत तेजी से निकल रहा है और या फिर आपकी आदतें थोड़ी खराब हैं, यानी कि आप सुबह से लेकर शाम तक बस एक कुर्सी पे बैठे रहते हैं या बेड पे लेटे रहते हैं, तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं।
इसके अलावा अगर आपकी लाइफस्टाइल गलत है, आप खाना बहुत गलत खाते हैं, आप बाहर की चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, स्पेशली जंक फूड, ऑयली खाना, मसालेदार खाना, अगर आप बाहर के चाट पकौड़े, टिक्की, समोसे, बर्गर, पिज्जा, इन सब में ही ज्यादातर अपना वक्त गुजारते हैं, इसको ही खाते रहते हैं, तो जी हाँ, आपको भी टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा मीठा ही खाएं, तभी आपको डायबिटीज होगी। हालांकि हमारे भारत में ऐसा ही होता है, जब भी कोई बच्चा मीठा खाता है तो उसे सबसे पहले रोका जाता है कि नहीं नहीं मीठा नहीं खाना, मीठा खाने से डायबिटीज होती है। बट सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज होती है, ये जानकारी सही नहीं है। जी हाँ, मीठा खाने से अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो डायबिटीज हो सकती है, बट सिर्फ मीठा खाने से ही होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं। इसके अलावा आपकी गलत लाइफस्टाइल, आपका गलत खान पान, जिसमें आप बाहर की चीजें बहुत खाते, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खाते, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ऐसी चीजें ले रहे हैं जो जंक फूड में आती है, जो फास्ट फूड में आती है, और उसे एक लंबे समय से ले रहे हैं, यानी कि आप सुबह शाम 2-3 बार यही खाते हैं, फल और सब्जियों का सेवन कम करते हैं, तो आपको भी ये डायबिटीज हो सकती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर हार्मोनल चेंजेस बहुत तेजी से होते हैं, इसके चलते शरीर इंसुलिन की प्रति कम रिएक्ट इसके चलते इंसुलिन शरीर के प्रति कम रिएक्ट करता है। आमतौर पर ये सिचुएशन डिलीवरी यानी बच्चे के जन्म के बाद सही हो जाती है, लेकिन इसके चलते आगे जाकर आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो महिलाओं के अंदर अगर प्रेगनेंसी के बाद अगर आपको डायबिटीज का लक्षण दिखा है या डायबिटीज हुई है, तो इसके पीछे का कारण आपके हार्मोनल चेंजेस ही हैं जो आफ्टर प्रेगनेंसी हुए हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारे हार्मोन्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं प्लस उतरते भी हैं, यानी कि बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं प्लस नीचे भी आते हैं, और इन चेंजेस की वजह से एक फीमेल बॉडी के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन का होना, यानी कि वो डिप्रेशन जो प्रेगनेंसी के बाद होता है, जिसमें महिलाएं असहज महसूस करती हैं, उन्हें लगता है कि अब उनका शरीर पहले जैसा नहीं रह गया है, बच्चे के बार बार रोने से वो चिढ़ जाती हैं, पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले पाती हैं, या फिर उनके हार्मोन्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं, और इसकी वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज हो सकते हैं। तो ये वो सारे कारण हैं जो प्रेगनेंसी के बाद आपको देख सकते हैं। तो भाई, अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उनका ख्याल रखें, सबसे ज्यादा ख्याल उनका तब रखें जब उन्होंने बच्चे को इस दुनिया में जन्म दे दिया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ मेन चीजें क्या होती हैं, हम बच्चे की माँ का ख्याल तब तक तो रखते हैं जब तक वो गर्भवती होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, हमारा सारा ध्यान बच्चे की तरफ जाता है, ना कि माँ की तरफ। तो कोशिश करें कि बच्चे के साथ साथ माँ का उतना ही ख्याल रखें, क्योंकि उनका ख्याल रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो इस वक्त बहुत नाजुक पलों से गुजर रही होती है, आपका साथ उन्हें इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं कि डायबिटीज होने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात आती है फैमिली हिस्ट्री। जी हम आपको बता दें कि आपके अगर पूरे खानदान में यानी कि फैमिली में किसी को डायबिटीज रह चुका है, अब आपकी नानी को डायबिटीज हो सकता है, तो हो सकता है कि आपकी मम्मी को भी हो। अगर आपकी मम्मी को है तो हो सकता है कि आपको भी हो। अगर आपको भी डायबिटीज हो गई है तो आने वाली जनरेशन को भी डायबिटीज हो, इसका खतरा भी बढ़ जाता है। यानी कि ये एक ऐसा पेड़ है जिसकी शाखाएं जहाँ जहाँ जाती हैं, वहाँ वहाँ ये अपने साथ इस बीमारी को लेकर जाती हैं। अगर आपके घर में किसी को पहले से डायबिटीज है, तो अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में आप जरूर पता रखें और अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखें। अगर पहले से ही आपके घर में यानी कि जेनेटिक्स तौर पे लोगों को डायबिटीज होती जा रही है, शुगर बढ़ता जा रहा है, तो आप चाहते हैं कि आपके आगे आने वाली जनरेशन को ना हो, आपको ना हो, तो आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। आपको जंक फूड से दूरी बनानी पड़ेगी, सही मात्रा में सही चीजों का सेवन करना पड़ेगा, जिसमें फल और सब्जियां आती हैं, जिसमें वो सारी चीजें आती हैं जो मदर नेचर की तरफ से आती हैं, जिसमें दूध, दही, अंडा, चिकन, सब्जियां, फल, बीन्स, दालें, ये सारी चीजें शामिल करें, ना कि चिप्स, कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें आप इनको शामिल ना करें, पिज्जा बर्गर शामिल ना करें। हाँ, इसे आप कभी कभी एज अ पार्टी के तौर पे ले सकते हैं, बट इन्हें रोज रोज ना खाएं। इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सही रखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, सही खान पान है, टाइम से आप सो जाते हैं, आप अपना ख्याल रखते हैं, अपनों का ख्याल रखते हैं, तो आगे आने वाले टाइम पर और आपको डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं उम्र की। 35 साल की उम्र के बाद डायबिटीज टाइप 2 का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, हो सकता है कि आपको अभी डायबिटीज ना हो, लेकिन एक 35 साल की उम्र के बाद इसका खतरा बढ़ने लग जाता है, क्योंकि 35 साल की उम्र के बाद आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजों में बदलाव आता है, स्पेशली महिलाओं को तो
कहा भी जाता है कि 30 साल की उम्र के बाद आप कैल्शियम की टैबलेट लेना शुरू कर दीजिए, आप सप्लीमेंट्स ले लीजिए। एक उम्र के बाद आपको सही मात्रा में प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो प्रोटीन आजकल के बच्चे ले रहे हैं वो तो जरूरी है ही है, क्योंकि आपका शरीर पूरा प्रोटीन से बना है। लेकिन इसके अलावा जिनकी एक उम्र हो चुकी है उनको भी प्रोटीन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी उम्र 60 हो गई है, 40 हो गई है, तो आपको अपने प्रोटीन पर, अपने विटामिन्स पर, अपने मिनरल्स पर और भी ज्यादा गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर अब वैसे काम नहीं करता जैसे जब आप वयस्क थे, यानी कि जब आप 20 या 25 साल के थे तो कर रहा था। तो भाई उम्र इसमें बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है तो आपको इसका खतरा बढ़ सकता है। तो ध्यान रखें कि 35 साल की उम्र के बाद आप अपनी आदतों को, अपने खान पान को और भी मद्देनजर रखते हुए इन चीजों को देखें। इसके अलावा मोटापा, अगर शरीर में बहुत तेजी से मोटापा बढ़ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा फैट आपकी बॉडी में, बहुत ज्यादा चर्बी आपकी बॉडी में जमा हो रही है, खास तौर पर आपके पेट के आसपास, तो ये चर्बी आपको डायबिटीज का एक बड़ा रिस्क दे सकती है। जी हाँ, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा फैट जमा हो रहा है तो ये फैट सेल्स आपके ग्लूकोज को, आपके शुगर को आपके ब्लड स्ट्रीम में ही भेजते हैं, सेल्स के अंदर नहीं भेजते हैं। और इसी वजह से जब फैट सेल्स में होता है और ग्लूकोज जिसको सेल्स के अंदर जाना चाहिए फॉर एनर्जी वो नहीं पहुंच पाता है, तब यही ग्लूकोज, यही शुगर आपके ब्लड में घूमती है और इसकी वजह से खाना खाने के बाद अक्सर आपका ब्लड शुगर हाई दिखता है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी, अगर आपकी उम्र अभी 16 या 17 के ऊपर हो चुकी है और आपने फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर दी है, या फिर कहें तो आजकल के बच्चे जो बड़े हो रहे हैं बट खेलते कूदते नहीं हैं, पूरा दिन घर के अंदर रहते हैं प्लस अपने मोबाइल में ही लगे रहते हैं, तो इन्हीं बच्चों को आज कल डायबिटीज का खतरा बहुत तेजी से बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा गलत डाइट, आपकी गलत डाइट बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, अनहेल्दी फैट को अपने डाइट में शामिल करते हैं, आप बात करेंगे अनहेल्दी फैट और गुड फैट में फर्क क्या है। तो भाई अनहेल्दी फैट वो होता है जो आपको इन तली भुनी चीजों से आता है। अगर आप टिक्की बहुत खाते हैं, समोसे बहुत खाते हैं, पकौड़ियां बहुत पसंद करते हैं, जो कि स्पेशली आजकल जो बारिश का मौसम चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली चीजों में से एक है कि भैया चाय पकौड़ी तो बनती है, ब्रेड पकौड़ा तो बनता है, तो जी हाँ ये वही है जो आपको एक अनहेल्दी फैट देता है, ये आपको डिस्टर्ब करता है। और हेल्दी फैट जो आपको घी में मिलता है, जो आपको एवोकाडो जैसे फलों में मिलता है, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। हेल्दी फैट्स आपके हार्मोन्स को ठीक तरह से काम करने में मदद करते हैं, वही अनहेल्दी फैट आपको डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर पिछली प्रेगनेंसी की बात करें, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाती है उनको भी आगे जाकर डायबिटीज टाइप 2 का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आपको डॉक्टर ने कभी बताया है प्रेगनेंसी के दौरान कि आपके डायबिटीज का स्तर यानी कि शुगर लेवल का स्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, तो आप अपनी सेहत का और भी ख्याल रखें क्योंकि ये आगे जाकर हो सकता है। तो अगर कारणों की बात हमने की तो फैमिली हिस्ट्री, उम्र, मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, आपकी गलत डाइट और आपकी प्रेगनेंसी, ये सारे वो कारण हो सकते हैं जिनसे डायबिटीज होती है। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए स्वास्थ्य संगिनी अपनी रेडियो चौकी नदी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत है आप सभी का आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। सेहत सही लाभ के बैनर के तले लेकर आए स्मार्ट एनजीओ रेडियो ज्ञान असली की खूबसूरत पहल के तहत मैं हूं आपकी अपनी आरजी उन्नति, यानी कि आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी स्वास्थ्य की संगिनी उन्नति। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM की कोंडा शहर की धड़कन। और अब बात करेंगे डायबिटीज में आने वाले लक्षणों की, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको डायबिटीज है या नहीं। तो सबसे पहले लक्षण कौन सा होता है? अगर आप बार बार वॉशरूम जाते हैं यूरिनेट करने के लिए, यानी कि आपको बार बार पेशाब लगती है, तो ये पहला सिम्टम होता है कि हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज बन रही हो, यानी इसका खतरा बढ़ रहा हो। इसके अलावा बहुत ज्यादा प्यास लगना, अब ये तो लाजिम है भैया, अगर आप बार बार वॉशरूम जा रहे हो, बार बार आपको पेशाब आ रही है, टॉयलेट आ रही है, तो ऑफ कोर्स आपको बार बार प्यास भी तो लगेगी, और बार बार प्यास लगेगी तो आप बार बार पानी भी पियेंगे, फिर बार बार वहाँ जाएंगे, तो ये दूसरा लक्षण होता है। तीसरा होता है ज्यादा भूख लगना, आपको बहुत ज्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है, आपको बस दिल करता है कि जो मिले खाते जाएं, खाते जाएं। अगर अचानक से आपको ये तीन लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो जी थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये आपको डायबिटीज के ही सिम्टम बता रहा है। वजन का बहुत तेजी से कम होना, अगर आपका वजन बिना किसी कारण, बिना किसी एक्सरसाइज किए, बिना कुछ किए, आपका वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है या घट रहा है, तो भैया ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी बीमारी के लिए। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी पनप रही है, फिर चाहे वो डायबिटीज हो या फिर कोई और बीमारी, सबसे पहले जो एक लक्षण दिखता है वो होता है वजन का कम होना। और यहाँ पर आपको सतर्क होना चाहिए, आपको अपने बॉडी के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए अटेंशन देना चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाने चाहिए, उनकी परामर्श लेना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए कि अचानक मेरा वजन क्यों कम हो रहा है। ना हम जिम कर रहे हैं, ना हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा रूटीन वही है, हम एक चेयर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे पूरा दिन फोन चला रहे हैं, दिन भर खाते भी जा रहे हैं, इसके अलावा मेरा वजन कम क्यों हो रहा है? तो डॉक्टर आपको टेस्ट करवाने के लिए बोलेंगे, जब वो टेस्ट करवाएंगे तो उसके बाद ही आपको वो रिजल्ट बताएंगे। इसके अलावा आता है विजन लॉस होना, यानी कि आपकी नजरें धुंधली होना। ये मत सोचिएगा कि हर बार नजर धुंधली इसलिए हो रही है क्योंकि आप फोन बहुत चलाते हैं या स्क्रीन बहुत देखते हैं। इसके अलावा एक और लक्षण हो सकता है, एक और कारण हो सकता है, वो ये है कि डायबिटीज वालों की आंखें कमजोर होने लग जाती हैं, उन्हें उनकी जो नजर होती है वो धुंधली होने लग जाती है, उन्हें साफ नजर आना बंद हो जाता है। अगर ये लक्षण आप में भी है तो जी हाँ, ये डायबिटीज का ही एक सिम्टम है। और अगर नहीं भी है तो भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आंखें आगे जाकर डायबिटीज में कमजोर जरूर हो जाती हैं। ये एक ऐसा लक्षण है जो डायबिटीज वालों के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा चोट लगने पर जख्म का जल्दी ठीक ना होना। जी हाँ, जिनको डायबिटीज होती है उन्हें एक हल्की सी खरोच भी लग जाए, जो एक आम इंसान को 7 से 8 दिन में भर जाने वाला जख्म होता है, इनके लिए वो 1 से 2 महीने का वक्त लेता है। अगर कोई भी जख्म आपको लगा है, कोई भी चोट आपको लगी है, वो जल्दी ठीक नहीं हो रही जैसा एक नॉर्मल इंसान के अंदर होती है, तो जी हाँ, ये आपको डायबिटीज का ही सिम्टम दे रही है। इसके अलावा इन्फेक्शन होना, अगर आपको बार बार किसी चीज से इन्फेक्शन हो रहा है, जुकाम हो रहा है, बार बार आपको बुखार आ रहा है, या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन आपको लग रहा है कि बार बार चीजें सामने आ रही है, पहले ऐसा नहीं होता था, तो ये वो लक्षण है जो बताता है कि आपको डायबिटीज हो चुकी है। हाथ पैरों में झंझराहट होना या हाथ पैरों का सुन्न होना, कई जगह पर त्वचा का रंग गहरा काला होना, स्पेशली अगर आपके गर्दन के पीछे हो रहा है, आपके अपने गालों पर हो रहा है, काला काला नजर आ रहा है, आपको अलग से झाइयां नजर आ रही हैं, अलग से काले काले धब्बे स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, आपकी गर्दन बहुत ब्लैक हो रही है, आपने सब कुछ करा के देख लिया है, इसके बाद भी नहीं निकल रही है, तो ये बताता है कि जी आपको डायबिटीज हो रही है। अब डायबिटीज की पहचान कैसे की जाती है? तो आपको डायबिटीज पहचान करने के लिए, क्योंकि पहले तो आप हमेशा से लैब में जाके टेस्ट कराते थे, लेकिन क्योंकि साइंस आगे बढ़ चुकी है, तो आप अपने घर पर बैठे बैठे भी अपना ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हैं। एक डायबिटीज टेस्ट किट आती है जो आपको इजिली किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाती है, आप उसको ले आइए और अपना फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कीजिए। फास्टिंग यानी कि खाली पेट, भूखे पेट रहकर ब्लड शुगर का स्तर मापा जाता है। अगर ब्लड शुगर का स्तर 126 mg/dL आता है या उससे ज्यादा आ रहा है, तो डायबिटीज का ये संकेत हो सकता है। इसके बाद ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इस टेस्ट के दौरान ग्लूकोज पेय पिलाने से पहले और ग्लूकोज पिलाने के बाद शरीर में ब्लड शुगर का स्तर मापा जाता है। भोजन करने के बाद ब्लड शुगर का स्तर 200 mg/dL या इससे ज्यादा आने पर डायबिटीज का संकेत होता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं ग्लाइकेडेट हीमोग्लोबिन, इस टेस्ट में
पिछले 3 महीनों में मरीज के ब्लड शुगर को चेक किया जाता है। 4.00 एंड 5.60 या उससे अधिक स्तर आने पर डायबिटीज का संकेत बताया जाता है। तो भैया आप याद रखिए कि अगर आपका खाली पेट का शुगर 126 mg/dl से ज्यादा आता है और भरे पेट का यानी कि खाना खाने के बाद 200 mg/dl से ज्यादा आता है तो ये डायबिटीज का ही सिम्टम है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भैया डायबिटीज में खाना क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले जब डायबिटीज होती है तो ऑलमोस्ट लोग हर एक चीज छोड़ के बैठ जाते हैं। चावल नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, चीनी नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको आप पूरे लाइफ टाइम चलाने वाले हैं। यानी कि अगर आप 20 साल के हैं और आपको डायबिटीज हो गई है, आप टाइप 2 डायबिटीज से डायग्नोस कर दिए गए हैं, तो जब तक आपकी अब जिंदगी है तब तक के लिए आपको इस चीज को फॉलो करना ही पड़ेगा। शुरुआती दौर में चाय छोड़ देना, चीनी छोड़ देना, चावल छोड़ देना, आलू छोड़ देना, ये आसान लगता है, बट 60-70 सालों तक लगातार इसी रूटीन को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। तो टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा क्या खाएं कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा ना बढ़े, आपके हाथ पैरों में दर्द ना हो, आपकी सेहत अच्छी रहे। ऐसा नहीं है कि आपके बॉलीवुड सेलेब्स के अंदर डायबिटिक नहीं दिखता है, उनके अंदर भी है, लेकिन वो अपना खान पान सुधारते हैं। और आपके खाने पीने, आपकी लाइफस्टाइल ही डिसाइड करती है कि आगे आने वाले उम्र में डायबिटीज आपको कितना परेशान करेगी। क्या बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है या आप इसको मैनेज कर सकते हैं? क्या आप उनमें से हैं जिनकी आंखें खराब होने वाली हैं, जिनकी किडनियों में इश्यूज होने वाले हैं, जिनके लिवर में इश्यूज होने वाले हैं, या उनमें से हैं जो अपने सही खान पान को बदल कर, आप अपनी गलत आदतों को बदल कर अपनी लाइफ को और भी इजी बना सकते हैं? जानेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के उस बात तक के लिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप रहे हैं रेडियो 89.6 FM, यह कोटा शहर की धड़कन पर। आज के भी रेडियो जॉकी मौजूद है आप सभी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। 89.6 FM पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही और लाभकारी। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। जी हां, आपने ट्यून करके रखा हुआ है अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। पिछले दो कार्यक्रमों में हमने गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी कि एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS, पोषण तथा मध्यम तथा गंभीर एनीमिया में IVFCM जैसे उपचार विकल्पों के बारे में बात की। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद माँ का क्या? क्या प्रसव के बाद कमजोरी होना हमेशा सामान्य है? क्या खून की कमी प्रसव के बाद भी बनी रह सकती है और इसका असर माँ और नवजात शिशु दोनों पर कैसे पड़ सकता है? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सेहतिया सिंह जी और हमारी टीकन भाभी। सेहतिया सिंह जी, अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद कमजोरी होना तो सामान्य बात है, क्या ये सही है?
1: देखिए आरजे, परसों के बाद शरीर को आराम और रिकवरी की जरूरत होती है, इसलिए कुछ थकान महसूस होना सामान्य हो सकता है। लेकिन अगर कमजोरी लगातार बनी रहे, चक्कर आज आए, सांस फूलने लगे, रोजमर्रा का काम मुश्किल लगे या महिला बहुत ज़्यादा थकी हुई है महसूस करे, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
0: यानी ये खून की कमी का संकेत भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, और यही कारण है कि परसों के बाद भी माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है।
0: टीकन देवी जी, क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को इस बात का महत्व समझा सके?
2: बिल्कुल, हमारे ही इलाके की शबाना की कहानी सुनिए। शबाना ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद भी शबाना को लगातार कमजोरी रहती थी। वो जल्दी थक जाती थी, बच्चे को गोद लेकर ज्यादा देर खड़ी भी नहीं रह पाती थी। घर वालों ने कहा, अभी अभी बच्चा हुआ है, थोड़ा समय तो लगेगा। लेकिन जब स्वास्थ्य कर्मी ने घर आकर हालचाल पूछा और आगे जांच की सलाह दी, तब पता चला कि उसे एनीमिया है।
0: फिर क्या हुआ?
2: उसे स्वास्थ्य केंद्र से उचित सलाह मिली, परिवार ने भी उसका सहयोग किया और धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर हुई। वो अपने बच्चे की देखभाल अधिक आराम से कर पाई।
0: यानी प्रसव के बाद भी कमजोरी को भी गंभीरता से लेना चाहिए।
2: बिल्कुल।
0: सेहतिया सिंह जी, प्रसव के बाद एनीमिया का असर केवल माँ पर पड़ता है या बच्चे पर भी?
1: माँ और बच्चे दोनों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर माँ लगातार कमजोर रहेगी तो उसकी रिकवरी प्रभावित हो सकती है।
0: और बच्चे के संदर्भ में?
1: जब माँ स्वस्थ रहती है तो वह अपनी नवजात शिशु की देखभाल बेहतर तरीके से कर पाती है, इसलिए माँ का स्वास्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: यानी स्वस्थ माँ स्वस्थ परिवार की नींव है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या प्रसव के बाद भी जाँच करवानी चाहिए?
1: हाँ, अगर स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर सलाह दें या महिला में कमजोरी और अन्य लक्षण बने रहें तो जांच करवाना जरूरी है।
0: यानी प्रसव के बाद स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क खत्म नहीं होना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं, गर्भावस्था के दौरान मिली सलाह और प्रसव के बाद की देखभाल दोनों मिलकर अच्छे स्वास्थ्य परिणाम देते हैं।
0: टीकन देवी जी, शबाना की कहानी सुनकर एक बात समझ आती है कि कई बार महिला खुद भी अपनी परेशानी को नजरअंदाज कर देती है।
2: बिल्कुल, प्रसव के बाद अक्सर महिला का पूरा ध्यान बच्चे पर चला जाता है। वो सोचती है कि पहले बच्चे की जरूरतें पूरी हो, अपनी तकलीफ बाद में देखेंगे। लेकिन यही सोच कई बार परेशानी बढ़ा देती है।
0: यानी माँ खुद को सबसे आखिर में रख देती है।
2: जी हाँ, हमारे समाज में ये बहुत आम बात है। अगर बच्चा रो रहा हो, घर का काम हो, मेहमान आ रहे हो, तो महिला अपनी कमजोरी, चक्कर या थकान के बारे में बताने से भी हिचकती है। कई बार उसे लगता है कि लोग कहेंगे कि वो शिकायत ज्यादा कर रही है।
0: लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल नहीं, बच्चे की देखभाल जितनी जरूरी है, माँ की भी देखभाल उतनी ही जरूरी है।
0: सेहतिया सिंह जी, प्रसव के बाद महिला के जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, क्या ये भी उसकी सेहत को प्रभावित कर सकता है?
1: बच्चे के जन्म के बाद महिला की दिनचर्या पूरी तरह बदल जाती है। रात में कई बार उठना पड़ता है, आराम कम हो जाता है, शरीर परसों से उभर रहा होता है और साथ ही नवजात शिशु की देखभाल की जिम्मेदारी भी होती है।
0: यानी ये समय केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
1: बिल्कुल, इसलिए इस समय परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर महिला को आराम का समय मिले, उसकी बात सुनी जाए और उसकी जरूरतों का ध्यान रखा जाए तो उसकी रिकवरी बेहतर हो सकती है।
0: टीकन देवी जी, क्या परिवार कभी अनजाने में ऐसी बातें कह देता है जिससे महिला अपनी परेशानी बताने से बचने लगती है?
2: हाँ, ऐसा अक्सर होता है। जैसे कोई कह देता है, हमारे समय में भी ऐसा होता था, थोड़ी कमजोरी तो सामान्य है, इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। सुनने में तो ये बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन इससे महिला अपनी समस्या बताना बंद कर सकती है।
0: यानी उसकी बात सुनना भी देखभाल का हिस्सा है।
2: बिल्कुल, अगर महिला बार बार कह रही है कि उसे कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं या वो पहले जैसा महसूस नहीं कर रही है, तो उसकी बात को गंभीरता से लेनी चाहिए।
0: सेहतिया सिंह जी, क्या प्रसव के बाद स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क बनाए रखना जरूरी है?
1: बिल्कुल, कई लोग सोचते हैं कि बच्चे का जन्म हो गया है, अब स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। परसों के बाद भी स्वास्थ्य कर्मी की सलाह घर पर मुलाकात और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है।
0: यानी माँ की देखभाल की कहानी प्रसव पर खत्म नहीं होती?
1: बिल्कुल नहीं, वास्तव में परसों के बाद का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना गर्भावस्था का समय है।
2: और मैं सभी परिवारों से कहना चाहूँगी कि जब घर में नया बच्चा आता है तो केवल बच्चे की खुशियाँ मत मनाइए, बल्कि उस माँ का भी पूरा ध्यान रखिए जिसने उसे जन्म दिया है। उसकी सेहत, उसका आराम, उसकी जरूरतें भी परिवार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
0: सचमुच स्वस्थ माँ ही नवजात शिशु को सबसे अच्छा सहारा दे सकती है। टीकन देवी जी, इस समय परिवार की भूमिका क्या होती है?
2: परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार पूरा ध्यान बच्चे पर चला जाता है और माँ की जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। लेकिन परिवार को याद रखना चाहिए कि माँ की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है।
0: परिवार क्या कर सकता है?
2: सबसे पहले तो माँ को पर्याप्त आराम मिलना चाहिए, इसका ध्यान रखें। दूसरा, उसे समय पर पौष्टिक भोजन मिले। तीसरा, अगर स्वास्थ्य केंद्र जाने की जरूरत हो तो परिवार उसका साथ दे। चौथा, अगर कोई दवा या पूरक खुराक दी गई हो तो उसे नियमित रूप से लेने में उसकी मदद करें। और सबसे जरूरी बात, उसकी कमजोरी या परेशानी को नजरअंदाज ना करें।
0: बहुत ही महत्वपूर्ण बात। सेहतिया सिंह जी, पिछले कार्यक्रम में हमने IFA, MMS और IVFCM के बारे में बात की थी। क्या प्रसव के बाद भी डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी है?
1: बिल्कुल, हर महिला की स्थिति अलग होती है, इसलिए आगे की देखभाल, दवाओं या पूरक खुराक के बारे में सलाह माननी चाहिए जो स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर दें।
0: यानी अपने मन से दवा बंद या शुरू नहीं करनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य केंद्र की सलाह सबसे महत्वपूर्ण है।
0: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ है कि बच्चे के जन्म के बाद माँ की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके स्वास्थ्य को पीछे छोड़ दिया जाए।
2: अगर प्रसव के बाद भी कमजोरी बनी हुई है, चक्कर आते हैं या शरीर पहले जैसा नहीं लग रहा, तो इसे सामान्य मानकर टालिए मत।
1: समय पर जांच, सही सलाह और उचित देखभाल से माँ की रिकवरी बेहतर हो सकती है, और जब माँ स्वस्थ होगी तो बच्चे की देखभाल भी बेहतर तरीके कर पाएगी।
0: चलते चलते आज के कार्यक्रम की चार महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। पहली, प्रसव के बाद भी खून की कमी बनी रह सकती है। दूसरी, लगातार कमजोरी या चक्कर को नजरअंदाज कतई ना करें। तीसरी, जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। और चौथी, माँ को पौष्टिक भोजन, आराम, परिवार का पूरा सहयोग दें।
2: माँ की सेहत पर ध्यान देना है, बच्चे के भविष्य पर ध्यान देना है,
1: और समय पर पहचान तथा उचित देखभाल माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम ला सकती है।
0: इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है सब पूछने लगते हैं, अच्छी खबर कब आएगी? लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696746406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई, वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आज समता और साथ में है
5: आरजे अंशिका।
4: हाँ जी, हम लोग आ गए हैं बिल्कुल अपने टाइम टू टाइम, क्योंकि हमारा हो गया है आपका अपना पसंदीदा शो, हमारा पसंदीदा शो, जिसका नाम है
5: सुन सहेली।
4: ठारे रखो अंशिका, ये बहुत देर से सांस भर रही थी बोलने के लिए। सुन है ना, ऐसे कर रही थी ना, कर रही थी, मतलब इनको इतनी बेताबी होती है सुन सहेली बोलने की कि मैं क्या बताऊं। एंड हम लोग अपने कमर की पेठी को हम लोगों ने कस लिया है और उसके बाद में अब जो होने वाला है आज बहुत ही अच्छा होने वाला है भाई। स्टार्टिंग तो बहुत ही अच्छी गई हमारी, क्योंकि आज जब कहते हैं ना कि कुछ अंत भला तो
5: सब भला,
4: तो सुबह से मैं बहुत परेशान थी, लेकिन अभी तक का जो एक कार्यक्रम के दौरान जब अंत भला तो सब भला बहुत ही मजा ही आ गया। तो चलिए भाई, दोपहर का टाइम है, बहुत ही प्यारी सी आज मौसम भी है, बहुत ही प्यारा सा आज क्या कहते हैं उसको, मौसम में है दस्तूर भी है, देन और क्या कह सकते हैं उसको, मूड माहौल भी है। और इसी मूड माहौल को देखते हुए आइए एक साथ एक ही फ्रेम में विश कर देते हैं
5: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स।
4: बहुत तड़पती है कि हमको कम मौका
5: मैम, मतलब जब मूड में होती है ना तो उनको सारी खिंचाई करने के लिए मैम
4: बहुत तड़पती है बहुत देर से कि कब मैम चुप करेंगी तो मैं बोलूंगी। हाँ।
5: मैम कब चुप करेंगी तो मैं बोलूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे मेरा वो मिल जाता है बोलने के लिए।
4: अगर तुम अगर अभी मैं तुम्हें बहुत अच्छी सी एक गुड न्यूज़ बताऊंगी, इसको सुन करके तुम ना कुर्सी से उछल के नाचने लगोगी।
5: अरे वाह।
4: बट वो मैं बताऊंगी आपको ऑफ माइक।
5: ओके,
4: वैसे तो दो गुड न्यूज़ है।
5: अरे वाह, ये तो और अच्छी बात,
4: एक मेरे लिए एक तुम्हारे लिए।
5: अरे फिर तो और ज्यादा अच्छी बात है,
4: चले काम पे लगो, काम पे
5: लगते हैं।
4: बोलो।
5: वैसे काम पे लगना है हमें अभी।
4: हाँ, किस काम पे? मेहंदी लेनी है, चूड़ी लेनी है, लहंगा लेना है, क्या
5: नहीं,
4: करना
5: नहीं,
4: है?
5: नहीं, वो अभी जिस काम पे हम लगना चाहते हैं उस काम के होने में समय है, इसलिए काम की तैयारी में भी समय है, और जब काम आ जाएगा तो फिर तो तैयारी तो लग के करेंगे।
4: हाँ।
5: आपने जो जो कहा उससे और भी चीजें आगे लेनी है, और भी कुछ चीजें हैं जो यूज होती हैं, उन्हें लेना पड़ता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
4: यूज होती हैं
5: बहुत सारी चीजें, एक काम है मैम जिसमें बहुत सारी चीजें यूज होती है। अब आपने मुझे दो चीजें बता दी, अब और कुछ तीन चार चीजें हैं जो मैं बता
4: मेरी मेहंदी देखो कितनी अच्छी लग रही है।
5: अरे वो तो आप
4: सावन में मेहंदी है और ये मेरे बच्चे ने लगाई है मुझे।
5: अरे
4: मतलब टेढ़ी मेढ़ी सी है कुछ ऐसा है, बट सावन चल रहा है तो मैंने सोचा चलो ठीक है लगा लेंगे, तो जैसे भी लगा।
5: वैसे भी मैम के हाथ पे मेहंदी लगी होती है ना तो बहुत प्यारे हाथ लगते हैं, सबके नहीं लगते मैम के स्पेशली, कलर भी अच्छा आया है।
4: कम टू द यार ये तो मैंने देखा नहीं, अब देखो कम टू द
5: पॉइंट
4: कहने वाली थी। और आज हम मेहंदी चूड़ी बिंदिया पे बात इसीलिए कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं पहले, और ये छेड़छाड़ी इसलिए भी हो रही है क्योंकि आज हमारा वेनसडे है, और वेनसडे के दिन हम अपना पूरा शो जो समर्पित करते हैं, हम अपनी महिलाओं को समर्पित करते हैं, वैसे भी समर्पित होता है बट आज के दिन ना क्या होता है कि कुछ स्पेशल होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा वाला स्पेशल होता है। और आज के दिन फिर हम लोग ना मतलब

0: टोटल पूरा का पूरा वो देख लेते हैं, है ना। तो चलिए फिर
1: एक बात और होती है,
0: क्या
1: अब आपने मेरे ऊपर कह ही दिया है कि मुझे बोलना है तो मैं बोल देती हूँ।
0: बोलो बोलो।
1: कि अगर मेहंदी का रंग बहुत अच्छा होता है ना तो हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं और मतलब बहुत लोग होते हैं जो बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारे ऐसे।
0: बहुत लोग मुझे प्यार करने वाला नहीं चाहिए।
1: नहीं नहीं, अरे आप मीन समझिए मैम। हाँ। मेरा कहने का सीन था कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हस्बैंड प्यार करते हैं, आपके और भी फ्रेंड्स, आपके चाहने वाले, आपके अपने आपको बहुत प्यार करते हैं, ये कह रही हूँ मैं। आप मूल तो समझिए।
0: मूल समझ लिए हम।
1: हाँ,
0: तुम्हारे तुम्हारे मूल का हम जो मूलांक है मैं समझ गई हूँ।
1: हाँ।
0: और एग्जैक्टली बता दूं अंशिका, जब तुमने मेहंदी की बात छेड़ी दी है, कल जब मैंने शाम को रात में जब 8-9 बजे जियाने लगाई और फिर मुझे 10 बजे रोटियां बनानी थी, अब मम्मी तो मम्मी, भाई माँ तो माँ होती है, वो चिल्लाने लगी कि तुम अब इसमें मेहंदी लगा रही हो तो रोटी कौन बनाएगा, तुमको काम से छुट्टी चाहिए होती है, अब तुम बोलोगे कि तुम रोटी बनाओ।
1: अच्छा।
0: मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैंने क्या किया, और विद इन 20 मिनट ठीक है, मैंने उठाया चाकू और अच्छे से मैंने इसको अच्छे से निकाल करके धुल दिया। ये 20 मिनट का असर है।
1: अगर ये 20 मिनट का असर,
0: ये 20 मिनट का असर है, अगर मैं इसको रात भर लगा देती हूँ ना, मतलब मैं लगाती हूँ
1: वैसे, जी जी जी,
0: एंड टच वुड, बहुत अच्छा रंग आता है। और इसके ऊपर कोई भी प्रिकॉशन नहीं होता है, नो वैसलीन, नो काला धुआं, नो कड़वा तेल, कुछ नहीं। काला धुआं मतलब लौंग का धुआं, उसको काला धुआं बोलते हैं। तो कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा सा रंग आता है। एंड उसके दो कारण है, कारण दो है उसके। अगर हम कुछ ऐसा फालतू के कारण में नहीं जाएं, साइंटिफिकली रीजन ये होता है कि जिसकी हथेली गर्म होती है उसकी मेहंदी अच्छी रचती है। समझ में आया? ऐसा कुछ नहीं है कि उसका, उसकी सास, उसका ससुर और उसके हस्बैंड उसको प्यार करते हैं, वो तो अलग है, वो अलग बात है, बट जिसकी हथेली गर्म होती है तो उसकी मेहंदी अच्छी रचती है, ये एक साइंटिफिक रीजन है। एंड जो हम अपने मन से बनाते हैं वो भी सही है भाई, मैं उसको
1: मस्ती वाले भी,
0: मैं उसको क्यों झुटकारूं कि जिसका हस्बैंड बहुत ज्यादा उसको प्यार करता है उसकी मेहंदी काली होती है।
1: ऐसा नहीं है, मतलब सच्चाई है ये कि कभी कभी हो जाता है। जैसे मैंने एक वीडियो देखा था मैम, ऐसे सावन के कहते नहीं है, सावन के सोमवार के लिए 16 सोमवार फास्ट रखो तो हस्बैंड अच्छा मिलता है। तो एक वीडियो देखा था, उसमें उसका हस्बैंड कहता है कि शादी से पहले तो तुम 16 सोमवार व्रत रहती थी, अच्छे से भोले बाबा की पूजा करती थी, सब कुछ करती थी, अब तुम फास्ट क्यों नहीं रहती हो, पूजा तो अभी भी करती हो। तो उसकी वाइफ जो होती है मुस्कुराते हुए कहती है तुम मिल गए ना, इसलिए अब व्रत रखने का मन नहीं करता।
0: ओके,
1: तो बहुत अच्छा एक ऐसे था, तो मुझे वही रिमेम्बर हुआ, तो मैंने फिर मेहंदी की बात हुई तो मैंने बता दिया कि ऐसा हम सुनते आ रहे हैं कि ऐसा होता है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा
0: जी ऐसा ही होता है। तो चलें अब हम शुरू कर देते हैं अपना आज का जो सेगमेंट होता है, हमारा पोयम का सेगमेंट होता है। उसके लिए हमें पोयम के लिए रास्ता चाहिए होता है, आपको पता ही है।
1: रास्ता, तो चलिए रास्ता आज कुछ मूड माहौल के हिसाब से आपको रास्ता दे देते हैं। हाथों में हो रंग किसी के प्यार का, हाथों में है रंग किसी के प्यार का, दिल में उन्हीं का इंतजार है, दिल में उन्हीं का इंतजार है, होठों पर प्यारा सा इकरार है, मौसम और भी ज्यादा शानदार है। तो आइए हम भी एक शानदार शुरुआत करते हैं और करते हैं अपनी अपनी बात कुछ और अल्फाजों के साथ, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारी सी कविता जो होगी बात आरजे समता के साथ।
0: ओह माय गॉड, चलो अच्छी बात है। और तब तक मैं, जब तक पोयम पढ़ती हूँ तब तक एक गाना मैं चाहती हूँ कि अंशिका देख ले। चले पोयम शुरू करें?
1: जी मैम।
0: नारी का गौरव, तुम सृष्टि का आधार हो, तुम सृष्टि का आधार हो, ममता का उपहार हो, हर घर की तुम शान हो, हर घर की तुम शान हो, जग में सबसे महान हो, कोमल सा एक एहसास हो, तुम जीवन की प्यास हो, भीतर वज्र सा साहस है, तुमसे ही सब खुशहाल है, अब अंबर को छूने निकली सारी रूढ़ियां, अब अंबर को छूने निकली सारी रूढ़ियां, तुम पीछे छोड़ चली, अपने दृढ़ संकल्प के बल पर नया इतिहास रच रही हर पल, खुद की शक्ति को पहचानो, खुद की शक्ति को पहचानो, तुम खुद में ही संसार हो, सलाम है तुम्हारी गरिमा को, सलाम है तुम्हारी गरिमा को, तुम इस जग का आधार हो, तुम इस जग का आधार हो। ये थी आज की पोयम जो कि महिलाओं को समर्पित है। और बहुत ही प्यारी सी पोयम, लेकिन अंशिका पता नहीं कहाँ चली।

0: हमेशा उन्हीं की आंखों में अपने लिए प्यार, सम्मान और अपनी जगह देखनी चाहिए जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपका सम्मान करते हैं, जो आपके साथ रहना चाहते हैं। आपकी दुनिया हमेशा सिर्फ आपके अपने होने चाहिए, जो आपसे प्यार करते हैं और आपके अपने हैं। कई बार क्या होता है ना कि कुछ भी बात होती है मैम, तो हम हमेशा ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, हम कैसे करेंगे। लेकिन आपको लोगों की नजरों में नहीं, सही अगर किसी की नजरों में होना है तो सिर्फ अपने अपनों की नजरों में होइए।
1: Exactly.
0: अगर वो आपको सही समझते हैं तो इट मींस कि आपकी पूरी दुनिया वो है कि आप बिल्कुल सही हैं। और अगर वो आपको गलत समझते हैं इट मींस कि कहीं ना कहीं आपकी गलती है। दुनिया की नजरों में नहीं, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग तो सही होते हैं तब भी कहते हैं और गलत होते हैं तब भी कहते हैं। कहते नहीं है कि कहने वाले तो कहने के लिए प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ते।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: और कहने वाले तो कहने के लिए किसी सही को भी गलत कह सकते हैं और गलत को गलत नहीं भी कहते हैं। कई बार कोई इंसान बहुत गलत होता है लेकिन जो कि दुनिया उसे सही समझती है इसलिए वो उसे गलत भी नहीं कहते। इसलिए हमेशा अपना जो पॉइंट बनाए वो अपने अपनों की नजरों में, क्योंकि दुनिया बस उतनी ही होनी चाहिए। लोग कम सही लेकिन सच्चे हों आपके पास तो इसका मतलब है कि आपने लाइफ में कुछ अर्न किया। और 200 लोगों की भीड़ हो बट एक भी आपके साथ ना खड़ा रहो तो इट मींस कि आपने अर्न नहीं किया। इसलिए हमेशा सच्चाई को पास रखें क्योंकि लाइफ में वही काम आती है।
1: बिल्कुल, एग्जैक्टली, यस।
0: देखा कितना अच्छा वाला एस आया है हमारी मैम के, क्या होता है वो, क्या कहते हैं, मैं भूल जाती हूँ, मुखार बिंदु से
1: यस आया है।
0: अभी अभी आपने कहा ना यस,
1: एग्जैक्टली यस,
0: तो वही
1: चले कहाँ चलना है,
0: जहाँ मैम ले जाएंगी वहाँ
1: चलो चले मितवा इन उच्च नीच। तो सबसे पहले
0: मैं सोच रही हूँ घूमने के लिए कोई जगह अगर शॉर्टलिस्ट करनी हो तो सबसे अच्छी जगह एक ही मेरे दिमाग में आती है,
1: लखनऊ।
0: वाह,
1: देखा, मैंने
0: इसको दिल से दिल का कनेक्शन
1: क्या कहा
0: कहते हैं।
1: कि अगर अच्छा सा आपको घूमना है, अच्छे से पैसे खर्च करने हैं, अच्छा सा कुछ ऐसा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमको एकांत में घूमना है, तो लखनऊ सबसे बेस्ट है भाई।
0: और वो भी शॉर्ट टाइम में,
1: बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत अच्छी अच्छी जगह पर है यहाँ पर। और लखनऊ अगर पूरा किसी ने अभी तक नहीं घूमा है, एग्जैक्टली मैं बता दूं कि बहुत सारी चीजें हैं लखनऊ में। मैं मतलब क्या बता दूं, खैर हम लोग लखनऊ की बात क्यों कर रहे हैं, वालों की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग,
0: लखनऊ की बात की मैंने, लखनऊ वालों की बात नहीं की मैंने।
1: चलो सुना देती
0: हूं, वो तो आपने कहा आपके मुंह से।
1: चलिए लिसनर से एक गाना सुना देते हैं वरना ये पता नहीं कहां से कहां कौन सी पोल खोल दे,
0: कौन सी दुनिया में ले जाए,
1: कौन सी दुनिया में ले जाए,
0: हो जाए मैम कहीं
1: नहीं पता है। तो चलिए फटाफट अभी हम शुरू करते हैं आज के अपने प्यारे से शो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बढ़िया से गाने को लेकर के। तो आइए बस हम यू गए, यू आई इस ब्यूटीफुल से सॉन्ग के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
6: आज समता और साथ में है
7: RJ अंशिका
6: जी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के सेकंड टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि हमारा होने वाला है बहुत ही बढ़िया वाला ब्यूटीफुल सा।
7: तो ब्यूटीफुल की हो गई है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शुरुआत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे इस बात के साथ कि भाई काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर काम नहीं करेंगे तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं।
6: हाँ,
7: और सबसे पहला साइड इफेक्ट कुछ और होता है, वो नहीं बताऊंगी फिलहाल। फिलहाल मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने की बीएड किया हुआ है और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उनके लिए क्या कुछ जॉब वैकेंसीज होती हैं और कैसे वो अपना करियर आगे लेकर के जा सकती हैं। क्योंकि उनके मन में हमेशा ये होता है कि क्या करेंगे, पढ़ाई तो पूरी हो गई है, हमने ये डिग्री भी ले ली है, लेकिन हम आगे क्या करेंगे। तो आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक जो अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है स्टूडेंट काउंसलर की। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि हर कहीं ना कहीं स्कूल्स में, नवोदय में जो भी स्कूल है, सभी में, केंद्रीय विद्यालयों में, सभी जगह एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। स्टूडेंट काउंसलर की इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपने MA साइकोलॉजी से किया है तो द बेस्ट है कि आप एक काउंसलर के रूप में उनको अच्छी से काउंसलिंग दे सकते हैं। लेकिन ये अगर आपने मान लीजिए किसी और सब्जेक्ट से भी किया हुआ है तो भी काउंसलर की जॉब में हो जाता है। ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। लखनऊ के बड़े बड़े कोचिंग्स में, बड़े बड़े एकेडमिक्स में अगर हम बात करें, या फिर लखनऊ आप छोड़ दीजिए, अगर आप थोड़ा बात कीजिए गोंडा की ही तरफ, तो वहाँ पे माता पिता को गाइड, अगर आप थोड़ा बात कीजिए गोंडा की ही तरफ, तो वहाँ पे माता पिता को गाइड करने के लिए कि वो बच्चे को कैसे पढ़ाएं, कैसे उसकी रुचि की तरफ उसे जाने दें, ये सब बताने के लिए और गाइड करने के लिए स्टूडेंट काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ती है। और धीरे धीरे इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है। आप अगर जाएंगे किसी भी कंपनी में और बताएंगे कि मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ और आपको इस पोस्ट के लिए रखा जाएगा, तो वो 6 महीने आपको उस तरीके की ट्रेनिंग देंगे जिसकी वजह से आप ये आराम से कर सकते हैं।
6: ओके।
7: तो ये लड़कियों के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए होती है क्योंकि ज़्यादातर इसमें फीमेल्स को रखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फीमेल जो होती है उनका IQ ऐसा होता है कि वो किसी को भी बहुत जल्दी कन्विंस कर लेती हैं, उनकी एक कम्युनिकेटिंग पावर होती है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे दोनों होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। दूसरी आती है बात कंटेंट राइटर की। कंटेंट राइटर की जॉब भी जल्दी ही मिल सकती है, क्योंकि देखिए अगर आपने मान लीजिए हिंदी से, हिस्ट्री से या इंग्लिश से एमए किया है, तो आपकी एक मजबूत पकड़ उन सारी सब्जेक्ट्स पर बन जाती है। और जितने भी पब्लिशिंग हाउस होते हैं या कंपनीज होती हैं, उन्हें स्टडी मटेरियल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली कंटेंट राइटर के लिए। एक अच्छा कंटेंट राइटर वही होता है जिसके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल हो, और वो मटेरियल तभी होता है जब आप पढ़ते हैं, जिन्हें पढ़ने का बहुत शौक होता है। और जो कि स्टूडेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, वो एक तरीके से पढ़ाई के वे से बिल्कुल बाहर निकले हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी इंग्लिश में, हिंदी में, हिस्ट्री में, इन सभी पे एक अच्छी पकड़ होती है, और उन्हें पढ़ने का शौक भी होता है, मतलब नई नई चीज़ें सीखना, नए नए ब्लॉग्स पढ़ना, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे कंटेंट राइटर आप बन सकते हैं।
6: ओके,
7: थर्ड ऑप्शन
6: का कौन सा कंटेंट जो कि क्रिएटर बनने जा रही है, कब बनने जा रही है?
7: मैं मुझे तो जो बनना था वो मैं बन गई।
6: क्या बनना है
7: अब मुझे? मतलब मैं तो बताऊं तो मुझे सिर्फ पढ़ने में
6: इंटरेस्ट था। हाँ कि है,
7: अभी भी है,
6: अभी
7: मतलब
6: भी है।
7: पेपर अगर मेरे घर पे आता है ना, तो वो एक दिन बाद उसमें यहाँ आपको होल मिलेगा, कोई पैसेज गायब मिलेगा।
6: अच्छा?
7: हाँ, क्योंकि मुझे पेपर कट करके रखने का बहुत शौक
6: तो
7: है।
6: यानी तुम्हारे पास बहुत सारी ऐसे न्यूज़ेस होंगी?
7: बहुत सारी न्यूज़ेस हैं, बहुत सारे पैसेजेस हैं जो मैं पहले पढ़ती थी। मेरे पास पूरी एक रफ भरी पड़ी हुई है जिसमें सिर्फ पेपर की कटिंग्स हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे नए नए ब्लॉग्स पढ़ना, नई नई चीजों को पढ़ना और उन्हें कट करके रख लेना भी पसंद है। क्योंकि मान लीजिए मैंने कोई बहुत अच्छी चीज पढ़ी और वो आप पेपर क्या करते हैं हम कि किनारे रख देते हैं, तो वो फिर इधर उधर हो जाती है। मैं कट करके अपने पास इसलिए रख लेती हूँ क्योंकि मुझे बाद में जरूरत पड़ती है। हो सकता है कोई होम टिप्स हो, कोई टिप्स कुछ भी हो, तो वो बाद में आपको जब कभी जरूरत पड़ी वो आपके काम आता है। इसलिए पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, पेपर पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत होती है।
6: पता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि जब उसमें पेपर में ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं या फिर जो मैगजीन्स होती हैं वो निकलती है ना, तो वो भी मुझे बहुत मतलब मैं भी वो सारी चीजें स्टोर करती हूँ। बहुत मुझे लगता है कि हाँ, और खास करके जब हम किसी सफर में जाते हैं लंबे सफर में, तो हाँ लगता है कि अच्छी सी सबसे अच्छा साथी एक बुक होनी चाहिए। और अब तो मोबाइल हो गई है, बट मुझे लगता है कि एक बुक होनी चाहिए जो कि हम पढ़ करके अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी नॉलेज भी गेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ में जब जिसको नींद नहीं आती है ना, उसके लिए ये बहुत अच्छा सा रामबाण होने वाला है। आप अगर रात में भी अगर मैं काफी लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर जिसको नींद नहीं आती है टाइम से, तो अगर आपने ये काम करना शुरू, दो ही पेज आपने आदत डाल लो कि अगर आपने दो पेज ही क्या कहते हैं रात में रीड करके सोएंगे ना, तो आपको इतना अच्छा वाला इफेक्ट उसमें लगेगा कि वाओ। मतलब जो लोग को लगता है कि रात में एक एक डेढ़ बजे तक नहीं सोते हैं, उन्हें अच्छी नींद आएगी, साथ ही साथ में एक आदत हो जाएगी कि आप अपनी किताब से जुड़ जाएंगे।
7: बिल्कुल। एक बात और बताती हूँ कि जिनके भी बच्चों के शब्द साफ नहीं निकलते, जैसे हम कुछ बच्चों को बोलते हैं ना कि शा शा या कोई भी शब्द,
6: स या श,
7: हाँ, या कोई भी शब्द बच्चे तुतला के बोलते हैं। किसी किसी के बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, मतलब 10 साल 12 साल के, लेकिन फिर भी वो

0: बतला के बोलते हैं, उनकी जो जबान होती है वो साफ शब्द नहीं निकलते। हाँ। तो आप उनको रोज एक पेज पेपर रीड करवाइए, धीरे धीरे ये हैबिट में हो जाएगा और कुछ दिन बाद वो शब्द साफ निकलने लगेंगे।
1: बिल्कुल,
0: ये बहुत अच्छा तरीका होता है। तो पढ़ना अच्छा है लेकिन लिखना भी अच्छा है, इसलिए जिन्हें भी लिखने का शौक है और साथ में पढ़ने का शौक है वो कंटेंट राइटर के लिए ट्राई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है, थर्ड ऑप्शन महिलाओं के लिए बहुत बेटर ऑप्शन होता है, जो कि होता है ऑफिस असिस्टेंट का। ऑफिस असिस्टेंट का मतलब है कि उसमें आपको कंप्यूटर पे काम करना होता है, जैसे डेटा एंट्री करना या फिर मैनेजमेंट देखना, फाइल बनाना, ईमेल हैंडल करना, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो जिन्हें भी कंप्यूटर इंटरेस्ट है, यानी कि जिन्होंने भी कंप्यूटर में ट्रिपल सी या कोई भी ऐसा कोर्स कर रखा हुआ है और अच्छे से उन्हें कंप्यूटर को ऑपरेट करना आता है, वो लड़कियां इसमें ज़रूर जा सकती हैं। ये कुछ ऐसे जॉब ऑप्शंस हैं जो कि बीएड भी आपने किया है तो भी, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए, बीए, बीकॉम, एमए, बीकॉम या बीएससी कुछ भी किया हुआ है इन तीनों में से, तो आपको ये वैकेंसीज मिल सकती हैं। आपको इसको बस देखते रहना है, टैली करते रहना है, कोशिश करते रहना है कि आप ही को मतलब आप इसमें कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए कंटेंट राइटर के लिए है तो आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें, अगर ऑपरेटर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो कंप्यूटर चलाना धीरे धीरे सीख लीजिए, जिससे कि अगर आप इस जॉब में जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और काउंसलर के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि हम मेंटल चीज़ों को समझें। जब तक हम किसी की मेंटल प्रॉब्लम समझेंगे नहीं, तब तक बेहतर काउंसलर नहीं बन पाएंगे। इसलिए साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, साइकोलॉजी की थ्योरीज, ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए जिनसे कि आपको हेल्प मिले। तो ये कुछ ऑप्शंस थे आपके लिए, आई होप कि आपको अच्छे लगे हों। और जो भी हमारी दोस्त हमें सुन रही हैं, हमारी फीमेल लिसनर्स, हमारी सहेलियाँ, वो इनमें कोशिश ज़रूर करें जिन्हें भी नीड है। तो आइए फिलहाल चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, और आप बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम
1: सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे
0: अंशिका।
1: आपको लग रहा होगा कि मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं सो रही हूँ, ऐसा लग रहा होगा, ऐसा प्रतीत
0: आप सो सकती हैं, ये नहीं हो सकता।
1: मैं तो लोगों को सुला सकती हूँ।
0: हाँ, ये हो सकता
1: है। मैं बहुत ही
0: सेकंड वाला ऑप्शन हो सकता
1: है। मैं बहुत ही गंभीर से सुन रही थी अंशिका की बातों को। एंड चलिए फिर हम आते हैं और अपने नए टॉपिक की ओर आएंगे, लेकिन इसको सुनने के बाद में, प्यारे से गाने को सुनने के बाद।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता और आरजे अंशिका। आपकी दोनों ही सहेलियां हाजिर हो चुकी हैं। फिर से करेंगे कुछ बात, बताएंगे, समझाएंगे, कुछ कहेंगे, कुछ सुनाएंगे। लेकिन कुछ कहने, कुछ सुनाने, कुछ समझाने से पहले
3: का वक्त नहीं है,
2: वक्त नहीं है।
3: जी हम अच्छा हंसते हैं ना,
2: बहुत प्यारा
3: वांगण ऐसे ही, ऐवें मतलब ऐवें कुछ भी
2: नहीं, ऐवें क्यों मतलब ऐवें क्यों। अच्छा ये बड़ी फीमेल्स में एक आदत होती है पता है, इधर भी जाएंगी और उधर भी जाएंगी। मतलब पहले तो आप तारीफ नहीं करते हो, मेरी तारीफ नहीं करते हो, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, और फिर मेरी तारीफ करो, अरे नहीं नहीं मुझ में ऐसा कुछ नहीं है ना।
3: चलो चैट बॉक्स में इनकी बातों को देते हैं विराम और कुछ करते हैं काम, क्योंकि धर्मेंद्र मोहन आ गए हैं हमारे चैट बॉक्स में, लिख रहे हैं किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करनी चाहिए ना ही विश्वासघात में, सबसे बड़ा पाप होता है। कभी किसी को धोखा मत देना, अगर किसी को छोड़ता हुआ तो वजह बताकर छोड़ना। ओह माय गॉड, वजह बताकर नहीं वरना उस शख्स के आंसू तुम्हें बर्बाद कर डालेंगे।
2: ओह माय गॉड,
3: यार आपने तो मेरे दिल के अरमा जो है ना वो आंसुओं में बहा दिए, क्योंकि समय का कालचक्र किसके ऊपर घूमे किसी को पता नहीं होता है। धर्मेंद्र जी हम आपकी बात से 100% नहीं 200% साथ में हैं, क्योंकि किसी के साथ मैं कहती हूँ आप किसी को दो वक्त की रोटी नहीं दो ठीक है, बट आप किसी के साथ धोखा नहीं करना, क्योंकि धोखा एक ऐसा वर्ड है ना कि जिंदगी भर वो धोखे का जो एक असर होता है ना वो जिंदगी भर मतलब आपके उस पर रहता है।
2: बिल्कुल, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कई बार चोट भर जाती है पर निशान रह जाते
3: हैं। रह जाते हैं।
2: धोखा कुछ ऐसा ही होता है कि जब कोई हमारे विश्वास को तोड़ता है तो वो टीस भले ही वक्त के साथ कम हो जाती है लेकिन वो एक दरक हमेशा रहती है। जब भी कोई आपसे बात करेगा तो आपको याद आएगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। और फिर हम इजिली किसी पे भरोसा नहीं कर पाते, जो जेन्युइन होते हैं उन पे भी नहीं कर पाते। हमें लगता है कि ऐसा तो नहीं हुआ, ये भी वही ना करे जो पिछली बार मेरे साथ हुआ। तो बिल्कुल किसी का विश्वास कभी ना तोड़ें। अगर आप संभाल के नहीं रख सकते हैं किसी के भरोसे को तो आप उसको जवाब दे दीजिए कि मुझसे इससे आगे हैंडल नहीं होगा। वो ठीक है, वो समझ में आता है कि हम सीधे साफ सुथरी तरीके से बाहर जाना चाहते हैं।
3: हाँ जी सुजीत जी थैंक यू सो मच कि आज भी लिसनर्स मेरा मॉर्निंग में वेट करते हैं। किन्हीं कारणों से मैं नहीं आ पा रही हूँ, एक्चुअली मेरा एक हेल्थ इशू हो गया था जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रही थी, बट बहुत जल्दी मैं मॉर्निंग में आऊँगी। एंड आप सभी का ये प्यार मोहब्बत जो है हमारे लिए और एक सम्मान वाला है ये हमेशा से बनाए रखिएगा, क्योंकि इंसान दौलत तो कमा सकता है यूं चुटकियों में लेकिन प्यार सम्मान ये इसको कमाने के लिए ना पूरी जैसे कहते हैं ना ता उम्र लग जाती है। तो तहे दिल से थैंक यू एवरीवन जो कि हमारे प्यारे लिसनर्स हैं, वो मुझे जानते नहीं हैं, वो सिर्फ एक आवाज़ के माध्यम से आप लोग हम लोगों से जुड़ते हैं। मतलब मैं सभी आरजेस के लिए बोल रही हूँ, आरजे अदनान के लिए, आरजे उन्नति, आरजे अंशिका, आरजे आयुषी, आरजे बीना, आरजे सिंपल एंड ऑल्सो आरजे समता। तो मुझे लगता है कि ये जो सभी आरजेस हैं ना ये बहुत एक नेक काम करते हैं, आप तक बातें पहुँचाते हैं और आपका एक माध्यम होता है आवाज़ से आप उनके बारे में सब कुछ जान जाते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि जब आप लोगों की प्यार मोहब्बत इस तरीके से हम लोगों को एक विश्वास के धागे में बांध के रखती है। और मैं अंशिका सुन सहेली में हम लोग हमेशा से बातें करते हैं ना कि कुछ भी हो जाए लेकिन सुन सहेली में वही एक सम्मान, वही एक प्यार हर एक मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक आरजे के लिए कि कभी भी फिजूल मैसेजेस आप लोगों की तरफ से हम आरजेस को नहीं आते हैं। तो थैंक यू तहे दिल से हाथ जोड़ के, थैंक यू सुजीत जी। आज मॉर्निंग में तो अच्छा, नागेश्वर जी आप तो बोलो ही नहीं, बस आप सुन के बस क्या देख, जैसे नहीं दो भाई होते हैं दो बहनें होती हैं तो एक बहन को अगर ज्यादा लाड प्यार करो तो दूसरी बहन कहती है सुनो हमने भी ये किया था। हाँ। देखा देखी है ना,
2: देखा
3: अभी तक इनका मैसेज नहीं आया था और लिख रहे हैं कि आज मॉर्निंग में तो हमें भी इंतजार था। नागेश्वर जी बहुत ही, बाकी बता दूं मैं,
2: नटखट बच्चा होता है।
3: थैंक यू सो मच नागेश्वर जी, आपने भी मेरा इंतजार किया। एंड धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं कि समता जी, अंशिका जी शुभ दोपहरिया।
2: शुभ दोपहरिया आपको भी धर्मेंद्र जी।
3: गीता जी शुभ दोपहरिया, अंशिका जी लिख रही हैं, अंशिका को भी गुड शुभ दोपहरिया।
2: शुभ दोपहरिया गीता जी,
3: एंड सनी पांडे, शुभ गुड आफ्टरनून एंड शुभ दोपहरिया।
2: शुभ दोपहरिया सनी जी।
3: और नागेश्वर जी लिख रहे हैं कि लखनऊ में ऐसा क्या है, लखनऊ में तो सब कुछ है।
2: नागेश्वर जी की तो आप बात मत करिए मैम, इन्होंने क्या लिखा है अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले कि अंशिका मैम खो गई किन के ख्यालों में।
3: अंशिका के ख्याल में केवल एक ही लोग रहते हैं, पता है कौन है?
2: कौन?
3: मैं हाँ। संता रहती है बस,
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि उसको वो खौफ वाला ख्याल है।
2: वो नहीं ऐसा
3: वो,
2: नहीं है
3: वो खौफ कह देती हाँ तो क्या हो जाता
2: नहीं।
3: मतलब ये खौफ वाला ख्याल है कि अगर हमको झपकी आ गई तो भी बगल में कौन बैठा है, मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया तो बगल में कौन बैठे, कह दो कि हाँ ये बात सही नहीं है, कह दो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो कह दो
2: हाँ है बस कुछ हाँ। होता नहीं है घर में मम्मी होती है तो अगर मम्मी कोई डिश बनाती है तो मम्मी को वो होता है मतलब बिल्कुल एक दिल से कि ये कह दें कि ये अच्छी बनी है, तो वो मैं जब खाती हूँ मगर उसमें थोड़ा
3: अभी तुमने सुना
2: कि ये कह दें कि ये अच्छी बनी है, तो वो मैं जब खाती हूँ मगर उसमें थोड़ा
3: अभी तुमने सुना ऑफ माइक सुना कि समता मैम चाकू की नोक पे काम करवाती हैं।
2: नहीं तो चाकू की नोक पे मुझसे तो काम नहीं कराया जाता भाई, मैं तो ये कह सकती हूँ
3: हाँ,
2: चाकू की नोक
3: इससे नहीं, इससे प्यार से काम होता है, ठीक है
2: ना, प्यार से कर देती हूँ, चाकू की नोक की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो किसी और के लिए है चाकू की नोक।
3: सुजीत जी लिख रहे हैं कि अंशिका जी सॉरी आपका नमस्ते, आपको नमस्ते करना मैं भूल गया था।
2: इट्स ओके सुजीत जी, आपने नमस्ते किया ना मैम को तो उसमें मेरा भी नमस्ते आ गया।
3: नागेश्वर जी लिख रहे हैं सच्ची में मैम हमने शनिवार के दिन भी पूछा था मॉर्निंग कब आओगे, हाँ नागेश्वर जी मेरी दूसरी बहन मुझे मुझे याद है कि आपने पूछा था, बट कोई नहीं मैं आपको तो पता है यार कि मैं कुछ कारणों से नहीं आ पा रही हूँ और सबसे बड़ा कारण मेरा हेल्थ इशू ही था, बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी था, और मैं अब बहुत जल्दी आऊंगी मॉर्निंग में और आप सभी का इंतजार मैं खत्म करूंगी, लेकिन एक शर्त पे नागेश्वर जी, जब अपनी आप पिक लगाएंगे ना

0: पीपी पे मैं तब आऊंगी मॉर्निंग में। जिस दिन आपने अपनी पिक लगा दी मैं उसके नेक्स्ट वीक जरूर से आऊंगी, और आपकी रियल पिक लगनी चाहिए नागेश्वर जी। अंशिका मतलब मायने रखते हैं, इतना हिडन कौन रहता है भाई, 3 साल होने को आए हैं और अभी तक आपका हम लोगों ने दीदार नहीं किया है, आपकी पिक नहीं लगी है। तो जिस दिन आप पिक लगाएंगे ना उसके दूसरे वीक पे मैं आना शुरू कर दूंगी, बिल्कुल पक्का वादा।
1: भाई ये तो आप लोग सभी लिसनर्स से मैं कहूंगी कि जो भी है वो नागेश्वर जी से अब तो कहिए कि अब तो तुम अपनी पिक लगाओ ही लगाओ।
0: अगर आप चाहते हैं सभी लिसनर्स की मैं आऊं तो मैं आपको अपनी पिक लगानी पड़ेगी, ठीक है। चलो तो फटाफट चलते हैं आज के हमारे दूसरे टॉपिक पर।
1: ओके, तो दूसरा टॉपिक ये है आज हमारा कि भाई सभी सुनते हैं साइलेंट किलर। साइलेंट किलर आप सभी ने सुना होगा, बॉडी में फिजिकल हमारे बहुत सारे साइलेंट किलर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज फीमेल्स के लिए कुछ ऐसी ही एक प्रॉब्लम पे हम बात करेंगे जो कि साइलेंट होती है लेकिन बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो कि है हार्ट प्रॉब्लम। हार्ट प्रॉब्लम पहले ये कहा जाता था कि ये ज़्यादातर पुरुषों में होती है, महिलाओं में ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि हम इग्नोर करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में ज़्यादा तभी बढ़ती है जब आप उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, इसलिए कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम धीरे धीरे ये पता लगा सकते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं है।
0: सिम्टम्स अच्छे से बताना ताकि
1: आप कंपेयर कर सकें।
0: हम कॉपी करते हैं ना तो मुझे बहुत डर सा फील होता है। ठीक है, चलो।
1: ओके, सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो ये होते हैं कि बिना कोई भारी काम किए हुए या फिर दिन भर बिना कुछ किए हुए भी आपको बहुत ज्यादा थकान लगती है।
0: नो, ऐसा नहीं है।
1: चलो, एक नहीं है,
0: पास हो गए।
1: दूसरा आता है सांस फूलने का मतलब है सीढ़ियां चढ़ रहे हैं आप, 10 मिनट भी पैदल चल ले रहे हैं अगर, तो बहुत ज्यादा तेज तेज आपकी सांसें जो हैं वो फूलना शुरू हो जाती है। ये कहीं ना कहीं एक लक्षण है कि इट मींस हो सकता है कि हमारे हार्ट में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ठीक से नहीं हो रहा है। फीमेल्स के लिए मैं एक चीज और बता दूं कि पेट में जलन होना, बहुत ज्यादा गैस बनना और हर वक्त ऐसा महसूस होना जैसे वॉमिट होने वाली है, ये अगर बहुत ज्यादा होता है, मतलब दिन में कम से कम 5 से 6 बार आप ऐसा महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको जरूरत है कि आप उस पे थोड़ा सा काम करें।
0: पास।
1: मैं सोच रही थी कि मैम
0: नेक्स्ट
1: आता है कि हमारे गर्दन में और जबड़े में या फिर पीठ के पीछे ज्यादा दर्द होना। ज्यादा दर्द का मतलब होता है जैसे कभी कभी होता है ना कि आप सो लिए हो बहुत टाइम, जैसे सुबह में हम जब उठते हैं तो हमें लगता है कि गर्दन में पेन हो रहा है, वो नॉर्मल है, लेकिन 2400 घंटे आपके गर्दन में हल्का फुल्का पेन अगर हो रहा है तो इट मीन्स है कि आपको लक्षण हो सकते हैं
0: जी।
1: एक बार आपको डॉक्टर से उसका कंफर्मेशन करना है। जबड़े में दर्द कब होता है, जैसे जबड़े में दर्द का मतलब होता है कि हमारी जो हार्ट होता है हमारा वो पूरा हमारे ब्रेन से और ब्रेन से होते हुए हमारे मुंह से सभी चीजों से कनेक्टेड होता है। जबड़े में जब आप कुछ खा रहे हैं तब भी पेन हो रहा है, 2400 घंटे पेन हो रहा है, और जिनके लार बहुत ज्यादा बनने लगती है, जैसे देखिए लार की जब हम बात करते हैं ना तो वो छोटे बच्चों को बनती है।
0: हाँ।
1: जो छोटे होते हैं, लेकिन मान लीजिए आपकी एज है, एज इन द सेंस की 25, 30, 40, 50 जितनी भी एज है आपकी, अगर लार बहुत ज्यादा मुंह में बनती है और आप सोते वक्त अगर वो गिरती है तो इसका मतलब है कि हार्ट प्रॉब्लम का एक सिम्टम वो भी होता है, बढ़ती उम्र में लार का बनना। और तीसरा आता है चक्कर आना। चक्कर अगर बहुत ज्यादा आते हैं, आपको पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, बहुत स्वेटिंग होती है, मतलब किसी किसी को आपने देखा होगा कि सर्दियों में भी स्वेटिंग होती है, तो इट मींस कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है।
0: ये तो हमारी एक दूर की दीदी है, मैंने उनको देखा है कि सर्दियों में भी वो बिल्कुल उनके फेस में पसीना रहता है।
1: और ऐसा अमूमन उन्हीं लोगों के साथ होता है, दो केस में ऐसा होता है, पहला इसका मतलब आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है और दूसरा कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है। मेंटल प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि जब हमारी न्यूरो जैसे हमारी कोई भी मेंटल कंडीशन जुड़ी होती है ना, तो इसका मतलब है कि आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है। तो दोनों ही केस में आप डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं। सबसे मेन और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला लक्षण अब मैं आपको बताती हूँ, जो कि है नींद का ना आना, रात भर जागना और बेचैनी महसूस करना। ये सबसे मेन लक्षण होता है। ये आपको अगर रेगुलर महसूस हो रहा है, जैसे किसी को 7 रातें 8 रातें रेगुलर नींद नहीं आ रही है और बेचैनी महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है हार्ट प्रॉब्लम है, आपको एक बार दिखाने की जरूरत है, प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो प्रिकॉशन लें और अपना ध्यान रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है
0: जी। और इसका निवारण,
1: निवारण हमारे पास है लेकिन बताना भी नहीं आता।
0: तो हम बैठे हैं ना निवारण के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी जो जो अंशिका ने सिम्टम्स बताए हैं, ये मजाक की बात नहीं है। और क्योंकि दिल की बीमारी का पता लगाना, कहते हैं ना कि अगर हम दिल अपनों के साथ नहीं खोलेंगे तो डॉक्टर्स उसे खोल देंगे, एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो आप बहुत हंसा करिए, खुश रहा करिए, तो डॉक्टर्स को आपका दिल खोलने की नीड नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आता है कि आपका खान पान जो है वो डाइट मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जो कि नमक और चीनी कम कर देना चाहिए 40 की उम्र के बाद। अब तो 35 की उम्र के बाद लोग कहते हैं, 40 की उम्र के बाद क्या करना चाहिए कि खाने में एक नमक की मात्रा कम कर देना चाहिए, जिससे ब्लड प्रेशर यानी बीपी कंट्रोल में रहता है। चीनी और मीठी चीज़ों से आप थोड़ी सी दूरी बनाना शुरू कर दें। सेकेंड पॉइंट आता है कि हेल्दी फैट्स लें, मतलब कि आपने जो कि रिफाइंड ऑयल जो होता है, डालडा घी का इस्तेमाल बंद कर दें। काफ़ी घरों में आज भी डालडा घी का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जगह सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल या फिर सीमित मात्रा में शुद्ध गाय के देसी घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन देसी घी का इस्तेमाल जो है ना, वो शुद्ध मात्रा में, शुद्ध और कम मात्रा में ही करिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि ज़्यादा घी भी, क्योंकि देसी घी की जो एक तासीर होती है वो थोड़ी हैवी होती है
1: जी मैम।
0: तो ऐसा नहीं है कि अब आज समता ने बताया है कि आप देसी घी खाओ तो आप तीनों टाइम देसी घी खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो देसी घी को मतलब मिनिमम कहा जाता है कि पूरे दिन में आपको केवल 2 चम्मच देसी घी पूरे दिन में बॉडी में जाना जरूरी होता है।
1: बिल्कुल।
0: उसके बाद है कि आप फाइबर युक्त मतलब आप अपना फूड लें जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, जिसमें हरे पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, ओट्स और साबुत अनाज, जिसको हम स्प्राउट्स कहते हैं, तो वो आप अनाज अपनी डेली रूटीन में डाल सकते हैं। उसके बाद है शारीरिक सक्रियता, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी आपको हमेशा से करनी है। रोज़ाना वॉक दिन में कम 30 से 40 मिनट तेज कदमों से चलें, ताकि दिल की नसों को मजबूत रखा जा सके। एंड जैसा कि मैं तो योग से जुड़ी हूँ, आपको पता ही है, तो अनुलोम विलोम ध्यान यानी मेडिटेशन और मानसिक तनाव को कम करना, जिससे कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपको ये चीज़ें ना हों। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसको बताया कि आज हमारा विमेन सेंट्रिक होता है और उसमें विमेन से जुड़ी हुई कुछ डिजीज़ के बारे में, जो कि हम लोग वाकई में जितनी महिलाएं हैं ना, बहुत लापरवाह होती हैं अपने प्रति। तो अगर ये प्रॉब्लम्स किसी किसी को है तो आप ज़रूर से अपने डॉक्टर चार से मिलें, उनको अपना चेकअप कराएं, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो, अदरवाइज़ अगर आप 40 के हैं, 35 के हैं, 45 के हैं, जिस भी एज के हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये इस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपके ऊपर आपके ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा है।
1: बिल्कुल, और वो बनी रहे हमेशा, ये हमारी भी दुआ है। तो चलिए इसी प्यारी सी बात के साथ चलते हैं, बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, इंजॉय करते हैं। बस यूं गए यूं आए, आप सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा वाला शो
0: सुन सहेली।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और साथ में है आरजे
4: अंशिका।
3: जी हाँ, तो भाई 2:30 पे हमारा एक सेगमेंट हो जाता है कि हम आपको दो गाने सुनाते हैं। भाई एक वादा भी कोई बड़ी बात है। नागेश्वर जी कहाँ चले गए और आपने अभी तक अपनी डीपी नहीं लगाई, इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते हैं कि मैं सुबह को आऊँ। देख लो अंशिका।
4: हाँ मैम, मैं देख रही हूँ।
3: हेलो सोनिया तिवारी जी, कैसी हैं आप? तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं, जो कि वो भी बहुत ही अच्छा वाला होने वाला है।
4: अभी तक हमने बताया कि किस तरीके से आप हेल्दी रह सकते हैं, फिर हमने बताया जॉब के लिए, लेकिन इतनी सारी चीजों में एक चीज नहीं बताई और वो ये कि भाई इन सबसे जो स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस फ्री कैसे रहेंगे।
3: हाँ
4: वो भी तो कुछ तरीके चाहिए। अब कुछ लोगों का स्ट्रेस तो कुछ विशेष काम करने से दूर हो जाता है, लेकिन हमारा स्ट्रेस कैसे दूर हो?
3: तो आप भी वो विशेष काम करिए।
4: नहीं मैं वो विशेष काम नहीं करना चाहूंगी।
3: तुम भी विशेष काम किया करो। भाई देखो, मेरा विशेष काम क्या है कि जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं अपनों से बात कर लेती हूँ फोन पे, और मेरे दिल के अजीज कुछ हैं जो कि सभी के होते हैं, मतलब एक मतलब रिलेटिव होते हैं, तो कुछ फ्रेंड्स होते हैं, तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ और मैं अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस फील कर लेती हूँ। और सबसे अच्छी बात होती है कि अगर घर वाले स्ट्रेस देना तो घर से 10 मिनट के लिए बाहर निकल जाओ।
4: ये बात तो मैं इस पे तो मैं 250%
3: सबसे अच्छा बात। और आज जैसे कि महिलाओं का दिन है, तो मैं ये आप जान लो कि ये टिप ऑफ द डे, आप समझो इसको कि अगर आपके घर में कोई आपको स्ट्रेस दे रहा है या फिर कभी तू मैं हो जाती है, एनीथिंग कुछ भी अगर हो रहा है, तो आप 10 मिनट के लिए आपका वॉक भी हो जाएगा और आपका बीपी भी वो फ्लक्चुएट नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होएगा। आप जाएं आराम से निकल करके किसी पास के किसी भी

0: जैसे आपको मतलब पार्क मिल रहा है, कोई शॉप मिल रही है अच्छी सी, कोई मतलब शॉपिंग करना हो, कुछ नहीं लेना होता है ना, तब भी आप उस शॉप पे, आप कपड़ों की दुकान पे चले जाओ. क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसने क्या बोला, सब कुछ आप बोल सकते हैं. बस इतना ये वाले काम आप कर लिया करिए तो इससे लगेगा कि हाँ भाई, फिर आप आराम से घर आइए और फिर अपने काम पे लग जाइए.
1: बिल्कुल, दो ब्यूटीफुल आइडियाज मैम ने आपको दे दिए, पहला फोन वाला था और दूसरा शॉपिंग वाला था, और दोनों जबरदस्त थे.
2: हाँ.
1: आप दोनों को इस्तेमाल कर,
0: क्योंकि अंशिका मैं यही करती हूँ, जब भी कोई टेंशन वाली बात होती है ना, तो मैं ऐसे अपने स्ट्रेस को दूर कर लेती हूँ.
1: ये तो अच्छा है सामने वाले के लिए, वरना अगर मैम स्ट्रेस में हुई और स्ट्रेस में होकर फिर उन्होंने गुस्सा किया, तो जिस प्राणी के ऊपर किया वो प्राणी दोबारा फिर उनके सामने नहीं आएगा, फिर वो प्राणी सोचेगा कि मैं क्यों वहाँ मौजूद था,
0: नहीं मैंने क्यों ऐसा काम किया,
1: क्यों उन्हें गुस्सा आया. ऐसे एक गाना भी है, क्या था वो, याद नहीं रहा, उन्हें गुस्सा आया और ऐसा कुछ है, मुझे सॉन्ग प्रॉपर याद नहीं आ रहा है.
0: चलो
1: कुछ था
0: ठीक है.
1: हाँ
0: नेक्स्ट
1: ऑफकोर्स. तो नेक्स्ट ये है कि भाई दो तो आपने जान लिए, तीसरा ये होता है कि जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमेशा, गुस्सा हो या स्ट्रेस भी हो, कई बार गुस्सा नहीं होता है वो सिर्फ स्ट्रेस होता है काम का या किसी फैमिली मेंबर का या किसी भी चीज का. तो जब आपको स्ट्रेस आए तो आपको अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है. और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कई बार होता है मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे जिस पॉइंट पे गुस्सा आ रहा होता है सबसे पहले तो मैं वो पॉइंट थोड़ा भुलाने की कोशिश करती हूँ. और भुलाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि कोई भी एक काम लेके बैठ जाती हूँ. जैसे मान लीजिए मेरी अलमीरा बहुत दिन से मैंने अगर नहीं सेट की है तो मैं अलमीरा सेट करूंगी. अगर मेरे किचन का काम कुछ पेंडिंग रह गया है. अच्छा, मुझे एक चीज और है, मुझे गुस्सा आता है या स्ट्रेस होता है तो मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है.
0: और उस दिन साथ भी यही है,
1: खाना अच्छा बन भी जाता है.
0: हाँ, बड़ा
1: साइड होता है.
0: पता नहीं कैसे टेलीपैथी सब लोग कहते हैं कि जब हम खाना बनाते हैं तो हमारे भाव उसमें जाते हैं, और जबकि हम लोग जब गुस्से में होते हैं तो खाना उस दिन टेस्टी बनता है,
1: अच्छा बनता है.
0: एक्चुअली हम लोग बहुत गुस्से में ना मन से काम करते हैं, वो बात हो जाती है. लड़ाई में मन से काम, और लड़ाई में काम ज्यादा भी होता है.
1: हाँ.
0: घर में अगर किसी से तू मैं हो जाए तो वो बंदा, एक बंदा बहुत ज्यादा काम कर लेगा. वो या तो दिखाने के चक्कर में या तो किसी और के चक्कर में, बट काम ज्यादा हो जाएगा.
1: मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं बता रही हूँ मैम कि मेरी एक रिलेटिव है जिनसे मेरा बहुत झगड़ा होता है. तो एक दिन मेरा एक बार झगड़ा हो गया, तो दिन में ही हुआ और मेरा दिमाग बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा वाला खराब था. तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, क्योंकि अगर किसी इंसान पे निकलेगा तो वो ठीक नहीं होगा. तो मैंने क्या किया कि कपड़े भिगोए हुए थे और साफ करने के लिए, तो मैंने कपड़े मैंने लिए और मैंने साफ करना शुरू किया. और उसमें अच्छे खासे कपड़े थे, मतलब उनको, तो मैंने पूरे कपड़े साफ कर डाले.
0: उसके बाद भी तुम नहीं थकी?
1: मुझे एक डेढ़ घंटा जो भी लगा उसमें सारे कपड़े साफ हुए और अच्छे से क्लीन भी हुए, ऐसा नहीं था कि कहीं कुछ रह गया. और उसके बाद मुझे थकान भी नहीं हुई.
0: वो क्योंकि तुम्हारा दिमाग वो लड़ाई में लगा हुआ.
1: हाँ.
0: अच्छा, शरीर थका लेकिन दिमाग नहीं.
1: और मेरी मम्मी बाद में कह भी रही है कि क्या बात है, आज तो व्हाइट कपड़े थे. तो मेरी मम्मी कह रही है क्या बात है, आज तो पापा की शर्ट व्हाइट तुमने बड़ी बढ़िया साफ की है जो है, और ये तो बिल्कुल चमक रही है. मैंने कहा वो क्या होता है ना कि मैंने जितना मेरे अंदर भरा हुआ था वो कपड़ों पे निकाला तो फायदा हुआ, कपड़े साफ हो गए. अगर इंसान पे निकलता तो फिर फायदा नहीं, नुकसान.
0: तो ये होता है अंशिका, जब हम स्ट्रेस में होते हैं या हम गुस्से में होते हैं, सबसे पहला पॉइंट गुस्से में होते हैं, तो क्या होता है कि हम ना दूसरों के गुस्से पे, जैसे ऐसे कभी कभी हर किसी के घर में हो जाती है, तो बोलने वाले लोग जो होते हैं ना वो अपना मुंह बंद नहीं करते हैं. तो अच्छा, मैं क्या करती हूँ जब भी कभी कुछ ऐसा होता है, सबके घरों में कुछ ना कुछ होता है,
1: बिल्कुल,
0: तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना सिस्टम ऑन कर देती हूँ, म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देती हूँ ना, उसमें गाने चला दूंगी, भजन चला दूंगी, तो क्या रहेगा कि ना मैं सुनूंगी ना मुझे गुस्सा आएगा.
1: बिल्कुल,
0: सबसे अच्छी बात है. और या तो मेजर से मेजर काम जो मतलब सालों पेंडिंग काम पड़े रहते हैं, उन कामों को खोल के मैं बैठ जाती हूँ कि ये काम करना है वो काम करना है.
1: या फिर एक तरीका और होता है, पुराने एल्बम्स उठा लीजिए अगर आपके पास घर पे रखे हुए हैं, उनको देखना शुरू कर दीजिए.
0: हाँ.
1: अपनी बचपन की मेमोरी को थोड़ा रिवील करना शुरू करिए. क्योंकि मैं ये करती हूँ, क्योंकि देखिए मुझे नहीं पसंद है, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि जहाँ गंदगी होती है वहाँ हम नहीं जाते हैं, हम हमेशा सेफ साइड से जाते हैं कि अगर यहाँ गंदगी पड़ी है तो हम कहते हैं उधर से निकल जाओ बेटा घूम करके.
0: हाँ.
1: ये सही होता है, क्योंकि अगर आप उसमें जाएंगे तो आपके ऊपर भी उसके छींटे आएंगे. इसलिए हमेशा गलत इंसान के साथ कभी नहीं उलझना चाहिए.
0: बिल्कुल.
1: लेकिन एक बात और है, अगर कोई आपके पेशेंस को टेस्ट करे तो फिर उसे कहना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक इंसान को लगने लगता है ना मैम कि ये नहीं कह रही है तो मतलब वीक है, मेरा जवाब नहीं दे सकती है इसलिए मुझे फेस नहीं कर रही है। इसलिए अगर पीक पे कोई आपकी पेशेंट को टेस्ट करता है तो फिर वहाँ पे इतने अच्छे से कहिए कि दोबारा उसको सुनने की नीड ना हो।
0: एग्जैक्टली,
1: ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने अंदर कभी चीजों को भरने नहीं देना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: उससे आप ही को प्रॉब्लम होती है।
0: हाँ जी,
1: तो इसका मतलब है हम कभी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं।
0: हाँ, कभी कभी
1: कभी कभी
0: कभी कभी
1: मूड का असर है,
0: मूड का असर है, कभी कभी आप कर लेते हैं, व्यक्तित्व का असर है, कभी कभी मूड माहौल का भी असर हो जाता है कि हम अच्छी बातें कर लेते हैं। तो आज का टिप ऑफ द डे अभी बाकी है, तो मैं चाहती हूँ कि हमें, अब हमारे पास 8 मिनट है, तो एक गाना तो बनता है, छोटू सा एक गाना बनता है, और ये गाना मुझे लग रहा है कि अंशिका ने लगाया होगा स्पेशली मेरे लिए, मुझे पता है, तो आइए सुन। मुझे पता था ये गाना जो लगा है ना इसने, ये मेरे लिए लगाया, ओ जी जी, ठीक है, तो ये सुन लेते हैं, उसके बाद आते हैं आज के टिप ऑफ द डे, आपको बताएंगे एंड देन आपसे करेंगे चर्चा।

0: गाना जो है ना, मुझे पता था कि ये अंशिका ने जानबूझ के मेरे लिए ही लगाया है, तो कोई नहीं, आइए चलते हैं फटाफट टिप ऑफ द डे, जल्दी से बताएंगी हमारी अंशिका।
1: टिप ऑफ द डे आज का ये है कि सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट गहरी सांस लेने से दिन भर पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, इसलिए सुबह 5 मिनट गहरी सांसें जरूर लेनी चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज होती है और इससे आप फिट रहते हैं।
0: जी हाँ, तो भाई हम मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज्यादा और अंशिका पानी पीने को भेजा गया है, क्योंकि अगर अभी वो पानी नहीं पियेंगी तो फिर से आपके साथ अभी कॉलर ट्यून गोंडा में आएंगी, तो हमें भी दें ज्यादा साथ ही साथ में। कल मिलेंगे सेम प्लेस टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

प्यार है, हाँ यही प्यार है, बिल्कुल यही प्यार है। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग अभी अभी चल रहा था, जो कि ये है मोहब्बतें मूवी का, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, चलते चलते बस हम भी यूं ही रुक जाया करते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो अभी तक मैं देख रही हूँ नागेश्वर जी, सोनिया तिवारी जी, जो कि अभी तक कोई नहीं आया है। तो चलिए लिसनर सीधे चलते हैं हमारी पहली फरमाइश की तरफ, जो कि है सबसे पहली फरमाइश, आइए देखते हैं कि किसकी है। लेकिन उससे पहले आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका और अपने सभी लिसनर्स का स्वागत करती हूं, उनका भी जो कि हमें चैट बॉक्स से सुन रहे हैं, उनका भी जो कि हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं और उनका भी जो हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी सबसे पहली फरमाइश की तरफ, जो कि है देवी प्रसाद जी की। आइए सुनते हैं देवी प्रसाद जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे इस फरमाइश के उस पार। तब तक के लिए सुने और एंजॉय करें और बने रहें अपने सबसे पसंदीदा कार्यक्रम कॉल ट्यून गोंडा में।

जाइयो, बरसात का मौसम है। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी देवी प्रसाद जी की। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है मोहम्मद वारिस जी की। पर उससे पहले चलते हैं सीधा चैट बॉक्स में और सुरेंद्र यादव जी आ गए हैं और उसी के साथ आसिफ खान जो कि हमें मुंबई से सुनते हैं लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आपको भी। सनी पांडे जी आ गए हैं लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून आपको भी। तो आइए सीधे चलते हैं अब अगली फरमाइश की तरफ, सॉन्ग सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। और एक बात और बता दूं कि अगर आप सभी भी अपनी फरमाइश हमारे जो भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए फटाफट से फ़ोन उठाइए, डायल करिए 6393316429 और अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचा दीजिए। आइए सुनते हैं मोहम्मद वारिस जी के सॉन्ग को।

लगे चांद का टुकड़ा, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो की है सुनील कुशवाहा जी की। तो आइए सुनते हैं सुनील जी के सॉन्ग को।

सन सनन सन और जारे पवन, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है चांद बाबू की, जो कि है हथियागढ़ से। तो आइए सुनते हैं, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है इनका, और इस सॉन्ग के उस पार मिलूंगी मैं आपसे अगली फरमाइश के साथ। और फिर एक बार मैं अपने सभी लिसनर्स को कह देना चाहती हूँ जो भी हमें सुन रहे हैं, कि अगर आप भी अपनी फरमाइश, अपने पसंद का सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस फ़ोन उठाना है, डायल करना है 6393316429 और अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचा देना है। तो आइए सुनते हैं हम अभी चांद बाबू जी के सॉन्ग को।

0: न समझो मैं हूँ भोला भाला, पान का एक बीड़ा खिला दो फिर देखो बनारसी बाबू की। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो की है अनन्या मिश्रा जी की। तो आइए सुनते हैं अनन्या जी की फरमाइश को, और इसके बाद में मिलूंगी आपसे अगली फरमाइश के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में।
1: छोटे से

पापा क्यों मैं छोटी से बड़ी हो गई, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि अनन्या मिश्रा जी की फरमाइश थी। और बिल्कुल हर बेटी अपने पिता से यही सवाल करती है कि वो बड़ी क्यों हो गई, क्योंकि हर बेटी अपने पिता के लिए हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, वही बच्ची ही रहना चाहती है, वही दुलार वही प्यार पाना चाहती है। बट क्या करें, होना तो वही है जो होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है रमेश कुमार जी की, जो कि हमें महाराष्ट्र से सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं रमेश जी की फरमाइश को, और इसके बाद में मिलूंगी मैं आपसे अगली फरमाइश के साथ। तब तक के लिए सुने और इन्जॉय करें इस प्यारे से सॉन्ग को।

बिल्कुल, जा किसी लड़की से आंखें चार कर दीवान दिल दीवाना कहता है प्यार कर, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी रमेश कुमार जी की, जो कि हमें महाराष्ट्र से सुनते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है राजू जी की, जो कि हमें हथियागढ़ से सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं राजू जी के सॉन्ग को और इसके बाद मिलूंगी मैं आपसे अगली फरमाइश के साथ। तब तक के लिए आप सभी इंजॉय करते रहें आपके अपने प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा को।

मिक्स के रह जाऊं। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो की है सुरेंद्र यादव जी की। तो आइए सुनते हैं सुरेंद्र जी के सॉन्ग को, और आप सभी बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। तो आइए चलिए सुनते हैं सुरेंद्र जी का सॉन्ग।

0: बिल्कुल बंधन, ये बंधन दिलों का बंधन और बहुत ही प्यारा सा बंधन भाई। भाई बहन का बंधन तो ऐसा ही होता है कि क्या ही कहा जाए, तो बहुत ही प्यारा सा बंधन। और आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है मुस्तफ़ा जी की। मुस्तफ़ा जी जो कि हमें सऊदी अरब से सुनते हैं, तो आइए चलिए सीधे चलते हैं मुस्तफ़ा जी के सॉन्ग की तरफ। और अब मैं मिलूंगी आपसे सॉन्ग के उस पार, तो सुने और इन्जॉय करें और बने रहें अपने सबसे पसंदीदा प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में।
1: Discourses, Carva 2.0 पर।

चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। बहुत ही प्यारा सा और फीलिंगफुल ये सॉन्ग। तो आइए चलिए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है सनी पांडे जी की। सनी पांडे जी की सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं और मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुने और इन्जॉय करें।

चेहरा, इतनी प्यारी आंखें। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग दिलवाले मूवी का, जो कि फरमाइश थी सनी जी की कि उन्हें दिलवाले मूवी का कोई भी एक सॉन्ग सुनना है। अब आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है निशा जी की। तो आइए सुनते हैं निशा जी के सॉन्ग को।

कल मुझे मेरा प्यार मिलेगा, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश की थी निशा जी ने। अब आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है सुरेश कुमार जी की, जो कि हमें चौक से सुनते हैं। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, जब दिल से दिल टकराता है। तो आइए सुनते हैं ये सॉन्ग और मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार।

बिल्कुल, जब दिल से दिल टकराता है तो बहुत कुछ हो जाता है। तो आइए चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो की है इरशाद जी की। तो आइए सुनते हैं इरशाद जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुनते रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा को और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका।

बिल्कुल ना हो तुझे मुझ पर यकीन। तो आज की मेरे किस काम की बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी इरशाद जी की। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है मुमताज अंसारी जी की। तो आइए सुनते हैं मुमताज जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार।

देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग तुम्हारी नजरों में हमने देखा, जो कि फरमाइश थी मुमताज अंसारी जी की। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है राकेश वर्मा जी की, जो कि हमें दुखनाथ मंदिर से सुनते हैं। तो आइए चलते हैं अब अगली फरमाइश की तरफ, सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग राकेश वर्मा जी की फरमाइश पर। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली फरमाइश के साथ, तब तक के लिए सुने और इंजॉय करें।

और रुस्तम धोखा खा गए। हम बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो की है दुर्गा जी की। तो आइए सुनते हैं दुर्गा जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे इस फरमाइश के इस पार। तब तक के लिए सुने और इन्जॉय करें।

बिल्कुल तेरे बिन जिंदगी जिंदगी ना लगे, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो की फरमाइश थी दुर्गा जी की। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है रितेश जी की, जो कि हमें सुनते हैं मालवीय नगर से, और उन्होंने फरमाइश की है बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की। तो आइए सुनते हैं सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। सुनिए और इन्जॉय करते रहिए और बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका।

मुझे प्यार करता, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। तो आइए चलिए अब बढ़ते हैं, सीधा चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ जो कि है मुस्तफ़ा जी, जो कि हमें सऊदी से सुनते हैं, और इसी के साथ इम्तियाज अहमद जी हैं जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून इम्तियाज जी। और इसी के साथ हमारे एक और लिसनर हैं जिन्होंने कि अपना नाम तो नहीं लिखा है बट वो लिख रहे हैं, अंशिका मैम आपका प्रोग्राम वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। इसके बाद मुस्तफ़ा जी और फिर से मुस्तफ़ा जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका मैम गाना बजाने के लिए, यू वेलकम मुस्तफ़ा जी। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं सनी पांडे जी, उन्होंने भी थैंक यू लिखा है, वेलकम आपको भी। सुरेंद्र यादव जी वो भी लिख रहे हैं थैंक यू अंशिका जी, यू वेलकम सुरेंद्र जी। और इसी के साथ मुस्तफ़ा जी अगेन सनी पांडे जी और सुरेंद्र जी। तो हमारे साथ हमारे जो भी लिसनर अभी तक बने हुए थे कॉलर ट्यून गोंडा में मेरे यानी आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ, उन सभी का बहुत बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अब मैं मिलूंगी कल आपसे आपके अपने पसंदीदा वाले प्रोग्राम में जिसका कि नाम है सुन सहेली और बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और साथ ही साथ में इंजॉय करते रहिए अपने फेवरेट रेडियो ग्यानस 89.6 FM को। बाय बाय।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य।

टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में, और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: अरे सुना?
4: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
7: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
6: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
7: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
6: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज, गोंडा।
8: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
9: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
8: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
9: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
8: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
9: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: अरे सुना?
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम है आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो की है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान, टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
9: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
0: कभी हरी लाइट तो कभी पीली तो कभी लाल, इंतजार किसका होता है? जी हाँ, भागने वाली का। हाँ, वो लाइट जो आपको भागने का मौका दे दे, और वो तो हर सिग्नल पे नहीं अवेलेबल होने वाली। कई बार तो हम लकीली क्रॉसिंग वाले सिग्नल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन आज मैं एक बात रिक्वेस्ट करूंगी आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन 9.6 FM के माध्यम से, कि यार हमारे शहर में कब ट्रैफिक लाइट्स यानी कि ये लाल, हरी और पीली बत्ती लगेगी, कब रूल्स फॉलो होंगे। तो आज इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे पे मैं निवेदन करती हूँ हमारे एस्टीम्ड अधिकारियों को, नगर पालिका को, कि भाई शहर में थोड़ा सा लग जाता तो मजा आ जाता, थोड़ी सी हम लोग की भी मतलब भौकाल आ जाती। क्या बोलते हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए, मैं गलत हूँ क्या? आपका क्या मानना है इस बारे में? वैसे छोटे छोटे शहरों में नहीं होती, लेकिन यार हमारा शहर तो बड़ा है। क्या बोलते हैं, है कि नहीं है? मैं तो अपने शहर को बहुत बड़ा मानती हूँ। कहते ना कि जब आप जिस जगह में रह रहे हो उसको नापसंद करोगे तो ऑलरेडी आपके अंदर हर चीज़ को लेके नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि नेगेटिव थॉट्स पे लगाइए रेड लाइट यानी कि स्टॉप, और बोल दीजिए आने वाले नेगेटिव थॉट्स को कि इंतज़ार करें और आप भाग जाइए पॉजिटिव डायरेक्शन की दौड़ में, जी हाँ, हरी बत्ती के साथ। तो सबसे पहले बता दूँ कि 1914 में अमेरिका और आयो स्थित क्लीवलैंड में दुनिया का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम की स्थापना हुई थी। क्या मस्त बात बता दी ना मैंने आपको। तो कहें तो सबसे पहली बार अमेरिका में लगा था। हाँ भाई, अमेरिका जो शक्तिशाली देशों में से एक है, तो भाई पहली बार इसने ये काम, बड़ा वाला काम भी किया। इसमें लाल, हरी और पीली बत्ती वाला जो मामला है वो भी लगा। पहले तो इसमें लाल और हरी बत्ती के साथ एक बजर भी लगा था। शुरुआती जो सिस्टम था उसमें पीली बत्ती की कोई जगह थी, मतलब आपको इंतज़ार करने वाला सिस्टम ही नहीं था कि आप गाड़ी से स्टार्ट कर लो। ये पीली बत्ती वाला सिस्टम इसलिए कि आप गाड़ी स्टार्ट कर लो, भागने का वो रहे, आप रेडी रहो कि भागने वाले हो आप 5 सेकंड में। तो 1923 में पीली बत्ती वाला सिस्टम भी जोड़ दिया गया कि भाई थोड़ा सा आपको गाड़ी स्टार्ट करने का हम मौका देंगे। पहले तो इसको लगाने के पीछे आप खुद ही जानते हैं कि सड़क पे होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना एक उद्देश्य है। इसके अलावा जो ट्रैफिक जैम होते हैं उनको कम करना। जो सड़क पे अक्सर हम लोग, मैं रोडवेज के पास जब भी पहुंचती हूँ तो मैं सच्ची बता रही हूँ, आने के पहले मुझे आधे घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है क्योंकि मुझे पता होता है कि वहाँ रोडवेज पे जाम लगा होगा। तो ये एक बात है, तो थोड़ा सा मेरा दिल दहल जाता है रोज़ शाम को, रोज़ सुबह। सुबह के टाइम भी वही ट्रैफिक रहती है, शाम को भाई आने वाले आ रहे हैं, सुबह जाने वाले जा रहे हैं, तो भाई दुख की बात है ना ये। तो आप लोग बताइए कि आपके गोंडा शहर में आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ट्रैफिक लाइट? मुझे तो भाई चाहिए, आप बताइए। अगर आप मेरे साथ रेडी हैं तो चैट रूम में मुझे लाल, पीली, हरी बत्ती तीनों दिख जानी चाहिए। हरी बत्ती दिखे जिससे हम इस चीज़ को मैसेज के तौर पर बढ़ा सके, आगे ले जा सके। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि इंडिया में कब आएगी ये प्रणाली? अगर मैं ये आपसे सवाल करूँ तो आपको जवाब देना चाहिए ना कि इंडिया में ये ट्रैफिक सिग्नल कब से लगा? आप सोच रहे होंगे ना कि शुरू से ही लगा होगा, कहीं ना कहीं तो लगा ही होगा। पर आज आपके पास आरजुबीन है जो आपको जवाब देगी और बताएगी भी। जी हाँ, साल था 1939 यानी कि 1939, मुंबई में, जिसे तब बॉम्बे कहते थे, और रोड थी हॉर्नबी रोड। वहां पे सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल लगा था। मुंबई में लगने के बाद धीरे धीरे मतलब लोग अप्रिशिएट करने लगे कि भाई सही है, सिस्टम तो सही है। चौराहों पे लगाना शुरू कर दिया गया। फिलहाल इस हॉर्नबी रोड को फिलहाल के तौर पे दादा भाई नरोजी रोड के नाम से जाना जाता है। ऑटोमेटिक की बात करूं, इसके पहले वाला जो था वो तो लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, इंसान उसे कंट्रोल करते थे। ऑटोमेटिक वाले की बात करूं जो सेंसर के हिसाब से चलता था, टाइमर लगा देते थे, तो वो मुंबई के रामदेव चौक या पारसीवेल जंक्शन के पास लगा 1 जून 1955 में। तो इतनी बड़ी बड़ी जानकारी जानने के बाद आपके मन में तो आ ही रहा होगा ना कि हाँ कितनी खास बात बता दी। तो चलिए हम लोग भी थोड़ा सा ट्रैफिक रूल फॉलो करते हुए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, क्योंकि अभी ब्रेक का समय है, और मिलते हैं कुछ देर बाद। अभी के लिए लाल बत्ती के साथ सुनिए ये गाना। अच्छा, ये भी हो जाए ना ट्रैफिक के साथ एक गाना बज जाए, लाल बत्ती हो तो बढ़िया म्यूजिक लग जाए, हाँ मजा आ जाए नहीं। फिलहाल आरजुबीना की कहने के हिसाब से सिर्फ ट्रैफिक लाइट की ज़रूरत है गोंडा में, जो लग जाए तो शहर जगमगा जाए। तो आप सुन रहे हैं ज्ञान सिटी 9.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन, आरजुबीना के साथ शो गोंडा मसाला, आरजुबीना वाला जो नहीं रुकने वाला।

मेरे सारे सुरीले लिसनर्स, क्या हो गया भाई? आज रेडी स्टेडी नहीं है क्या? अरे मैंने ट्रैफिक की बात क्या कर ली? मैंने आपको रोका तो ना? भाई मैंने नहीं रोका, ना मैं रोकने वाली हूँ, और मैं ना रोकने वाली हूँ ना टोकने वाली हूँ, क्योंकि आज अंताक्षरी वाला दिन है, तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपको रोकूं या आपसे एक बार भी कहूं कि ना भाई ना, ये ना होगा।

फिलहाल हम यार हैं और दिलदार भी हैं और इसी के साथ गाने के लिए तैयार भी हैं। आपको फटाफट से अंताक्षरी खेलनी है तो वो चैट रूम में हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ कर देना है। और ट्रैफिक वाली बात तो आप लोग ने सीरियस ले ली, नहीं नहीं चाहते ना शहर में ट्रैफिक लाइट लगे। हाँ भाई, ज़्यादा इज्जत बन जानी अपनी।

क्या बात है भाई, इतनी म्यूजिकल शाम और हम इतने तन्हा, और तन्हाई के साथ पीछे बरसात आई। ओहो, फिलहाल हमारी बरसात हमारे साथ रेडी है। अनूप जी भी आ चुके हैं लड़कों की टीम से, एक दावेदार जो कि है तैयार, और लड़कियों की टीम से अभी मुझे कोई नहीं दिखता तलवार की तरह तैयार। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि भाई आज की अंताक्षरी स्पेशल होगी, इसलिए भी क्योंकि आज ट्रैफिक सिग्नल डे को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, और जब किसी स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने की बात आती है मेरे दिमाग में, तो मेरा दिमाग जो है ना ऑलरेडी एकदम खुशी में आ जाता है, क्योंकि जब वो चीज़ मेरे शहर से जुड़ी हो तो मुझे उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। यानी कि मैंने कहा ना कि हमारे शहर में ट्रैफिक लाइट नहीं है, तो उसके लिए मैं चाहती थी कि आप लोग कहें कि हाँ हमें चाहिए, लेकिन आप लोगों ने इसे किसी ने कहा नहीं, तो मेरा दिल दुख गया। तो अब ट्रैफिक लाइट लगेगी भी तो मैं ये कह दूँगी भाई मत लगाओ, मेरे शहर वालों को लाइट्स साउंड्स थोड़े कम पसंद हैं। तो फिलहाल फिर से आप सभी को शुभ संध्या भाई, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, एंड आर जे बीना आपके साथ लाइव हैं। आज शाम सुरों की है, यादों की है, और आपकी मुस्कान को वापस लाने की है। जी हाँ, मुस्कान वापस लाने की बात इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वो ज़माना और था जब हम अंताक्षरी खेल के टाइम बिताया करते थे, अब तो अंताक्षरी की जगह स्क्रॉलिंग नाम की चीज़ ने जगह ले ली है। फिलहाल जहाँ कहते हैं कि जहाँ शब्द ख़त्म होते हैं वहाँ से संगीत बोलना शुरू करता है, तो तैयार हो जाइए गुनगुनाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, क्योंकि आज अक्षर बनेगा नए गीत की शुरुआत। नए गीत की शुरुआत बचपन से हम लोग माँ से किया करते थे, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। और मतलब अभी तक जहाँ तक मैंने बहुत सारे शो सुने, लेकिन रेडियो पे आका मतलब जैसे रेडियो पे ऑन एयर अंताक्षरी बहुत कम सुनी है, लेकिन हम लोग इतने सालों से खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छा तजुर्बा हो गया हम लोग का खेलने का। वैसे आप लोग बताइए, अंताक्षरी नाम की बॉलीवुड फिल्म किस साल रिलीज़ हुई थी? अगर आपको याद है तो मुझे सोच के बताइए, अगर जवाब नहीं है तो फिर दिमाग लगाइए, फिलहाल मेरे दिमाग में भी कोई आंसर नहीं है। अगर आपको पता है तो जल्दी से आंसर की ओर कदम बढ़ाइए, नहीं तो आंसर नहीं आया तो फिर कैसे होगी शाम की शुरुआत। म्यूजिक के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ, म्यूजिक पे चार पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है, गौर फरमाइएगा। अरे गौर तो फरमाइए यार, मतलब ऐसे क्या बताऊँ, ऐसे ही अगर आप लोग गौर फरमाएंगे तब तो मेरी शाम की शुरुआत हो चुकी। संगीत वो एहसास है जो बिना शब्दों के दिल की बात कह जाता है, जब थक जाए मन तो ये सुकून बन जाता है, जब खुशियां दस्तक दें तो ये जश्न बन जाता है, कभी माँ की लोरी बनकर सुला देता है, कभी दोस्त की हंसी बनकर गुदगुदा देता है, कभी प्रेम की धड़कन बन जाता है, तो कभी बिछड़ने का दर्द भी सुरों में सज जाता है। हर राग में एक कहानी है, हर धुन में एक जिंदगी, हर राग में एक कहानी है, हर धुन में एक जिंदगी। संगीत ना कोई भाषा पूछता है और ना कोई मजहब, ये तो बस दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंच जाता है। जिंदगी की भागदौड़ से चलिए कुछ पल चुराते हैं, हम गम को सुरों में चलिए बहाते हैं, क्योंकि जहाँ साथ शब्द छोड़ देते हैं वहाँ संगीत अपनी कहानी शुरू करता है। तो आज आपका वास्ता कहाँ तक है ये आरजे बीना जानेगी, लेकिन उससे पहले एक गाना।

तो चलिए शुरुआत करते हैं उस शाम की, उस गाने की जिसकी आवाज़ सुनते ही आपका मन करता है गुनगुनाने का। तो मैं आरजुबीना आज आप लोग को बताना चाहती हूँ कि पहला जो लेटर है वो है माँ, और माँ से गाना मैं गाऊँगी, और जो आखिरी अक्षर होगा उससे आप लोग को गाना होगा। यानी कि माँ से गाना मैं गाऊँगी, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग आखिरी अक्षर का इंतज़ार करेंगे और मैं इंतज़ार करूँगी कौन सी टीम सबसे पहले उस लेटर को ध्यान से सुन के क्या करती है, गाना गाती है। तो चलिए देखते हैं आज गोंडा गाएगा या फिर आज गोंडा ऐसे ही चला जाएगा। तो माँ से जो गाना मुझे सुनाना है वो है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आरजुबीना इतना सोच क्यों रही है। देखिए मैं ना थोड़ा सा म्यूज़िक उजिक के साथ गाने की मुझे मतलब मन करता है, तो मैं सोच रही हूँ एक गाना ढूंढ लूँ, उसका म्यूज़िक भी निकाल लूँ, फिर आपको गाना सुनाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, समय धीरे धीरे बिताने के लिए करना है कुछ काम।

0: जी हाँ, तो मेरा गाना हो चुका है ख़त्म और अब आपने सुन भी लिया होगा कि गाना ख़त्म किस पे हुआ है, से। तो चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले कॉल करके अपने नाम पहला पॉइंट अर्जित करने वाला है।
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ मैडम नमस्ते, मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ।
0: जी नमस्कार, कैसे मुमताज जी, शुभ संध्या, क्या हाल है?
1: बस आपकी दुआ है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है।
0: सर से गाना सुनाना है आपको।

0: मेरा दिल तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ माहिया, तेरे हैं हम आए, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना। जी मैडम,
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मतलब कोई इतना अच्छा गाना चुन के कैसे इतनी जल्दी सुना सकता है, वो तो सिर्फ मुमताज जी सुना सकते हैं। क्या बात है, बहुत
0: अरे तो अच्छा आप देंगे तो हम पूरी तैयारी बनाए रखे हैं।
1: क्या बात है, बिल्कुल तैयारी ऐसे जोरदार रखिए, देखते हैं आज किसमें है कितना दम। क्या बात है, शुक्रिया। तो भाई मुमताज जी ने गाना सुना दिया, और जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना, ना से गाना सुनाना है। चलिए देखते हैं किसने क्या कर जाना है।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो। तो भाई नर्स से गाने वाले लोग कहाँ चले गए? मुझे लगता है कि आज आप लोग म्यूज़िक सुन सुन के ही टाइम बिताने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप टाइम कैसे बिता रही हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आपकी तैयारी ऐसी ढीली रहेगी तो भाई लड़कों की टीम को तो पॉइंट मिल भी गया है, मुशीर जी कैसे हैं। बाकी लड़कियों की टीम तो मुझे लग रहा है कि आज खस्ते ही खाने चली गई है, वो भी सस्ते वाले। लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट कॉलर। और अगला कॉलर कौन है हमारे साथ, आवाज़ सुनते हैं। हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग
0: गुड इवनिंग, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम?
1: जी, मोहम्मद मुशीद।
0: ओ मुशीद जी, कैसे हैं, क्या हाल है?
1: जी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप बताइए, आप
0: कैसे
1: हैं?
0: दिनों बाद याद किया आपने।
1: जी, हम सोच रहे थे किसी का कॉल आ जाए तो ठीक है, लेकिन देखा किसी का कॉल भी नहीं आ रहा है
0: तकल्लुफ नहीं करने वाले थे।
1: जी
0: ना से गाना सुनाइए।
1: अच्छा, नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने।

0: लगे,
1: क्या बात है, आने लगे, याद आने लगे। फिलहाल ये बताइए, हम लोग याद नहीं आते आपको ना कुल मिला के?
0: नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग तो हमेशा याद आते हैं और हमेशा याद आते रहेंगे।
1: बस हम थोड़ा सा भूल जाते हैं कभी कभी, है ना, ऐसा हो जाता है आपके साथ?
0: नहीं।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया,
0: ऐसे
1: ही कॉल करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मुशीब जी ने गाना सुना दिया है और याद आने लगे, ग से देखिए कौन गाने के लिए आ रहा है। फिलहाल तो अनूप जी ने कविता लिखी थी कि संगीत तो जीवन के हर पल में है, कभी पत्तियों की सरसराहट तो कभी चिड़ियों की चहचहाट, कभी बच्चों की हंसी में तो कभी अपनों की खुशी में, कभी राधा कृष्ण की बंसी की धुन में तो कभी प्रकृति माँ के प्राकृतिक प्रत्येक स्वर में, या संगीत ही है जो हमें हर पल सुकून देता है। चलिए देखते हैं कौन है जो अब।
2: हेलो
1: हेलो,
2: गा से गाना है मैडम?
1: हाँ, गा से गाना है।
2: गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, आज जो मैं कुछ भी हूँ वो आपकी इनायत है, जिंदगी से कैसा सिकवा खुद से ही शिकायत है, आज जो मैं कुछ भी हूँ वो आपकी इनायत है।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुमताज जी, आप फिर से हमारे साथ लाइव हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत टाइम पे कॉल किया, क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो आपकी इनायत है ह से गाने के लिए, देखते हैं कौन दावेदार है। दावेदार सोने में लगे हैं, ये तो बिल्कुल बात क्लियर है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिलहाल के लिए इंतजार तो हम करेंगे ही, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना ह पे छोड़ के हम जाते हैं और आप लोगों को एक गाना सुनाते हैं, क्योंकि इतने शांति से तो शाम नहीं बीतने वाली, क्योंकि मुझे लगता है सब लोग ट्रैफिक सिग्नल लगाने में लग गए हैं आज, लड़कियां तो मुझे लग रहा है सो ही गई हैं। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, थोड़ा सुपर फास्ट वाला गाना जो आपकी एनर्जी को बढ़ा देगा।

0: Ladies and gentlemen, you are not.
1: फिलहाल जैसे मैंने गाना प्ले किया, एक कॉल भी आ गया. चलिए देखते किसका है.
2: हेलो,
1: शुभ संध्या. फाइनली आपने अपना खाता खोलने की तैयारी कर ली. प्रीति जी, मुझे तो लग रहा था कि आज लड़कियां नाक कटवा देंगी मेरी. हाँ से गाना गाना है. हाँ हाँ क्या बात है. और अगर आप और हम साथ नहीं होंगे तो कैसे गाएंगे. तो फिलहाल साथ बहुत जरूरी है. और लड़कियों की टीम से प्रीति जी ने आके एंट्री मार दी है. तो फिलहाल टीम का कैप्टन बहुत मजा हुआ खिलाड़ी है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो अपनी टीम को बचा के रखेगा. आपने आखिरी लेटर कौन सा छोड़ा प्रीति जी.
2: जाते रहेंगे.
1: क्या बात है. तो चलिए इस बार ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई कॉल करे या ना करे. फिलहाल किसी की भी टीम का एक इंसान दोबारा कॉल कर सकता है. और चलिए देखते हैं गर्ल से गाने के लिए कौन हमारे साथ है. हेलो,
3: नमस्ते मीना मैम.
1: नमस्कार.
3: गुड इवनिंग.
1: शुभ संध्या सुरेश जी. गुड इवनिंग. क्या हाल है.
3: और क्या हाल है.
1: बिल्कुल ठीक है. और आपकी टीम को मिल गया है ग, तो ग से गाइएगा.
3: ग से
1: जी.
3: गोरे हाथों पर ना जुल्म करो, हाजिर है ये बंदा हुक्म करो. तुम्हारी तलाई में दाग न लगे, गोरे हाथों पर ना जुल्म करो, हाजिर है ये बंदा हुक्म करो. तुम्हारी कलाई पे दाग न लगे. ये रफी की आवाज है, प्यार किए जा का मूवी का है.
1: क्या बात है, क्या बात है. दाग ना लगे ग से शुरू किया और ग ही आपने दूसरी टीम को दे दिया. क्या बात है.
3: अगर कोई गीत हमसे अगर कोई सुनना हो तो लता जी की आवाज में गीत सुना दें. तो
1: बिल्कुल स्वागत है.
3: हाँ, हमने कहा इजाजत मिल जाए तो
1: बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है.

0: और तब तक लड़कियों की टीम गर्ल से गाना तैयार कर ले और हम सुरेश जी से सुनते एक प्यारा सा गाना।
1: ये हाँ तो हम सुना दें।
0: जी जी स्वागत।
1: जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, तबाही तो हमारे दिल पे आई आप क्यों रोए, जो हमने दास्तां हमारा दर्द है ये गम ये आप क्यों सहते हैं, हमारा दर्द ये गम ये इसे क्यों आप सहते हैं, ये क्यों आंसू हमारे आपकी आँखों से बहते हैं, गमों की आग हम

0: बहुत रोए मगर आपकी खातिर न रोएंगे, ना अपना चैन खोकर आपका हम चैन खोएंगे, कयामत आपके अस को निठाई, आप क्यों रोए जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए न ये आंसू रुके तो देखिए हम भी रो देंगे, हम अपने आंसुओं में चांद तारों को डुबो देंगे, बना हो जाएगी सारी खुदाई, आप क्यों रोए जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए तबाही हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए।
1: क्या गाया आपने, इतना सुरीला, ऊपर से इतना मार्मिक कि मतलब दिल भावुक हो गया सुन के ही। क्या बेहतरीन पेश की, क्या कहने, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया। तो भाई सुरेश जी की आवाज़ में हमने सुना गाना, लता जी की आवाज़ का गाना, जिसे सुन के भाई अच्छे अच्छों की आंखों में आंसू आ जाए, और आज ये सुन के तो लग रहा है कि हाँ दिल भर आया। और चलिए अब हम सुनते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट्स की आवाज़, कौन है हमारे साथ। हेलो, हाँ प्रीति जी, पूरा मतलब ध्यान से सुन रही थी एकदम गौर। अब लड़कियाँ मतलब एकदम एक्टिव हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है आप आ गई है ना, तो आप की मोटिवेशन से और भी लोग मुझे दिख रहे हैं, तो
2: लग रहा है।
1: कहाँ से सुना है जी?
3: गोरे रंग पिना इतना घुमान कर, गोरे रंग दो दिन में ढल जाएगा, तो समय में वो परवाना, तो समय में वो परवाना, तुझसे पहले मैं जल जाऊंगा।
1: वाह, गा पे गा उछाला जा रहा है, देखिए क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं अब कौन आता है गा से गाना गाने के लिए। लेकिन मैं आपको सहूलियत के लिए बता दूं लड़कियों की टीम को कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां वापस से कॉल नहीं कर सकती, क्योंकि अभी तक मैंने यही राउंड रखा है कि आप लेटर कोई भी इंसान कैच करके तुरंत गाना सुना सकते हैं। और अभी देखते हैं कौन है, लड़कों की टीम से है कोई या लड़कियों की टीम से। हेलो,
4: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग अनू, कैसी हैं? अभी तक सोने की क्या सजा दी जाए आपको?
4: मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, और आप जो भी सजा दो मुझको कबूल है। मगर अभी ना मैं घर से बाहर थी, अभी घर पहुँची हूँ, तुरंत रेडियो ऑन किया।
1: मम्मी ने घर से निकाल दिया था क्या? मम्मी ने घर से निकाल दिया था क्या?
4: ना,
1: अच्छा मुझे
4: ऐसे बात है, कुछ काम से बाहर थी, वरना मैं घर से बाहर आ सकती हूँ रेडियो छोड़ के।
1: घर से गाना सुनाइए।
4: गा रहा हूँ इस महफिल में,
1: मैडम, ये गाना हो गया है, दूसरा सुनाइए।
4: ओके,
1: गा चौथी बार आया अभी।
4: मैं तो सुन ही रही थी, मुझे क्या पता था गा हो गया।
1: फिर से गाइए, गा से
4: फिर से गाऊं? गाना आए या ना आए, गाना चाहिए
1: ठंडे पानी से,
4: पानी।
1: ये शुरू ठंडे पानी से है, नंबर कटवा लेना। अनु वैसे ही पीछे चल रहे हैं, लड़कियों की टीम पीछे है।
4: मैं जानती थी ठंडे ठंडे पानी से। गा ला दू, कहीं से ला दू, गा ला दू।
1: मुझे लग रहा है गा आज नहीं आएगा, चार गा आ चुके हैं, ये चौथा गा है।
4: मैं गोरी कलाइया गा सकती हूँ?
1: ये भी हो गया है।
4: ओ, तो क्या नहीं हुआ, हमको तो ये नहीं पता है।
1: हो नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे गाने गाए जा चुके हैं, कोई नया ढूंढो भाई।
4: नया गाना तो मुझको आता ही नहीं है, मुझको यही नहीं पता है कौन सा गाना है लोगों ने मेरे लिए छोड़ा है।
1: सोचो, मैं किसी और को तब तक मौका देती हूँ, सोचो।
4: हाँ हाँ ठीक है, मैं
1: सोचती हूँ। चलिए देखते हैं गर्ल से गाने के लिए कौन सी गोरी तैयार है। यार मैंने तो शब्द बता दिया। फिलहाल के लिए हमारे साथ कौन है? हेलो
2: हेलो हेलो, नमस्कार
1: नमस्कार। आवाज जानी पहचानी, अविनाश जी तो नहीं बोल रहे हैं?
2: जी जी बिल्कुल।
1: कैसे हैं अविनाश जी? शुभ संध्या।
2: जी शुभ संध्या, बहुत अच्छे हैं।
1: गर्ल से गाना सुना दीजिए। वैसे तो गर्ल बहुत बार हो चुका है, लेकिन देखते हैं गाना कौन सा आप सुनाते हैं।
2: मेरे पास गर्ल से बहुत गाने हैं, तो गा देते हैं कोई भी। जैसे कि गा देते हैं, गैरो से बात करके
1: क्या बात है,
2: बदलो न रंग नजर के मर जाएंगे हम, कसम से कसम से सनम कसम से, पैरों से बात करके
1: क्या बात है मेरी
2: बेवफाई मेरी समझ में आई, यू चाहती थी तूने तो ये फिर ये आग तूने लगाई, बच ना सकेगा तेरा भी दामन इस आग के अब असर से, इस आग के अब असर से, गैरों से बात करके। जी अभी और तीन चार गाने सुना सकते हैं घर से?
1: नहीं नहीं अभी इसी से काम चला लेंगे। थैंक यू। तो गैरों से बात करके चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ अगला कॉलर जो करने वाला है मुझसे बात। हेलो हेलो, आज तो लड़कों की टीम मुझे ज़्यादा दमदार दिख रही है, लड़कियों की टीम में थोड़ी सी मतलब एनर्जी कम है। गुड इवनिंग अनिल जी, काफ़ी दिन बाद दिखाई दिए, कहाँ एकदम मतलब गायब थे आप। और चलिए देखते हैं किसका कॉल आता है और कौन बाजी मार जाता है। हेलो हेलो हेलो, अरे बाप रे, आज तो लग रहा है कि लाइन भी बिजी चल रही है और आवाज भी नहीं आ रही है। हेलो हेलो
4: हेलो,
1: ओ बाबा से मेरे साथ अनु है। तो अनु आपको गाना सुनाना है गैरों से बात करके। क से
4: कैसे
1: कबूतर
4: कैसे।

0: मैंने एक गाना ना जंगल लव फिल्म से,
1: मैंने सुना नहीं है वैसे.
0: आप अभी सुन सकते हो.
1: बना बना के तो नहीं सुना रही हो?
0: नहीं नहीं मैंने जंगल लव से है, मैंने सुना था ना तो मैंने उसी वक्त याद कर लिया था और मुझे
1: ओके मैंने पॉइंट दे दिया. तो चलिए अगले कॉलर को मौका देते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ. नहीं करेंगे देरी और नहीं होगी किसी तरह की मतलब बात. फिलहाल लड़कियों की टीम ने कोयलिया गाए, पायलिया छनकाए, क्या बात है. हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, लड़कों की टीम से हमारे साथ एक लिसनर आ चुके हैं जी. आपका नाम?
2: हेलो
1: हेलो हेलो
2: हेलो.
1: लगता है हमारी आवाज जनाब तक नहीं पहुंच पा रही है. और कोयलिया गाए और ऐसे गाना सुनाना है, देखते कौन है मैं सब. हेलो
3: हेलो हेलो मैम, गीता श्रीवास्तव बोल रहे. गुड इवनिंग मैम.
1: गुड इवनिंग गीता जी. सब सो सो के उठ गए, आराम से ऐसे गाना सुनाना है.
3: ऐसे मैम ये भी ऐसे तो है मेरे वतन के लोगों. मेरे वतन के लोगों जरा में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी. जय हिंद. मैम 15 अगस्त आने वाला है.
1: बिल्कुल. तो किस लेटर पे आपने छोड़ा?
3: जय हिंद.
1: हो सकता है. ओके ओके. तो चलिए गीता जी ने भी कॉल करके अपनी टीम को बचाने की मतलब जो जिम्मेदारी ले ली है. अगले देखते हैं कॉलर कौन है हमारे साथ. हेलो
4: हेलो
1: हेलो. वापस से अविनाश जी, द से गाना सुनाना है आपको. द द द द.
4: अच्छा द से, ठीक है. तो सुनाने के दस तो बहुत सारे गाने हैं. दिल दीवाना ढूंढता है एक हसी लड़की, कौन है ओ कौन हूँ मैं जानता नहीं. हो दिल दीवाना ढूंढता है एक हसी लड़की.
1: क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू सो मच. तो अविनाश जी ने का फिर से दिया है, इन्होंने इसके पहले भी कही ड्रॉप किया था. और लड़कों के पॉइंट्स हैं अभी 180, लड़कियों के 120. काफ़ी स्लो चल रही हैं लड़कियां हमारे टीम में. और देखते हैं अगला कॉल किसका है. हेलो. क क क से, क से गाने के लिए तैयार हैं लड़कियां. देखते हैं कौन है हमारे साथ. हेलो देखते हैं अभी कौन है. हेलो.
5: श्री देवी प्रसाद
1: जी. श्री देवी जी, आप लड़कों की टीम से हैं?
5: जी जी.
1: दस
5: से बता दीजिए, उसी के टीम से हम रह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, भेदभाव नहीं है.
1: हाँ, तो कल से गाना सुना दीजिए.
5: आप डिसाइड कर लीजिए.
1: नहीं, लड़कों की टीम से नहीं है. चलिए कल से सुना दीजिए गाना.
5: कर चले हम फिदा जानपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. कर चले हम फिदा जानपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों.
1: चलिए हो गया. और अब देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ. लड़कों की टीम के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं इसी के साथ, 210 हो जाते हैं. देखते हैं अभी कौन है. हेलो.
6: हेलो मैम, गुड इवनिंग.
1: गुड इवनिंग. फाइनली आशु जी भी आ गई हैं. इतनी देर से आने
6: के बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं मैम.
1: लेकिन अंताक्षरी शुरू होने के लिए लड़कियों का इंतजार किया जा रहा था, आप आई तो देर से ही है. चलिए यह से गाना सुनाइए.
6: यह से मैम
1: जी.

0: ये महफिल तेरे काम की नहीं।
1: क्या बात है, ऐसे कहेंगे तो हम कहीं चले जाएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखते हैं कहाँ आ गया वापस से। चलिए आवाज सुनते हैं किसकी है। हेलो,
2: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार, शुभ संध्या, कैसे हैं अनिल जी? काफी दिन बाद दिख रहे हैं, कहाँ आप विलुप्त थे?
2: एक्चुअल मैं थोड़ा बाहर चला गया था। तो मैम ये अंताक्षरी ही है ना?
1: जी जी, कहाँ से गाना सुनाना है आपकी टीम को?
2: सबसे
1: कहाँ मेरे काम की नहीं
2: से?
1: हाँ से, हाँ से,
2: ठीक है, मैं कहाँ से सुना रहा हूँ?
1: नहीं, हाँ से, हाँ से, ये दुनिया ये मैं,
2: हाँ से,
1: हाँ हाँ, मेरे काम की नहीं, हाँ जी,
2: हाँ से, ठीक है, मैं सुना रहा हूँ।
3: हुए है तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत फिर भला मानो। हुए है तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो।
2: धन्यवाद।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा सा गाना आपने सुना दिया, मज़ा आ गया सुन के, थैंक यू सो मच। तो भाई अनिल जी ने बहुत ही प्यारा सा गाना सुनाया है, भला मानो या बुरा मानो। तो चलिए अब मानेंगे तो आप ही लोग के साथ, फिलहाल के लिए आपके कॉल को मौका देते हैं। हेलो
4: हेलो मैम, ना कचरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया सिंगार, सिर की कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो मैम आपके लिए।
1: ओहो, क्या बात है, थैंक यू सो मच। वैसे ये गाना मुझसे ज्यादा आप पे सूट करेगा। एनिवर्सरी वाला लुक मेरे दिमाग में अभी भी है।
4: मैम वो एक दिन है बस, बाकी आप तो 300 दिन सदा बाहर वाली मैम।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गीता जी ने गाना सुना दिया और चलिए देखते हैं अब कौन है हमारे साथ। हेलो
5: हेलो, नमस्कार, मैं अमित बोल रहा हूँ।
1: अमित कैसे हैं? गुड इवनिंग, क्या हाल है?
5: मैं ठीक हूँ।
1: अमित आपको गाना सुनाना है ह से। हेलो
5: हेलो,
1: हाँ अमित आपको गाना सुनाना है ह से।
5: अरे तुम पूरा काम नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती, आंसू खुशी के दम पे होते हैं कि जैसे इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती।
1: ओके, तो आपने दिया अमित, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है अमित के यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही थी और ता आ गया। चलिए देखते हैं टीम बी के हो जाते हैं पॉइंट्स, क्या कहते हैं, 270। क्या बढ़िया खेल रही है टीम बी, क्या मज़ेदार खेल रही है, मज़ा आ गया। तो चलिए देखते हैं ता से गाने के लिए कौन दावेदार है। हेलो
6: हेलो
1: जी, अविनाश जी, ता से गाना सुनाना है आपको।
6: जी ठीक है, तो सफेद स्वागत है। तुम दिल की धड़कन में रहते

0: जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो
1: क्या
0: ला ला ला ला मेरी इन सांसों में रहते हो कहते हो
1: चलिए अगले कॉलर को देते हैं मौका और आ जाता है हा और हा से गाने के लिए कौन है हमारे साथ सुनते हैं आवाज।
2: हेलो मैम।
1: हेलो प्रीति जी, हा से गाना हंसते हंसते सुना दीजिए।
3: हम काले चलियारा ठंडी ठंडी नहर के किनारे हमका मोटर मिला ठंडी नहर के किनारे मोटर पे बैठेगी गोरी कि धक्का मारेंगे छोरी। हम काले चलियारा ठंडी ठंडी नहर के किनारे बाबे।
1: अच्छा मोटर ठंडी नहर के किनारे नहीं आपके घर के सामने ही दे दे तो नहीं चलाएंगे?
2: मैम अपने आप बना के गा सकते हैं।
1: क्या तो प्रीति जी ने बड़ा अच्छा सा गाना सुनाया। चलिए देखते कौन है हमारे साथ अगला कॉलर राज लगाने के लिए। हेलो
4: हेलो
1: हेलो
4: जी, मैं
1: गाना है ये जय से गाना है।

0: क्या बात है, बिल्कुल सही आपने गाया और मन नाचेगा ही ऐसे अगर आप गाएंगी। थैंक यू सो मच। तो चलिए अनु के बाद अगले कॉलर को मौका देते हैं। अब आज ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बस मैं कॉल पे कॉल लेती जाऊँगी और आप लोग को पॉइंट्स दिलाने की बात करूँगी। तो चलिए देखते कौन है सर से गाने के लिए हमारे साथ। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, वापस से अनिल जी की आवाज़ हम सुन पा रहे हैं। सर से गाना सुनाइए।
1: किससे किससे?
0: सर
1: सर से
0: जी।
1: अच्छा, बीच में सर आए तो कोई दिक्कत नहीं है ना?
0: नहीं, सर से गाना शुरू होना चाहिए।
1: सर से सीधे सुनाया जाए?
0: जी, सर से शुरू होना चाहिए गाना।
1: नहीं, शब्द जरा फिर से बोलिए।
0: अक्षर है सर, सर
1: है
0: सा, हाँ,
1: सा
0: से सपेरा।
1: अच्छा, सा से सपेरा, सा से। ठीक ठीक ठीक, मत सुना। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी।

0: जाने तुम कब आओगे। धन्यवाद।
1: क्या बात है, बहुत सुरीला और बहुत दिल से गाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ना जाने तुम कब आओगे, जब आप बुलाएंगे हम तभी आ जाएंगे। और गर्ल्स से गाने के लिए देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो।
2: हेलो मैम।
1: आशु जी वापस हमारे साथ हैं, गर्ल्स से गाना सुनाना है, बिल्कुल तैयार हो जाइए। क्या सुनाएंगी?
2: गा से गोरी है कलाइया खिला दे मुझे हरी हरी चूड़िया।
1: गोरी है कलाइया गाया जा चुका है।
2: मैम
1: गा चार पांच बार आ चुका है, इसलिए गा से गाने थोड़े कम बचे।
2: मैम तुम दूसरा सुना रहे।
1: बहुत
2: बुरे रंग पे ना इतना गुमान कर, बुरा रंग दो दिल में ढल जाएगा। तू समा मैं हूँ परवाना, तू समा हूँ मैं हूँ परवाना, तुझसे पहले मैं मर जाऊंगा। गुरे रंग पे ना इतना गुमान कर।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो आशु जी के इस गाने के साथ ये राउंड होता है यहीं पे समाप्त। तो लड़कियों के हैं 270 पॉइंट, लड़कों के इसी के साथ हैं 330 पॉइंट। क्या बढ़िया खेल रहे हैं लड़के और साथ ही में लड़कियां भी। लड़कियां थोड़ा देर से आई हैं तो इसलिए थोड़ा पीछे चल रही है, अभी दौड़ लेंगी एकदम, तो आगे भी हो सकती हैं या फिर पीछे भी रह सकती है, तो गेम में आगे पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए चलिए एक छोटे ब्रेक पे चलते हैं, उस ब्रेक को एंजॉय करते हैं और वापस आते हैं और शुरू करते हैं वर्ड राउंड। लेकिन वर्ड वो होंगे जो मैं दूंगी। हाँ मैं दूंगी, नहीं मैं नहीं दूंगी। वर्ड वो होंगे जो आप एक दूसरे को देंगे। जी हाँ, चैट रूम में लड़कियों की टीम के मेंबर लड़कों को वर्ड देंगे, जो सबसे पहला वर्ड चैट रूम में आएगा उसी को मैं लड़कों को या लड़कियों को उछाल दूंगी। फॉर एग्जांपल चैट रूम में नागेश्वर ने वर्ड दिया गुल, और वो लड़कियों की टीम को मैं बता दूंगी कि भाई गुल से गाना है, तो लड़कियां कॉल करके फटाक से गाना सुना सकेंगी। ऐसे लड़कियों की टीम में प्रीति जी ने दे दिया वकील, तो वकील से गाना लड़के गाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, वकील हो, फूल हो, किताब हो, पेड़ हो, डाली हो, सब शब्दों से थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, क्योंकि दोनों ही टीमों को एक दूसरे को फंसाना है तो शब्द खतरनाक से खतरनाक लाना है। लेकिन भाई गाना होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बाद में आप कहें कि मैम इस शब्द से गाना तो नहीं था, मैंने सोचा लाओ दे दूँ कुल्हाड़ी, तो सोचा कुल्हाड़ी से दे दूँ गाना, लेकिन गाना तो कुल्हाड़ी से था ही नहीं। तो ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए कि दोनों टीम सोचती ही रह जाए और गाना ही ना हो। हाँ गाना होना चाहिए, इतनी आपकी पकड़ हो तब आप शब्द दीजिएगा। हाँ खतरनाक शब्द आप दे सकते हैं। तब तक के लिए चलिए एक छोटे से ब्रेक की ओर चलते हैं। उस ब्रेक में आप भी ले लीजिए थोड़ा ब्रेक, खा पी लीजिए, पानी पी लीजिए, क्योंकि आगे थोड़ा मशक्कत और करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ बेहतरीन सुन रहे हैं तो बिल्कुल भूलिए मत, आप सुन रहे हैं आरजे बीना के साथ शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला।

0: बिल्कुल, मैं तो यही हूँ और किसी को कहीं जाने भी नहीं देने वाली, क्योंकि आपको जाने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो शब्द की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं किसकी टीम ने किसको शब्द दिया। तो मझधार, तो लड़कों की टीम से शब्द अनूप जी ने दिया है सबसे पहले मझधार। तो जो मझधार में है वो फटाफट से कॉल कर दे। तो फिलहाल कॉल लड़कियों का आना चाहिए, लड़कियों फटाफट से कॉल करो और गाना सुनाओ मझधार से। क्या बात है, क्या बात है, देखते हैं कौन सुनाने वाला है। हेलो,
1: हेलो मैम,
0: आशु जी मझधार।
1: बिल्कुल मैम, करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटके बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी।
0: क्या बात है। तो लड़कों की टीम को कोई शब्द आप देना चाहेंगे? चलिए, टीम का शब्द आ चुका है मसीहा। थैंक यू सो मच आशु जी। तो लड़कों को गाना गाना है मसीहा से। अनूप जी कह रहे हैं इसी गाने की उम्मीद थी। फिलहाल ये बताइए मसीहा कौन बनने वाला है लड़कों का, कौन गाना सुनाने वाला है मसीहा से। हेलो।
2: हाँ मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कैसे हैं? वापस से
2: बोल रहा हूँ।
0: वापस से आपका स्वागत है, आवाज़ में आपकी पहचान गई मुमताज जी। सुनाना है मसीहा से गाना, मसीहा से गाना सुनाना है।
2: मसीहा मेरे दुआ दे मुझे, करूँ बचा दे मुझे, कहीं ना सुकून है कहीं भी ना करार है, मिला मेरा साथी है, ये तो एक बार है जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम माँ से।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो कितना अच्छा गाना सुनाया, मतलब मुमताज़ जी ने मज़ा आ गया, मतलब शब्द को ऐसे पकड़ा और एकदम लगा दिया। कौन सा गाना है भाई, कौन है गाना सुनाने, मतलब शब्द अगला कौन सा है? अगला शब्द हम ले लेते हैं नागेश्वर जी का। नागेश्वर जी ने दिया है आंगन। तो लड़कियां आंगन से गाना सुना सकती हैं, लड़कियां आंगन से गाना सुना सकती हैं। वैसे तो आंगन में बैठना एक हॉबी है लड़कियों की। देखते हैं आंगन से गाना सुनाने के लिए कौन आता है। हेलो।
3: हेलो,
0: आंगन से गाना सुनाना है अनु
3: जी। मैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में लंबी उसका भी बड़ा नाम है, छोटे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
0: क्या बात है, क्या बात है। फिलहाल मेरा तो काम यहीं पे है, अगर मैं चली जाऊंगी तो कौन शो करेगा, मेरा काम यहीं है। थैंक यू सो मच। और सबने भाई बढ़िया गाना सुनाया अंगना से, और अंगना अंगना में बैठी हैं लड़कियां, क्या मस्त गाने गा रही हैं। और इसी के साथ लड़कियों के पॉइंट हो जाते हैं 340 और लड़के हैं 380 पे। चलिए देखते हैं अगला शब्द लड़कियों की टीम की तरफ से लड़कों को क्या मिलता है। क्या लड़कियां आप लोग शब्द भी नहीं दे रहे हैं? अदावत, अदावत शब्द थोड़ा सा मुझे लग रहा है मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, अदालत होगा, क्योंकि प्रीति जी अदालत शब्द दे सकती हैं क्योंकि इनके घर में वकील ही वकील है, रोज अदालत लगाती होंगी। तो लड़कों की टीम गाएगी गाना अदालत से। चलिए देखते हैं कौन है जो अदालत में खड़ा हो के मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है। फिलहाल अर्जबीना यहाँ पे जजमेंट करने के लिए तैयार है। आए जज वाली फीलिंग आ रही है आज तो मुझको, हो क्या कहने, क्या कहने, ऐसी असलियत में तो जज बनना नहीं है, यहीं पर जज बन के एकदम बढ़िया फीलिंग ले ले रहे हैं। अनु ने सॉन्ग गाया, सॉन्ग तो मैंने सोचा ही नहीं था, क्यों नहीं। अनु ने जो गाना गाया वो तो बिल्कुल सही था, आंगन को ही अंगना बोल देते हैं, मात्रा वात्रा के इधर उधर चल जाता है। चलिए अदालत से गाना सुनाइए नागेश्वर जी। खाली चैट रूम में खाली मैसेज करते हैं, कभी आवाज़ नहीं सुनाई दी आपकी आज तक। मुझे तो लगता है आवाज़ आपकी मतलब बहुत सुरीली है और आप सुनाना नहीं चाहते कि कहीं नज़र ना लग जाए, आपकी पत्नी ने आपको कसमें दी होंगी। तुमको मेरी कसम, कभी किसी को अपनी आवाज़ मत सुनाना। तो अदालत से गाना है लड़कों को गाना, चलिए देखते हैं कौन सा लड़का लगाने वाला है सुर। आहा, सब लड़कों की अदालत कड़ी हो गई है। नहीं मैम ये सही है क्या? अदावत, अदावत है भाई, अदावत, अदावत। तो प्लीज़ लड़के कॉल करें, अदावत से सॉन्ग है अदावत। हाँ मुझे भी याद आ गया, मुझे भी आ गया। अब मैं गाऊँ, गा ना तू कहीं। मेरा फेवरेट म्यूजिक बज रहा है, मैं थोड़ा गा लेती हूँ जब तक आप लोग कॉल कर रहे हैं। रात दिन करना लंबे, फिलहाल गाना आ गया, मैं गा ही नहीं पाऊँगी। हेलो हेलो हेलो हेलो, लड़कों की टीम से मुझे लग रहा है कॉल भी आया और आवाज़ भी नहीं आ रही। हेलो हेलो
4: चुपके से रात की चादर तले।
0: हेलो
5: हाँ मुमताज अंसारी बात कर रहा
0: हूँ। मुमताज जी गाना गाना है अदावत से, अदावत
5: अदावत। अदावत बस दिमाग में आ रहा है, 2 मिनट का टाइम दे सकते हैं?
0: जी जी हेलो, बिल्कुल आप सोचिए सोचिए। अदावत

0: अदावत ने मारा, कभी तो किसी की अदावत ने मारा। फिर मैडम चल जाएगा
1: ये गाना, मतलब एक लाइन आपको पूरी गानी पड़ेगी, ये तो बहुत मतलब मुखड़ा पूरा नहीं हुआ।
0: कभी तो किसी की,
1: हेलो हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। और चलिए देखते हैं कौन है अदावत से गाना सुनाने वाला। हेलो,
2: मैं अनूप मिश्रा बोल रहा हूँ।
1: ओ अनूप जी, आए हैं शुरू में और गा रहे हैं अंत में, चलिए कोई बात नहीं, अदावत से गाना सुना दीजिए।
2: मैम ये ऐसे है, क्या नाम है,
0: कभी तो किसी की अदावत ने मारा, कभी तो किसी की मोहब्बत ने मारा, शराफत अली को शराफत ने मारा, शराफत अली को।
1: मुमताज जी यही गाना गाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन आपने इसको संपन्न कर दिया, क्या बात है, क्या दोस्ती
2: आप लोगों की। अगला जो वर्ड है मैं दे चुका हूँ उसमें, बालिस्ट।
1: बालिस्ट, ओके
2: बालिस्ट जी,
1: थैंक यू। तो भाई लड़कियों की टीम को गाना से गाना गाना है बालिस्ट, ऐसे लग रहा है कि कोई योद्धा वद्धा वाला सीन चल रहा है। कोई बात नहीं, बालिस्ट है हमारी लड़कियां और बाल बाल बालों के साथ बालिस्ट हैं। बालिस्ट किसको बोलते हैं, वैसे तो उसको बोलते हैं ना तंदुरुस्त को, तुम बालिस्ट हो, तुम्हारे अंदर बल है। तो लड़कियों आपके अंदर बल है, अपने बल का प्रयोग करो और आज जीत के दिखा दो। और इसी के साथ लड़कों के पॉइंट हो जाते हैं 430, जैसे 440 होते तो मज़ा आता है बोलने में, लेकिन चलिए 430 हैं तो इसी 30 के साथ ही हम मुस्कुरा लेंगे। लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, आहा क्या बात है। चलिए देखते हैं, बालिश से गाना तो मुझे तो नहीं आता भाई, बहुत क्लियर मैं बता रही हूँ। मुझे पता था आप लोग को जब दूंगी ना तभी मजा आएगा, मैं शब्द दूंगी तो थोड़ा मेरा दिल कहेगा नहीं नहीं यार लड़कियां हैं, नहीं नहीं लड़के हैं, रहन दो इतना कठिन नहीं। लेकिन मुझे पता है जब आप लोग की बारी आएगी तो हार जीत का मुकाबला होगा, मजा आया। अब मैं यही करूंगी, आप ही को वर्ड देने के लिए बोलूंगी। चोरी से चुपके से चांद की चादर तले, वैसे चांद की चादर तले तो बचपन में बहुत सोए हैं लेकिन आजकल तो भाई सब घर में सोते हैं एसी चला के, एसी की चादर तले। लड़कियों बालिश्ट गाने के लिए तैयार हो जाओ, मुझे नहीं लगता किसी लड़की को आता होगा। गूगल कर रही है सब गूगल कर रही है।

0: कौन है भाई? क्या लड़कियां आज नाक कटवा देंगी क्या मेरी, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई तो आ जाओ, बालिस्ट बालिस्ट बालिस्ट, बाल से गाना गा सकते हैं क्या? नहीं, अब आप गाना मत सुनाइए, अब इंतजार करते हैं क्योंकि मैंने डेडलाइन टाइम की दी नहीं थी, तो इसलिए मैं आपको गाने के लिए नहीं कह सकती। हाँ, अंत में हार जीत बताने के बाद तो मैं आपसे सुनूंगी जरूर। बाल से गा दें, बाल भी तो अच्छा शब्द है। ज्यादा देखिए, प्रीति जी आप पे नागेश्वर जी ने कहा कि आप हार गईं, अब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, सारी अदालत लगाइए और शब्द निकालिए और गाना सुनाइए।
1: बाल
0: यार, बाल और ईस्ट दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों को मिलाने की क्या जरूरत है अनूप जी, ये गलत बात है। बाल से गाना सुनाने दीजिए, ये सब कुछ नहीं होता है, थोड़ा मतलब रिलैक्स करिए, समझिए इतना तो, मतलब दोस्तों के साथ घर में भी आप कितनी स्त्रियां हैं, सोचिए कि मतलब थोड़ा सपोर्ट। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम देश में, तो ऐसा एम्पावरमेंट की क्या मतलब

0: अब तो मुझे भी लग रहा है कि लड़कियां नहीं गा पाएंगी। दिल मेरा भी धड़क रहा है,
1: क्योंकि मुझे नहीं आता भाई। मैं तो बहुत साफ, मैं तो पहले ही हार मान जाती कि भाई मुझे नहीं आता।
2: यारा रात को दिन करना।
1: तो इसी के साथ मैं आज की विजेता टीम का नाम घोषित करना चाहती हूँ। आज की विजेता टीम है हमारे लड़कों की टीम, जिन्होंने शुरुआत में ही आके सबसे पहले परचम लहरा दिया था, किसी ने एक्स्ट्रा गाना गा दिया था और किसी ने आके चैट रूम में शायरी फरमा दी थी। तो मतलब जो लोग स्टार्टिंग से एफर्ट लगाएंगे तो ऑब्वियसली जो शुरू से दौड़ेगा वो अंत तक अपनी जीत जो है वो तय कर लेगा। देखते कॉल आ रहा है लेकिन देखते हैं ना, सुन लेते हैं। हेलो
3: हेलो,
1: हाँ अनु
3: जी।
1: अनु आपको गाना सुनाना है, बालिश्त से आता है आपको?
3: बालिश्त से गाना है, मैं बाली से नहीं गा सकती।
1: नहीं, बाली वाली से नहीं गाना है, मैं भी बाल कह रही थी, कह रहे हैं बाल से नहीं गाना। बालिश्त
3: एक बालिश्त से
1: बस आराम से
3: एक गाना मुझको आता है पर वो मुझको अच्छे से नहीं याद है, बहुत टूटा फूटा याद है। और वो गुलजार का लिखा हुआ गाना है ये तो मुझे याद है।
1: जब शब्द नहीं याद है तो क्या ही याद है।
3: पूरे ऐसे बालिश में साथ आने में जान भी कितनी देर लगा दी आने में।
1: भाई मैंने सुना नहीं है गाना, नहीं मैं गा के पूरा कर देती।
3: मैंने भी गाना नहीं सुना है पर ऐसे थोड़ा मतलब बहुत दिन हो गया सुने तो थोड़ा सा याद है, ये याद है कि ये गाना गुलजार ने लिखा है।
1: अच्छा, फिलहाल मुझे ये भी नहीं पता था। चलिए कोई बात
3: नहीं, ये गाना गुलजार ने लिखा है।
1: लेकिन इसके लिए अब मैं पॉइंट नहीं दे सकती, कोई बात नहीं। तो चलिए इसी के साथ मैं विजेता टीम को अनाउंस करती हूँ। अनूप जी, क्या बढ़िया आपने शब्द दिया। फिलहाल इस शब्द से गाने के बाद भी लड़कियों की टीम जीत नहीं पाती क्योंकि इनके पॉइंट्स काफ़ी कम थे और इसके लिए मैं थोड़ा दुखी हूँ। लेकिन हाँ, इस बात के लिए कहूँगी कि लड़कों की टीम ने बहुत अच्छा खेला, लड़कियाँ भी आईं, थोड़ा देर से आईं। अगर ये थोड़ा पहले आ गई होती तो स्टार्टिंग से ही पॉइंट अच्छे अर्जित हो जाते। फिलहाल चलिए सुनते हैं आवाज़ किसकी है हमारे लिसनर में। हेलो
4: मैम, ये बताइए अगर अनु का गाना सही होता तो लड़कियों के पॉइंट्स कितने होते?
1: अगर अनु का गाना सही होता तो भी लड़कियां नहीं जीतती, मैंने अनाउंस कर दिया।
4: चलिए मैम, अनु ने प्रयास अच्छा किया था, गाना वही था लेकिन वो पहुंच नहीं पाई वहां तक। गाना वही था, मतलब ये जो बालिश्त शब्द मैंने दिया, जैसे कहते हैं ना कि एक दिशा नाप लो, ये बालिश्त शब्द वो था।
1: एक बालिश्त
4: ये वो शब्द था। सुनिए, और ये जो गाना था ये गुलाम अली साहब की गजल है, एक खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, एक पुराना खत खोला अनजाने में। इसमें एक लाइन है, इसमें एक गजल की जो स्टैंजा है, पहला स्टैंजा, कि

0: तुम्हारी आने में खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, अफसाने में, अफसाने में।
1: क्या बात है।

बहुत बढ़िया खेला। और इसी के साथ भाई मैं लेती हूँ इजाज़त और अनाउंस कर देती हूँ भाई लड़कों की टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगी। और यस, आज के धुरंधर हमारे लड़के हैं, तो चलिए सुनते हैं धुरंधर्स के लिए ये प्यारा सा गाना, एंजॉय करिए। और इसीलिए कहते हैं ना कि जान से गुजरते हैं, इसीलिए आपसे हम इतना प्यार करते हैं। तो इसीलिए लड़कों की टीम से हर एक मेंबर जो है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो खुद लड़के हो, बहुत प्यार करते हैं क्योंकि ये लोग जान से गुजर जाते हैं जीतने के लिए। क्या खेला, क्या खेला, मज़ा आ गया। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना रेडियो स्टेशन 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

So very very good evening and welcome in your show Farmaishi with your RJ Simple who is not so simple और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपने आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। कैसे हैं आप सब, क्या है हालचाल और क्या है आज की शाम में बहुत खूबसूरत और चटपटी बात, मुझे जरूर बताना। लेकिन उसके पहले किसी का कहना है कि सुरों की महफिल फिर से सजाने वाली है। अच्छा, सुरों की महफिल फिर से सजाने वाली है, हर दिल की धड़कन अब गुनगुनाने वाली है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अपनी प्यारी आवाज की जादूगर आरजे सिंपल का, जो हर पल को यादगार बनाने वाली है। आहा, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेश त्रिपाठी जी। और जिन लोगों ने अभी तक अपनी संगीत वाली फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, भाई किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, तो मैं आ चुकी हूँ, तो अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए और उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए। उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों चांद। ओह माय गॉड, स्टे ट्यून्ड एवरीवन एंड वेलकम इन योर शो। महेंद्र राजस्थान से, नागेश्वर धाकर, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, अभिराज पांडे एनसीआर दिल्ली से, सोनिया तिवारी गोंडा से, आवास विकास गोंडा से, रवि अनिल वर्मा जी सैदापुर से, जुगल किशोर वर्मा एमपी से, राजू विश्वास सीतापुर से, मुस्तफा साउदी से, उषा कश्यप गोंडा से, रितेश साहू गोंडा से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, मालवे नगर से, राजेश सिंह जी धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, कार्तिक कश्यप और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा अंतरा राजपूत गोंडा से, आप सभी का स्वागत है। प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, रितेश साहू स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो, राजेश पांडे, शशि सिंह जी और इसी के साथ में अनिल वर्मा जी सैदापुर से, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, चांदनी गोंडा से, इम्तियाज अहमद गोंडा से, रईस जी गोंडा से, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो में। नाउ लेट्स गो टू पहले वाली फरमाइश की तरफ। और दोस्तों, पहली फरमाइश हमारे पास में जानते हैं किसकी है, महेंद्र की, राजस्थान से। और उनका कहना है कि संगीत की इस हसीन शाम को अपने खास दोस्त के नाम ये शानदार गाना समर्पित है मेरे प्रिय मित्र प्रमुख कुमार को, जो कि हैं लुधियाना से। गाना है मुझको याद सताए तेरी, पिक्चर है हेरा फेरी, स्वर एवं संगीत है हिमेश रेशमिया के, बोल हैं समीर के और स्टार कास्ट है अक्षय कुमार, रिमी सेन। यादों का क्या है, वो तो आती ही जाती हैं, पर दोस्त प्यारे हो तो हर याद मुस्कान ले आती है। ये कहना है महेंद्र का राजस्थान से। और एंजॉय करते हैं ये वाला गाना और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को और अपनी जज्बातों को साझा करने के लिए, एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन का ये खास सेगमेंट फरमाइशी, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में।

फरमाइश पर नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की, उनको सुनना है गाना मैं निकला गड्डी लेके। ओह माय गॉड, वंस अगेन सुपर डुपर डुपर डुपर हिट सॉन्ग। ऐसा लग रहा है कि मूड को सुपर डुपर हिट बनाने वाला है ये वाला गाना, और ऐसा लग रहा है कि हेल्थ का लेवल लो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आजकल चल रहा है ना वायरल वायरल। ओह माय गॉड वायरल।

गॉड, हमने एंजॉय किया है उदित नारायण की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा गदर मूवी का धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। और उनका कहना है कि कुछ गाने दिल को छू जाते हैं और कुछ यादें फिर से जगा जाते हैं। मैं निकला गड्डी लेके सुनवाने के लिए दिल से शुक्रिया आरजे सिंपल, आपकी आवाज और आपकी पसंद हमेशा यूं ही दिलों को छूती रहे। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। परी तिवारी बालपुर गोंडा से, नागेश्वर धाकड़ इंडिया से, स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है अभिराज पांडे की NCR दिल्ली से, उनको सुनना है गाना लाखों का सावन जाए। सो एंजॉय करते हैं रोटी कपड़ा और मकान मूवी का ये वाला नगमा लता मंगेशकर जी की आवाज में। ओल्ड इज गोल्ड नगमा सिर्फ और सिर्फ अभिराज पांडे की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

लता जी की आवाज में रोटी कपड़ा और मकान का ये नगमा हमने एंजॉय किया है अभिराज पांडे की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सोनिया तिवारी की। सोनिया तिवारी को भी सुनना है ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, वो भी लता मंगेशकर जी की आवाज में। आंखें मूवी का मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। सो एंजॉय करते हैं एक और इश्क प्यार मोहब्बत की खासियत को बताने वाला गाना।

तिवारी का कहना है कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। आरजे सिंपल जी, इस खूबसूरत गीत के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपकी आवाज ने इस सदाबहार नगमे को और भी यादगार बना दिया है। दुआ है कि आपकी मुस्कान और आपकी आवाज यूं ही हर श्रोता के दिल को छूती रहे। दिल से शुक्रिया आरजे सिंपल। सो थैंक यू सो मच सोनिया तिवारी। ये फरमाइश थी सोनिया तिवारी की। और अगली फरमाइश है आवाज विकास गोंडा से रहे। एंड यू नो व्हाट दोस्तों, आवाज विकास गोंडा से झनकार बीट्स के साथ में रवि को सुनना है के का नगमा गाना सॉन्ग तू आशिकी है। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा रवि के।

एंजॉय किया है झनकार बीट्स के साथ में केके का ये सॉन्ग रवि की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना मेरे नसीब में तू है कि नहीं और तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। और ऑब्वियसली ये हम क्या जाने, ये वो ही जाने जिसने लिखा है सबका नसीब। सो क्या आप लोग भी अपने आरजे सिंपल के और इस गाने की बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सनी पांडे आपका स्वागत है और मिश्रा जी गोंडा से वेलकम इन योर शो। इसी के साथ में अभिराज का कहना है एनसीआर दिल्ली से, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। वाह, बहुत ही खूबसूरत सी लाइंस थी और एंजॉय करते हैं ये वाली फरमाइश लेकिन रेट्रो झनकार डिस्को मिक्स वर्जन में। स्टे ट्यून एवरीवन। इतना ज्यादा मिक्सअप हो गया है कि मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया है।

गाना अच्छा लगा। क्यों सही कहा ना मैंने अनिल वर्मा जी। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। जग्गू दादा को मींस जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना रफू चक्कर पिक्चर का किसी पे दिल अगर आ जाए। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर मींस जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। बेशुमार चाय पीते तो भी निखर जाते, बेशुमार चाय पीते तो भी निखर जाते, दो घूंट मोहब्बत क्या पी ली बीमार हो गए। ओह हमने तो मोहब्बत की बॉटल पी है हमसे।

मंजूरे खुदा होता है। जग्गू दादा की फरमाइश पर, जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर हमने एंजॉय किया है ये वाला नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले अभी मेरे लिसनर ने जो लिखा था उससे मुझे भी कुछ याद आ गया, तो मैं भी अर्ज करना चाहूंगी। कड़क चाय से तो रोज दिन सवर जाता था हमारा, एक मीठी नजर क्या मिली हम बिखर गए। बेफिक्र होकर सो जाया करते थे रात भर, उनके ख्वाब क्या आ गए नींद से ही हाथ धो बैठे। सरदर्द भी चाय की एक प्याली से भाग जाता था, ये इश्क का दर्द क्या लगा सारे हकीम हार गए। और दोस्तों की महफिल में तो रोज मुस्कुराते थे, उनकी गली में क्या गए उदासियों के शिकार हो गए। कड़क धूप में भी कभी रंग फीका ना पड़ा, उनकी जरा सी बेरुखी क्या देखी जर्द पड़ गए। और अकेले थे पूरे शहर के शहंशाह बने फिरते थे, ये बहुत खूबसूरत लाइन है। अकेले थे पूरे शहर के शहंशाह बने फिरते थे, उनके उनके नाम दिल का उनके नाम दिल क्या किया एक पल में फकीर हो गए। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश है राजू विश्वास की, सीतापुर से उनको सुनना है। हम है कमाल की मूवी का गाना सुन रे सजन। सो एंजॉय करते हैं अलका याग्निक और एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टेडियम रहने वाले

दो बदन, ओह माय गॉड, मुस्तफा जी की अगली फरमाइश है दोस्तों। ये तो फरमाइश थी राजू विश्वास की सीतापुर से, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा था, बरसात वाला नगमा था, रोमांस वाला नगमा था और बहुत ही प्यारा सा लव डब सॉन्ग था। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुस्तफा जी की, सऊदी से उनको सुनना है गाना भोली भाली लड़की, खोल तेरे दिल के प्यार वाली खिड़की। ओह माय गॉड, अच्छा जी, भोली भाली लड़की, खोल तेरे दिल के प्यार वाली खिड़की। सो एंजॉय करते हैं कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में 90s का ये सुपर डुपर हिट नगमा मुस्तफा जी की फरमाइश पर, जो कि है सऊदी से, और देखते हैं आखिर क्या है इस गाने में। फिलहाल ये गाना लग तो बहुत अतरंगी रहा है, और अगर अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में है तो होना तो बहुत खूबसूरत चाहिए। नाउ लेट्स

मोहब्बत यही तो उम्र है। हमने एंजॉय किया ये वाला नगमा मुस्तफा जी की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगली डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश है उषा कश्यप जी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना बलम केसरिया भीगा सावन है। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में सिर्फ और सिर्फ उषा कश्यप की फरमाइश पर। बहुत सारी फरमाइशें हैं दोस्तों, तो फटाफट से अब अपनी फरमाइशी की महफिल की ट्रेन की रफ्तार को हमें भगाना पड़ेगा।

बलम के सरिया, कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये नगमा उषा कश्यप की फरमाइश पर। अगली फरमाइश हमारे पास में है रितेश साहू की, गोंडा से उनको सुनना है गाना थम के बरस। सो एंजॉय करते हैं अलका याग्निक की आवाज में ये सुपर डुपर हिट लव वाला सॉन्ग और रेन वाला सॉन्ग, आई मीन सावन स्पेशल सॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ रितेश साहू की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

तक करो इंतजार, हमने एंजॉय किया है ये वाला नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, उनको सुनना है गाना सावन का महीना पवन करे शोर। एंजॉय करते हैं ये नगमा मुकेश जी की और लता मंगेशकर जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में।

0: शोर,
1: पवन करे शोर,
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर,
0: हाँ।

में ऐसी जैसे बनवा नाचे मोर। हमने एंजॉय किया ये नगमा, बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की। मालवीय नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है गाना तू प्यार तू प्रीत। सो एंजॉय करते हैं किशोर कुमार और लता जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड स्कूल वाला नगमा। और दोस्तों इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो मिलते हैं 9 बजे। जिन लोगों ने पेट पूजा अभी तक नहीं किया है फटाफट से पेट पूजा करके आना, फिर एंटरटेनमेंट में और सारा ढेर सारा मजा आएगा। स्टे ट्यून एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो गीता श्रीवास्तव जी फ्रॉम गोंडा। स्टे ट्यून्ड, नमस्ते, वेलकम।

0: पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
2: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क पर

0: परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला। पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
0: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
2: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
3: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी के एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग और वहाँ इनको लोकल एक स्पोर्ट मुहैया करवाई।
0: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
4: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नरेटिव यहाँ एक्सपोज करना चाहते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई दो दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा, जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। ये ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ये भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रुपए पर बंद हुआ।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रेयांशी वली शेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो ना जाए। तो एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। ये फरमाइश थी मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की। और बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में दोस्तों धर्मेंद्र मोहन की। धर्मेंद्र मोहन को आवास विकास गोंडा से सुनना है गाना तक झूम सो एंजॉय करते हैं मृत्युदाता पिक्चर का ये नगमा अभिजीत भट्टाचार्य और पूर्णिमा जी की आवाज में धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर।

थे धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से। अगली फरमाइश हमारे पास में है कार्तिक कश्यप की। कार्तिक कश्यप को सुनना है गाना तड़पाओगे तड़पा लो। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला सुपर डुपर हिट नगमा सिर्फ और सिर्फ कार्तिक कश्यप की फरमाइश पे जो की है गोंडा से। आई रियली लव दिस सॉन्ग। थैंक यू सो मच।

लता जी की आवाज में हमने एंजॉय किया। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा कार्तिक कश्यप की थी ये फरमाइश गोंडा से। अगली फरमाइश हमारे पास में है सबीहा की गोंडा से। सबीहा को सुनना है गाना, तुझे हाथ पकड़ के घुमाऊं तू गोल गोल घूम। सो एंजॉय करते हैं ये अतरंगी सा नगमा हमारी अतरंगी सी सबीहा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

0: सबीहा की फरमाइश पर। अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की पटेल नगर गोंडा से और नागेश्वर धाकड़ की। निशा को पटेल नगर गोंडा से और नागेश्वर धाकड़ को इंडिया से सुनना है गाना पागल शायर। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट नगमा। खाबा विचा जाऊंगा,
1: खाबा विचा जाऊंगा।
0: आई रियली लव।

सो हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा नागेश्वर धाकड़ और निशा की फरमाइश पर जो की है। गोंडा से बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है राजेश पांडे की। राजेश पांडे को सुनना है गाना दैया दैया दैया रे। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना और इसी के साथ लेती हूँ अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारे प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, अपनी खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चेक करवाने वाली आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। लव यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। ये फरमाइश है राजेश पांडे।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब?
5: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी भाई, थोड़ा सा लेट हो गए हम 5 मिनट, उससे लिए क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। अपने खजाने को रखिएगा तैयार, इस प्यारी सी गजल के बाद आपसे करते हैं मुलाकात। जी हाँ, आज कालीन प्रोग्राम है, आपका नंबर वही है 63 93 31 64 29। आपसे मिलते हैं इस खूबसूरत सी गजल के तत्काल पश्चात।

0: जी हाँ। नमस्कार। शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप इस्तकबाल। आप सभी को, आप सुन रहे हैं रेडियो गणस्थली 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल। और आज का प्रोग्राम भाई तो आपके नाम होता है, ये तो आपकी महफिल है, दिल की महफिल सजी है, चले आइए। तो आपकी ही महफिल में आपको आवाज दे रहे हैं, दर्द का सांस दे रहा हूं तुम्हें, दर्द का सांस दे रहा हूं तुम्हें, दिल के सब राज दे रहा हूं तुम्हें, ये गजल गीत सब बहाने हैं, मैं तो आवाज दे रहा हूं तुम्हें। जी हाँ, तो हमारी प्यारी सी आवाज हमारे प्यारे से श्रोताओं तक लगता है पहुंच चुकी है। जी हाँ, और देखना ही होगा कि आज कार्यक्रम का शुभारंभ, कार्यक्रम की नींव कौन रखता है। मेरे साथ भाई अनिल शास्त्री जी हैं, चरण स्पर्श करते हैं। दादा आपको गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आपको भी धर्मेंद्र मोहन जी हैं, मनुष्य जी शुभ संध्या। और गजलों की दुनिया में आपका स्वागत है, और इन्हीं गजलों की दुनिया में आपका भी स्वागत है। नागेश्वर महेंद्र दीपेंद्र से हमको दिखाई पड़ रहे हैं राजस्थान से। और अब देखते हैं भाई, पहले फोन हमारे पास आ चुका है, देखते हैं कौन है।
1: हेलो मोहन श्रीवास्तव बोल रहा हूँ।
0: अरे क्षण स्पर्श
1: बहुत बहुत आशीर्वाद।
0: कैसे हैं आप?
1: ठीक है, थोड़ा सर्दी खांसी लग गया था।
0: मौसम परेशान
1: है। हाँ थोड़ा सा हो जाता है, उम्र के हिसाब से कुछ दिक्कत हो जाती है।
0: तो फिलहाल आप स्वस्थ हैं?
1: हाँ ठीक हूँ, एकदम ठीक है।
0: अरे वाह क्या बात है,
1: एकदम ठीक है। हम हमेशा अपने को ठीक ही महसूस करते हैं।
0: नहीं आप अच्छा समझते हैं, आप ठीक हैं, मतलब उसमें महसूस करने वाली बात नहीं,
1: बाकी ये तो सब होता ही रहेगा।
0: हाँ जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की जाते वो तो
1: जी,
0: होता
1: जी, जी, जी। तो एक गाना सुना देता हूँ
0: जी,
1: मोहम्मद रफी साहब का है।
0: हाँ क्या बात है, क्या बात है।
1: दूर की आवाज का हुस्न से चांद भी शर्माया,
0: तेरी सूरत ने गजब गाया है, क्या बात है। बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही प्यारा गीत।
1: बिना म्यूजिक के सुना रहा हूँ
0: जी, जी,
1: म्यूजिक सुनाऊं?
0: नहीं विदाउट म्यूजिक नहीं, आपकी आवाज अपने आप में खुद संगीत में है।

सूरत ने गजब ढाया है, हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है।

0: कुदरत ने गजब उड़ाया है। थैंक यू सर। दो
1: हेलो सर, क्या बात है भाई,
0: दो लाइन जी, दो लाइन मिसिंग, गड़बड़ी हुई है।
1: नहीं लेकिन मतलब इस खूबसूरत से मौसम में जहाँ हल्की फुल्की बारिश हो रही हो और मतलब इतना प्यारा गीत आपने सुना कर मतलब समझिए माहौल को बड़ा खुशनुमा कर दिया।
0: वहाँ बारिश हो रही गोंडा में, यहाँ तो फैजाबाद में है हम, यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है।
1: जी जी यहाँ बारिश हो रही है मतलब कुछ देर के लिए,
0: इस समय यहाँ फैजाबाद में है सर।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप स्वस्थ हैं और स्वास्थ्य लाभ आपको है। जी जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इस शानदार शुरुआत के लिए आपको कोटिशा धन्यवाद,
0: बहुत बहुत आशीर्वाद आपको भी।
1: अच्छा चरण स्पर्श,
0: बहुत बहुत आशीर्वाद।

0: आप कैसे हैं?
1: चलो भाई, हाँ ठीक है।
0: आज तो शुरुआत ही बहुत ही रोमांटिक हुई है, हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत मतलब आपके पसंदीदा गायक की आवाज से शुरुआत हुई है।
1: हेलो
0: जी, हाँ मैं कह रहा हूँ आपके पसंदीदा गायक से शुरुआत हुई आज के कार्यक्रम की।
1: तो रोमांटिक से रोमांटिक हो जाए।
0: अच्छा, तो अब आप जैसा कहें वैसे तो आप दर्द कुमार हैं, लेकिन हम आपको रोमांटिक भी मानते हैं।
1: चलो ठीक। जब दिल से दिल टकराता है, जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है। झुकती है नजर, रुकती है जुबान, माथे पे पसीना आता है। जब दिल से दिल टकराता है, देखा था तुझे एक बार कहीं, उस दिन से अभी तक होश नहीं, उस दिन से अभी तक होश नहीं। तेरे इश्क ने करवट बदली है, फिर सामने तू है माजबी। अब देखिए क्या क्या रंग नए, दीदार तेरा दिखलाता है। जब दिल से दिल टकराता है, ये हुस्न शराबी महक बदन, और उस पे तेरा ये भोलापन। तेरी भी उम्मीदें जागी है, कहती है तेरे दिल की धड़कन। बेताब है तू भी मेरे लिए, अंदाज तेरा बतलाता है। जब दिल से दिल टकराता है, मुखड़ा न छुपा इन हाथों से, दिन को न बदल अब रातों को, दिन को न बदल अब रातों को। गुलशन में दिखे रे है नगमे, तेरे प्यार की नीची बातों से। ऐ हुस्न की दे दी आँख मिला, अपनों से कोई शर्माता है। जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है। झुकती है नजर, रुकती है जुबान, माथे पे पसीना आता है। जब दिल से दिल टकराता है। थैंक यू।
0: क्या बात है भाई, जब दिल से दिल टकराता है, क्या मतलब। और अनूप मिश्रा ने लिखा है, बहुत खूब सुरेश जी, बहुत उम्दा, बहुत प्यारा, बहुत रोमांटिक वाला गीत गा दिया आपने। क्या बात है अनूप मिश्रा जी, बहुत दिन के बाद आ गए। सो चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, अब आप आ गए तो ये रात बनेगी, बनना पड़ेगा जी। बहुत प्यारा गीत गाया,
1: थैंक यू भाई, शुक्रिया।
0: बहुत बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। कौन कहता है कि आप दर्द कुमार हैं, आज तो आप दर्द कुमार लगे ही नहीं, आज लगे।
1: अगर मौका दीजिएगा
0: जी,
1: मौका दीजिएगा तो एक दर्द वाली आवाज जरूर सुना देंगे।
0: जी
1: अगर दर्द वाली एक आवाज,
0: हाँ तो आप
1: अगर मौका मिले।

0: नहीं तो आप सुना दीजिए भाई, क्यों रह जाए कि आप नहीं सुना पाए।
1: हाँ तो शुरू कर रहे हैं
0: जी।
1: हाँ दिल रुबा में तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया, कभी फूलों में गुजारी कभी कांटों में जिया, दिल दिया दर्द लिया, जिंदगी आज भी है बेखुदी आज भी है, प्यार कहते हैं जिसे वो खुशी भी आज भी है, मैंने दिल रात मोहब्बत को तेरे जाम पिया, दिल दिया दर्द लिया।

0: छुए न किए कर लिया चाक कभी दामन खुशिया दिल दिया दर्द दिया प्यार की जान है तू दिल का अरमान है तू कौन दुनिया से डरे जब निगेबान है तू अपनी कष्टी को सहारे तेरे छोड़ दिया दिल दिया दर्द लिया दिल रुबा मैं तेरे प्यार में क्या क्या न किया दिल दिया दर्द लिया कभी फूलों में गुजारी कभी कांटों पे जिया। थैंक्स।
1: बात है भाई। और श्री मोहनलाल सिराचू ने लिखा है भाई, बहुत सुंदर गाया है आपने वास्तव में। तो चलिए रोमांटिक कुमार जी और दर्द कुमार जी दोनों आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चरण स्पर्श।
2: नमस्कार
1: जी। नमस्कार।
3: हेलो
1: जी। नमस्कार।
3: हेलो
1: जी।
3: अनन्या मिश्रा आपको नमस्कार।
1: जी जी, बहुत दिनों के बाद आपको गाना सुना।
3: क्या करें, अपने मन से सुनाने का मौका मिला तो सोचा कॉल कर दी। आपने एक बार मर्यादा शब्द दिया था तब मुझे गाना बिल्कुल नहीं याद था, पर आज मुझे दो गाने याद है मर्यादा शब्द से।
1: क्या बात है, मतलब आपको ऐसा गीत सुनाने वाली है जिसमें मर्यादा है,
3: जिसमें भाग्य शब्द आएगा।
1: अच्छा, ये बात है। और अगर आप कहीं अगर रेडियो से दूर कर लें क्योंकि आवाज यहाँ क्लैश कर रही
3: है। नहीं, रेडियो नहीं, फोन में ही रेडियो चलता है साथ, फोन में ही ऑन हो।
1: हाँ, तो
3: वैसे रेडियो चल नहीं रहा है आसपास कहीं भी।
1: जी
3: सुनाए।
1: जी जी बिल्कुल।
3: पीके शंकर जी की बूटी अखिया खुल गई निंदिया टूटी सुना सा लागे सब संसार जरा सी और पिला दे यार उतरी सूरज बिखरे बाल तुमने बनाया क्या अपना हाल डर पड़ना तुम्हें दिखाऊं मुझसे बुरा है तेरा हाल जरा सी और पिला दे यार पीले लेके तो बहकी तो लाज रहेगी ना मर्यादा यही वाला।
1: जी, तो मर्यादा तो आ गया।
3: क्या
1: हमने कहा मर्यादा तो आ गया।
3: हाँ, आ गया मर्यादा।
1: जी,
3: पीले लेकिन तो बहकी तो लाज रहेगी ना मर्यादा।
1: क्या बात है, बहुत ही भजन पर की बहुत अच्छी
3: है। और एक गाना और सुनाते हैं। एक लड़की भीगी भागी थी सोती रातों में जागी थी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे अरे तुम ही कहो ये
1: कोई बात है।
2: हेलो
1: हेलो।
2: हाँ नमस्कार।
1: अरे दादा चरण स्पर्श।
2: अरे खुश रहिए, कैसे हैं सर?
1: आशीर्वाद आशीर्वाद आपका।
2: सुने बारिश से आप भीग गए?
1: हाँ नहीं, हल्के से भीग गए, ज्यादा नहीं, और इतना भीगना बनता है।
2: चलिए सब तो अच्छी बात है कि सावन, मौजा नहीं है।
1: सावन में इंसान हल्का से भी ना भीगे तो मतलब
2: काहे नहीं है, सही बात।
1: थोड़ा बहुत भीगना चाहिए।
2: मैं नहीं, बस इसी में मैं आपके आपके लिए मैं एक गाना डेडिकेट कर रहा हूँ।
1: अच्छा, मतलब हमारे भीगने पर ही डेडिकेट है।
2: जी हाँ, इस रंग बदलती दुनिया।
1: हाय हाय हाय, अब आप कब बता देंगे कि भगवान की नीयत ठीक नहीं है? बहुत प्यारा गीत सुना है आज आपने।
2: भगवान की नीयत हमेशा सही होती है, इंसान की नीयत ठीक नहीं।
1: लेकिन इसमें तो शायर ने ये कह दिया कि छुप जाओ हमारी नजरों में, भगवान की नीयत ठीक नहीं।
2: क्या बात है। आप तो एकदम महान है भाई।
1: अरे नहीं महान नहीं, आप ही लोगों से सीख रहे हैं, तो वो बिल्कुल महान नहीं है, एकदम सीख ही रहे हैं।
2: आप इतना सीख रहे हैं कि आप अपने लोग के गुरु हो गए।
1: अरे ऐसा कभी नहीं हो सकता।
2: क्यों नहीं हो सकता?
1: ऐसा नहीं, मतलब आपका पद, आपका पद
2: क्या है? देखिए ये होगा कि जो नियमित रूप से या जो अभ्यास करता रहता है वही आगे बढ़ता है।
1: जी दादा, और हम जानते हैं कि आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं।
2: नहीं, हम कहाँ कर पाते हैं, तो आप लोगों का देन है कि मैं हफ्ता में एक दो बार रियाज हो जाता हूँ।
1: जी, तो आज इस रंग बदलती दुनिया में यहाँ
2: जी है, तो जी। मैं शुरू करूँ?
1: जी निसंदेह।
2: इस रंग बदलते दुनिया में इंसान के नियत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज सज कर ईमान की नियत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नियत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर ईमान की नियत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में ये दिल है बड़ा ही दीवाना छेड़ा।

छेड़ा न करो इस पागल को, तुम पे न शरारत कर बैठे नादान की नीयत, ठीक नहीं इस रंग

जो मैं तो पान के नियत ठीक नहीं, रंग बदलती दुनिया में शान के नियत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर मन के नियत ठीक नहीं, रंग बदलते दुनिया में मैं कैसे खुदा हूँ, फिर कह दो मुझसे

0: कह दो मुझको तो किसी का यकीन नहीं, चुप जाओ हमारी आंखों में भगवान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न तो तुम सज धज कर ईमान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में। थैंक यू सर।
1: हाँ दादा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है दादा। रे कृष्ण कुमार कुदिल जी लिखते हैं, वाह वाह, और लिखा है क्या खूबसूरत गाना गाया है, क्या बात है भाई, हम इनका नाम पहली बार पढ़ रहे हैं शायद। आप
0: थोड़ा सा चुक गया हूँ।
1: नहीं बिल्कुल नहीं चुके हैं।
0: चलिए थैंक यू,
1: क्या बात है। और वो कहाँ है जिनके बिना आप अधूरे हैं?
0: अरे वो उनकी आज वो सो गई है पहले ही।
1: जी जी जी, चलिए हम शनिवार को सुनते हैं।
0: हाँ हाँ एकदम।
1: अच्छा दादा, चलो स्पर्श
0: खुद रहिए, थैंक यू।
1: जी दादा जी। हाँ भाई, तो निकला न करो यू सज धज कर, क्या बात है। मनुप मिश्रा जी ने लिख दिया है, वेरी नाइस सिंगिंग। और भाई हमको लगता है आज अनूप मिश्रा जी को भी हम जी बिल्कुल सुन लेंगे। हेलो,
2: शुभ संध्या मनु जी।
1: अरे मतलब कितने बुधवार बीत गए। वो एक पंक्ति है कि तुम बिन जीवन कैसे बीता,
2: पूछो मेरे दिल से।
1: तो बस वही हाल मेरा है साहब। और कैसे हैं आप, और स्वास्थ्य कैसा है आपका?
2: स्वास्थ्य ठीक है मनु जी, ठीक है, सब बढ़िया है
1: जी। और बहुत दिन के बाद आपकी जो है वो शिरकत हो रही है हमारी इस प्यारी सी महफिल में, जो आपके बिना कुछ सुनी सुनी सी थी।
2: बड़ी शिकायतें मिल गई सुनने के लिए कि आपने बिल्कुल आना छोड़ दिया
1: जी।
2: कई लोगों का फोन भी आया कि आपने एकदम आना बिल्कुल बंद कर दिया
1: जी। तो मतलब जहाँ उम्मीदें होती हैं, अगर वहाँ इंसान ना उम्मीद होता है तो शिकायत अपने ही करते हैं और लाजमी है
2: जी।
1: तो फिलहाल हम शुरुआत कहाँ से करेंगे आज?
2: आज शुरुआत करेंगे पत्थर के सनम के टाइटल ट्रैक के साथ।
1: हाय हाय, मतलब आज रफी जी छाए रहेंगे
2: जी।
1: मतलब 31 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि थी और हमको लगता है आज 5 तारीख है।
2: मैं उस दिन आ नहीं पाया था, मैंने प्रोग्राम थोड़ा बहुत सुना था
1: जी,
2: बड़ा दुख था उस दिन ना आने का, लेकिन क्या करूं, परिस्थितियां।
1: हाँ परिस्थितियां, ये तो स्वीकार करता हूँ
2: जी।
1: तो शुरू करते हैं साहब, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना।
2: ठीक है सर, मैं शुरू करता हूँ
1: जी।
2: हालांकि गाना मुझे ये पूरा याद है।
1: अरे मुझे पता है आप को लगभग लगभग गाने पूरे याद है
2: जी। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना, पत्थर के सनम चेहरा तेरा दिल में लिए चलते रहे अंगारों पे, तू हो कहीं तू हो कहीं, सजदे किए हमने तेरे रुखसारों पर, हम सा न हो कोई दीवाना, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा
3: ये क्या जाना पत्थर के सनम, सोचा था ये बढ़ जाएंगी तन्हाइयां जब रातों की, रास्ता हमें दिख

0: हमने मोहब्बत का खुदा जाना पत्थर के सनम। ऐ काश के होती खबर तूने जिसे ठुकराया है शीशा नहीं, शीशा नहीं सागर नहीं मंदिर साइक ढिल दिल ढाया है तासमां है वीराना पत्थर के सनम। तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना बड़ी भूल हुई, अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना पत्थर के सनम। थैंक यू सर।
1: क्या बात है, और आपके लिए भाई कॉम्प्लीमेंट है कि बहुत खूबसूरत गाया, और ये अनिल शास्त्री जी की तरफ से है, और देवमृत ने लिखा है इतना दर्द तो केवल दीवाना ही बयां कर सकता है। मतलब दोस्त वही है जो छोड़ेगा।
0: जी जी,
1: हमको लगता है कि आपके कुछ परम मित्र होंगे।
0: जी
1: हाँ, मतलब उन्होंने तुरंत जो है वो आपके भूतकाल में चले गए। जी, माजी जो है वो हाल पर दस्तक दे रहे हैं।
0: जी, बाकी सर एक गीत और है, इसकी चंद लाइनें सुनाना चाहूंगा। पापा कहते हैं मूवी आई थी 1996 में, कुमार सानू अलका याग्निक जी ने गाया है, प्यार में होता है क्या जादू।
1: हाँ, क्या बात है।
0: प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानू, रहता नहीं क्यों दिल पर काबू, तू जाने या मैं जानू, प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानू, गुनगुन करता क्यों फिरता है कोई भंवरा बागों में, गुन

है फूल में खुशबू, तू जाने या मैं जानू, प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानू।

को तू जाने या मैं जानू, प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानू।

0: जानू रहता नहीं क्यों दिल पर काबू, तू जाने या मैं जानू, तू जाने या मैं जानू। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। मोहनलाल सरस्वती लिखते हैं बेहतरीन सिंगिंग पत्थर के सनम, और कृष्ण कुमार पुरी ने लिखा है धोखा खाया हुआ दीवाना।
2: ऐसा कुछ नहीं है, बस ये गाने में बैठा हुआ था, अचानक दिमाग में आया तो मैंने कहा ये गाना गाना चाहिए।
1: नहीं नहीं,
2: तीन चार दिन से मैं सुन भी रहा था इसको।
1: ये बहुत अच्छा गीत है और बहुत, मतलब मैंने स्वयं ही, हमको लगता है कि कम से कम 2.5-3 महीने के बाद सुना होगा।
2: जी जी,
1: क्या शानदार, मतलब सिलेक्शन बड़ा शानदार है, चयन आपने बहुत अच्छा किया है।
2: नेक्स्ट बुध को फिर किसी अच्छे सिलेक्शन पे मिलूंगा सर।
1: जी हाँ बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं आप,
2: कोशिश रहेगी कि अब एब्सेंस ना हो।
1: हाँ मतलब आपकी इस कोशिश की हमें प्रतीक्षा करेंगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको।
2: थैंक यू सर।
1: जी हाँ भाई, तो ये हमारे श्री अनूप कुमार मिश्रा जी, और बहुत ही प्यारा सा गीत पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। अभी 31 तारीख को हमने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करने का प्रयास किया था, रफ़ी जी की पुण्यतिथि थी, और जब तक मुझको लगता है कि ये हिंदुस्तान रहेगा, जब तक लोग हिंदी और उर्दू जुबान को समझेंगे, गीतों को, संगीत को समझा जाएगा, तब तक शायद एक ऐसा नाम जिसे हम कभी नहीं भुला पाएंगे वो मोहम्मद रफ़ी जी हैं। जी, और बहुत अच्छा लगा कि उसके बाद जब कार्यक्रम हुआ तो रफ़ी जी के बहुत सारे गीत जो कभी कभी बहुत ही रोमांटिक होते हैं, कभी कभी प्यारा सा नशा होता है उनमें, कभी कभी एक मीठा सा एहसास देकर चले जाते हैं, और कभी तो ऐसे आते हैं कि फुदुला कर चले जाते हैं। कितना मुश्किल होता है, मतलब कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना, तो बहते हुए पानी से पानी पर, बहते हुए पानी पर पानी से पानी लिखने का काम दुश्वार होता है, लेकिन कुछ लोग कर जाते हैं। और गीतों की दुनिया में तो भाई हम रफ़ी जी और लता जी, किशोरदा, मतलब कुछ ऐसी विभूतियाँ जिन्होंने संगीत से अमर कर दिया, संगीत को अमर कर दिया। हमारे साथ कोई और जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ।
3: अरे नमस्कार
1: जी। जी
3: दोबारा कष्ट देने के लिए सॉरी।
1: अच्छा नहीं नहीं, अरे अरे दोबारा क्या, आप दोबारा कष्ट दे सकते हैं
3: क्या? मैं गाना गा सकता हूँ दोबारा?
1: बिल्कुल कर सकते हैं।
3: तो फिर मैं एक गाना, नवीन निश्चल की पिक्चर की गाना है, मतलब उसमें थे।
1: अच्छा,
3: तुम जो मिल गए।
1: क्या बात,
3: बड़ा प्यारा गाना है। अरे? तो मैं बाद अंतरा मेरे को याद है तो मैं वही सुनाऊंगा।
1: जी
3: तो क्या मैं शुरू करूं?
1: जी निस्संदेह।
3: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है

दूर हमसे देखो खपा न हो, बैठो न दूर हमसे।

हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा। तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा।

0: मिल गया। थैंक यू सर।
1: क्या बात है दादा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही प्यारा गीत।
0: कोशिश किया हो, थोड़ी गलतियां हो तो क्षमा चाहूंगा।
1: अरे नहीं नहीं दादा, ऐसा मत कहा कि तुम शर्मिंदा हो जाएंगे। बहुत प्यारा और बहुत उम्दा।
0: थैंक यू
1: सर। स्पर्श
0: खुश रहिए।
1: जी हाँ भाई, और सावन का महीना चल रहा है, और सावन के इस प्यारे से महीने में अगर लता जी की आवाज़ में कोई प्यारा सा गीत ना हो तो भाई काहे का सावन। तो चलिए आइए आपको ले चलते हैं, बहुत ही प्यारी सी मूवी है, बहुत ही प्यारी फिल्म है। मैंने जितनी भी अब तक कॉमेडी मूवी देखी उनमें बहुत अच्छी लगी मुझको, और उसका ये गीत सावन से संबंधित है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, चल चलते आपको सुनाते हैं सावन स्पेशल, ये प्यारा सा गीत हमारी पसंद पर। आप सुनिए और बताइए कि आपको ये गीत कैसा लगा।

0: जी हाँ, सावन की झड़ी भी लग चुकी है और सावन का ये बुधवार भाई बहुत बहुत अच्छा रहा, आपका सहयोग रहा। और अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल ठीक 9:30 पर आपसे पुनः मुलाकात हो गई आप ही के कार्यक्रम बहारे गज़ल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
1: हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु, आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, प्यार का सिला। एम्बुलेंस का सायरन बज रहा था, लोग घबरा कर इधर उधर भाग रहे थे। छुट्टी का दिन होने से अस्पताल का आपातकालीन सेवा विभाग ही खुला हुआ था। शोर शराबे से डॉक्टर नीलकंठ की तंद्रा भंग हो गई। घड़ी पर निगाह डाली, रात के 10:20 हो रहे थे। उसे एलिस के लिए चिंता हो रही थी और उस पर क्रोध भी आ रहा था। 9 वो रोज उसके लिए कॉफी बना कर ले आती थी। वैसे उसने फोन पर बताया था कि वो 1-2 देर से आएगी। सर, वार्ड बॉय ने आकर कहा, एक इमरजेंसी केस है, ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया है। मेल है या फीमेल? नीलकंठ ने खड़े होते हुए पूछा। औरत है, वार्ड बॉय ने उत्तर दिया। कहते हैं कि आत्महत्या का मामला है, पुलिस को बुलाना होगा। नीलकंठ ने पूछा, साथ में कौन है? 2-3 पड़ोसी हैं सर, वार्ड बॉय बोला। ठीक है, ऑपरेशन की तैयारी करने को कहो, मैं आ रहा हूं। और हाँ, सिस्टर एलिस नहीं आई अभी तक? नीलकंठ बोले, जी अभी अभी आई हैं, उस घायल औरत के साथ होटी में हैं, वार्ड बॉय ने जाते हुए कहा। राहत की सांस लेते हुए नीलकंठ ने कहा, तब तो ठीक है। वो जल्दी से ओटी की ओर चल पड़ा। दरअसल मन में एलिस से मिलने की जल्दी थी, घायल की ओर ध्यान कम ही था। एलिस को देखते ही वो बोला, इतनी देर कहां लगा दी, मैं तो चिंता में पड़ गया था। सर जल्दी कीजिए, एलिस ने उत्तर दिया, मरीज की हालत बहुत खराब है। और क्या? नीलकंठ ने एप्रन पहनते हुए पूछा। सारी तैयारी तो कर दी है ना? जी सब तैयार है, एलिस ने गंभीरता से कहा। सर घायल औरत और कोई नहीं, आपकी पत्नी सुरमा है। सुरमा? वो लगभग चीख उठा। सुबह ही नीलकंठ का सुरमा से खूब झगड़ा हुआ था, झगड़े का कारण एलिस ही थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है प्यार का सिला। अब तक आपने सुना डॉक्टर नीलकंठ का उनकी पत्नी सुरमा से भयानक झगड़ा हुआ था। कारण था उनकी सिस्टर एलिस। सुरमा ने आत्महत्या का प्रयास किया और उसे इलाज के लिए नीलकंठ के ही अस्पताल में लाया गया। अब आगे नीलकंठ और एलिस का प्रणय प्रसंग उनके वैवाहिक जीवन में विष खोल रहा था। सुबह सुरमा बहुत अधिक तनाव में थी क्योंकि नीलकंठ के कोट पर दो चार सुनहरे बाल चमक रहे थे। सुरमा को पूरा विश्वास था कि ये एलिस के ही हैं। पूरी कहानी पर्दे पर चलती फिल्म की तरह साफ थी। झुंझलाकर क्रोध से पैर पटकता हुआ नीलकंठ बाहर निकल गया था। जाते जाते सुरमा के चीखते शब्द कानों में पड़े थे, आज तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। ऐसी धमकियां सुरमा कई बार दे चुकी थी। एक बार नीलकंठ ने उसे ताना भी दिया था। जाने मन, जीना जितना आसान है मरना उतना ही मुश्किल। मरने के लिए बहुत बड़ा दिल और हिम्मत चाहिए। मर कर भी दिखा दूंगी, सुरमा ने तड़प कर कहा था। तुम्हारी तरह नाटकबाज नहीं हूं, देख लूंगा, नीलकंठ ने विषैली मुस्कुराहट के साथ कहा था। वो शुभ घड़ी आने तो दो। आखिर सुरमा ने अपनी धमकी को हकीकत में बदल दिया था। उनका घर पांचवी मंजिल पर था। वो बालकनी से नीचे कूद पड़ी थी। इतनी ऊंचाई से गिरकर बचना बहुत मुश्किल था। नीचे हरी हरी घास का लॉन था। उस दिन घास की कटाई हो रही थी। कटी घास के ढेर लगे थे। सुरमा उसी एक ढेर पर जा गिरी। उस समय तो बच गई पर चोट बहुत गहरी आई थी। शोर मचते ही कुछ लोग जमा हो गए। उन्होंने सुरमा को पहचाना और यही ठीक समझा कि उसे नीलकंठ के पास उसी के अस्पताल में पहुंचा दिया जाए। काफी खून बह चुका था। नब्ज बड़ी मुश्किल से पकड़ में आ रही थी। शरीर का रंग फीका पड़ रहा था। नीलकंठ के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। सुरमा से पीछा छुड़ाने का ये बहुत अच्छा अवसर है। इसके साथ जीवन काटना बहुत दूभर हो रहा है। हमेशा की किटकिट से परेशान हो चुका हूं। एक डॉक्टर को समझना हर औरत के वश की बात नहीं। कितना तनावपूर्ण जीवन होता है। अगर चंद पल किसी के साथ मन बहला लिया तो क्या हुआ। पत्नी को इतना तो समझना चाहिए कि हर पेशे का अपना अपना अंदाज होता है। सहसा चलते चलते नीलकंठ रुक गया। क्या हुआ सर, एलिस ने चिंतित स्वर में पूछा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना। मैं ये ऑपरेशन नहीं कर सकता, नीलकंठ ने लड़खड़ाते स्वर में कहा।

कहानियों के साथ मेरी आज की कहानी है प्यार का सिला। अब तक आपने सुना डॉक्टर नीलकंठ की उनके ही हॉस्पिटल की सिस्टर एलिस से दोस्ती थी, इसी कारण हमेशा उनके और उनकी पत्नी सुरमा के बीच तनाव रहता था। और उस दिन सुरमा ने आत्महत्या की कोशिश की। इलाज के लिए उसे नीलकंठ के ही अस्पताल में लाया गया। नीलकंठ के मन में बहुत से विचार एक साथ चल रहे थे। कहीं ना कहीं वो ये भी चाहता था कि वो सुरमा का इलाज ना करे और सुरमा का अंत हो जाए। अब आगे, कोई डॉक्टर अपनी पत्नी या सगे संबंधी का ऑपरेशन नहीं करता क्योंकि उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? एलिस ने आश्चर्य से पूछा। जल्दी से डॉक्टर जतिन को बुला लो, नीलकंठ ने वापस मुड़ते हुए कहा। वो सोच रहा था कि ऑपरेशन में जितनी देर लगेगी उतनी जल्दी ही सुरमा इस दुनिया से चली जाएगी। ये कैसे हो सकता है? एलिस ने तनिक ऊंचे स्वर में कहा। डॉक्टर जतिन को आते आते एक घंटा तो लग ही जाएगा, लेकिन इतना समय कहाँ है? मैं मानती हूँ कि आपके लिए पत्नी को इस दशा में देखना बड़ा कठिन होगा और ऑपरेशन करना उससे भी ज्यादा मुश्किल, पर ये तो इमरजेंसी है सर। नहीं, नीलकंठ ने कहा, ये डॉक्टरी नियमों के विरुद्ध होगा और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। ठीक है, कम से कम आप कुछ देखभाल तो करें, एलिस ने कहा। मैं अभी डॉक्टर जतिन को संदेश भेजती हूँ। डॉक्टर नीलकंठ जब ओटी में घुसे तो आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कितनी ही लहरें मन में उठती और फिर बादलों की तरह गायब हो जाती। सामने सुरमा का खून से लथपथ शरीर पड़ा था, जिससे कभी उसने प्यार किया था। वो पल कितने मधुर थे। इस समय सुरमा की आंखें बंद थीं, एकदम बेहोश और दीन दुनिया से बेखबर। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसके मन में कितना तूफान उठा होगा। एक क्षण अपराध भावना से नीलकंठ का हृदय कांप उठा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को झंझोड़ रही हो। नीलकंठ ने कांपते हाथों से सुरमा के बदन से खून साफ किया। उसका सिर फट गया था। वो कितने ही ऐसे घायल व्यक्ति देख चुका था, पर कभी मन इतना विचलित नहीं हुआ था। वो सोचने लगा, क्या सुरमा की जान बचा सकना उसके वश में है? लेकिन डॉक्टर जतिन के आने से पहले ही सुरमा जा चुकी थी। नीलकंठ सूनी आंखों से उसे देख रहा था। वो जड़वत खड़ा था। जतिन ने शव की परीक्षा की और धीरे से नीलकंठ के कंधे पर हाथ रख दिया। बोला, एलिस, नीलकंठ को कैबिन में ले जाओ, इन्हें कॉफी की जरूरत है। एलिस ने आहिस्ता से नीलकंठ का हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए ओटी से बाहर ले गई। कमरे में ले जाकर उसे कुर्सी पर बैठाया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है प्यार का सिला। अब तक आपने सुना डॉक्टर नीलकंठ और उनके हॉस्पिटल की सिस्टर एलिस के बारे में जानकर नीलकंठ की पत्नी सुरमा बहुत परेशान रहती थी। अक्सर उनके घर में लड़ाइयाँ होती और उस दिन सुरमा ने आत्महत्या की कोशिश की। उसे इलाज के लिए नीलकंठ के ही अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन नीलकंठ ने दुर्भावना से उसका इलाज करने से मना कर दिया, बहाना बना दिया। दूसरे डॉक्टर के आते आते बहुत देर हो गई थी और सुरमा ये संसार छोड़कर चली गई। अब आगे। सर, मुझे दुख है, एलिस ने आहत स्वर में कहा। सुरमा जी के ऐसे अंत की मैंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी, नीलकंठ ने गहरी सांस लेकर कहा। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कसूर मेरा है। नीलकंठ आंखें बंद किए सोच रहा था, शायद सुरमा को बचा पाना मेरे वश के बाहर था, पर कोशिश तो कर ही सकता था ना। लेकिन मैं टालता रहा क्योंकि सुरमा से छुटकारा पाने का यह सुनहरा अवसर था। मैं कलह से मुक्ति पाना चाहता था। अब शायद एलिस मेरे और करीब आ जाए। एलिस सामने कॉफी का प्याला लिए खड़ी थी। पुलिस सूचना पाकर आ गई थी। औपचारिक रूप से पूछताछ की गई। ये स्पष्ट था कि दुर्घटना के पीछे पति पत्नी के बिगड़ते संबंध थे, परंतु नीलकंठ का इस दुर्घटना में कोई हाथ नहीं था। नैतिक जिम्मेदारी रही हो, पर कानूनी निगाह से वो निर्दोष था। पोस्टमार्टम के बाद शव नीलकंठ को सौंप दिया गया। दोनों ओर के रिश्तेदार सांत्वना देने और घर संभालने आ गए थे। दाह संस्कार के बाद सबके चले जाने पर एक सूनापन सा छा गया। नीलकंठ को सामान्य होने में सहायता दी केवल एलिस ने। अस्पताल में ड्यूटी के समय तो वो उसकी देखभाल करती ही थी, पर समय पाकर अपनी छोटी बहन अनीशा के साथ उसके घर भी चली जाती थी, चाय, नाश्ता, भोजन, जैसा भी समय हो अपने हाथों से बना कर देती थी। धीरे धीरे नीलकंठ के जीवन में शून्य का स्थान एक प्रश्न ने ले लिया। कई महीनों बाद नीलकंठ ने एक दिन एलिस से कहा, मैं तुम्हारी जैसी पत्नी ही पाना चाहता था, पर तुम पहले क्यों नहीं मिली, ये सोचकर कभी कभी परेशान हो जाता हूं। सर, एलिस बोली। सर, नीलकंठ ने टोकते हुए कहा, कितनी बार कहा है कि मुझे सर मत कहा करो, अब तो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, ये फॉर्मेलिटी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या कहूं, एलिस हंस पड़ी। सर, आदत सी पड़ गई है, वैसे कोशिश करूंगी

क्यानिस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है प्यार का सिला। अब तक आपने सुना नीलकंठ और एलिस के संबंधों के बारे में। जानकर नीलकंठ की पत्नी सुरमा ने आत्महत्या का प्रयास किया। इलाज के लिए उसे नीलकंठ के अस्पताल में लाया गया और उसने बहाने से इलाज करने से मना कर दिया। सुरमा ये दुनिया छोड़कर चली गई। काफी वक्त बीत गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर एक दिन नीलकंठ ने खुल के अपने मन की बात एलिस से करने की सोची। अब आगे तुम मुझे नील कहा करो, उसने एलिस की आंखों में झांकते हुए कहा। मुझे अच्छा लगेगा, एलिस हंस पड़ी। कोशिश करूंगी, वैसे सिर्फ मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, नीलकंठ हंसा। आखिर मैं भी तो तुम्हें एलिस कहकर बुलाता हूँ। आपकी बात और है, एलिस ने कहा। आप तो मुझसे सीनियर हैं, तो नाम से बुला ही सकते हैं। तो फिर तुम मुझे किस रिलेशन से नाम लेके बुलाओगी? नीलकंठ के स्वर में शरारत थी। पता नहीं, तुम जानती हो मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या भावना है, नीलकंठ ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सोने जीवन में बहार बन के प्रवेश करो। ये तो अभी मुमकिन नहीं, एलिस ने छत की ओर देखा। अभी नहीं तो कोई बात नहीं, नीलकंठ ने कहा, पर वादा तो कर सकती हो। नीलकंठ को विश्वास था कि एलिस इनकार नहीं करेगी। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये कहना भी मुश्किल है, एलिस ने मेज पर पड़े चम्मच से खेलते हुए कहा। क्यों? नीलकंठ ने आश्चर्य से पूछा। आखिर हम अच्छे दोस्त हैं। बस दोस्त ही बने रहें तो अच्छा है, एलिस ने कहा। क्या मतलब? नीलकंठ ने खड़े होते हुए पूछा। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर शादी कर ली तो इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा भी वही हश्र नहीं होगा जो सुरमा जी का हुआ? एलिस ने एक एक शब्द तौलते हुए कहा। ये सुनते ही नीलकंठ को मानो सांप सूंघ गया। उसने कुछ कहना चाहा पर जबान पर ताला पड़ गया था। एलिस ने साथ रहने से इनकार जो कर दिया था। आज सुरमा को उसके प्यार का सिला मिल गया था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी प्यार का सिला। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल 72-34-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
5: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
4: और जेंट्स के लिए?
5: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
4: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840 3395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: 10 out of 10.
1: क्यों नहीं चाहिए? चल
0: ओके देन। भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो, फिर कल ली तू कौन संभालेगा?